एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 24वीं तिथि, तदनुसार 14 जून 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:57 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की ये सभा।

0: ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित समाचार, तत्पश्चात विविध भारती मुंबई के प्रसारण। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोगों ने होटल नेग्रेस्को में श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया।
2: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भारतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस में चल रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके स्वागत सत्कार को अविस्मरणीय बताया। उन्होंने कहा कि भारत से मीलों दूर होने के बावजूद स्वदेश के प्रति प्रवासियों के संबंध में मजबूती आई है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से लगभग 12 किलोमीटर दूर रेहरधर शाखा तक पहुंचने में 2 घंटे से अधिक का समय लगता है। ड्रोन सेवा से ये समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया है। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने बताया कि उन्होंने

0: परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया है जो लूनर लैंडर को चंद्रमा के बेहद ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में इसरो प्रमुख ने बताया कि अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने पर काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। आर्टिफिशियल हीटर वाला ये लैंडर चंद्रमा के कठोर मौसम में भी काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयुष मंत्रालय आज मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के सहयोग से वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये सत्र सुबह 6:15 बजे से 7:35 तक चलेगा। 130 से अधिक देशों के इस कार्यक्रम में भाग लेने की आशा है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य योग में रुचि रखने वाले विश्व भर के लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साथ लाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। इच्छुक लोग 1-800-315-7008 पर मिस कॉल देकर कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर हो जाने की आशा व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता तो अंतिम विकल्प भी है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा है कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि ये समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एक दिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं।
2: ये है विविध भारती।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार।

चिंतन। किताबें अनगिनत हैं और समय कम है। ज्ञान का रहस्य यह है कि जो जरूरी है उसे लें और उसके अनुसार जीने की कोशिश करें। ये था आज का चिंतन और अब भक्ति संगीत।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताते
0: हैं हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: और इसी के साथ आज का वंदनवार कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इस समय सुबह के 6:30 होने को है और आइए आपको देते हैं जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। इस झरोखा के तुरंत बाद 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 219। संगीत सरिता। इस कार्यक्रम में सुनिए श्रृंखला गजतत वाद्य। इस कार्यक्रम का भाग 3 आज आप सुनेंगे कलाकार डॉक्टर प्रकाश महाडिक, प्रस्तुति चारूबाला खरे की। कार्यक्रम का समय होगा सुबह और शाम 6:45। भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम का समय होगा सुबह 7 और 7:30 पर आज आप सुनेंगे कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। सुबह 8 समाचार प्रभात और इसी के तुरंत बाद 8:15 पर सुनिए त्रिवेणी कार्यक्रम आलेख और स्वर मंजरी वर्मा का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। यही कार्यक्रम दिन में 2 पुनः सुना जा सकता है। चित्रलोक कार्यक्रम का समय होगा सुबह 8:30। आनंद लीजिएगा नए फिल्मी गीतों का। आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता भारत भूषण पर। कार्यक्रम का समय होगा सुबह 9:30 और इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा रात 9:30 पर। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। बॉम्बे टॉकीज में आज आप सुनेंगे कोरियोग्राफर टेरेंस लुईस से अमरकांत दुबे की बातचीत का भाग 2 सुबह 10। विविधा के अंतर्गत आज दिन में 11 सुनिए निर्देशक राज खोसला पर आधारित शोध और आलेख स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुति तेजश्री कामले की। दिन में 12 सुनिए हिंदी समाचार और 12:05 पर होगा कार्यक्रम यादों की महफिल। कमेंट्स के साथ फेसबुक पर तय कीजिए सुरीला सफर। दिन में 1 दिन में 2:15 पर दोपहर समाचार। सदाबहार नगमे आप सुन सकेंगे दिन में 2:30 पर और मनचाहे गीत। इस कार्यक्रम का समय होगा दोपहर 3।

3:30 पर सुनिए नाट्य तरंग में नाटक अभिशप्त गांधार का भाग दो, लेखक डॉक्टर शंकर शेष, निर्देशक सुदर्शन कुमार। उजाले उनकी यादों के पिटारा के अंतर्गत सुनिए ये कार्यक्रम दिन में 4 बजे। कवि प्रदीप की सुपुत्री एवं चित्रकार मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का भाग 3 हम आपको सुनवाएंगे, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। छाया गीत कार्यक्रम का समय होगा शाम 5 बजे, 5:00

कर 30 मिनट पर सुनिए झरोखा के अंतर्गत आज के शेष और कल दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का लेखा जोखा। संध्या रंजन में सुनिए चित्रपट संगीत, संगीत सरिता शाम में 6:45 पर आप सुनेंगे, जो कि हमने आपको पहले भी बताया। विशेष जयमाला आज आप सुनेंगे सैनिकों की शौर्य गाथा। महावीर चक्र दीवान रंजित रॉय लेफ्टिनेंट कर्नल प्रस्तुति तेजश्री कामड़े की। इंद्रधनुष में सुनिए साज और आवाज। हवा महल के अंतर्गत आज आप सुनेंगे नाटिका कागज के जेवर, लेखन अभिलाष का, निर्देशन पुरुषोत्तम दार्वेकर का। रात्रि के चित्रलोक कार्यक्रम का समय होगा 8:15, 8:45 पर समाचार संध्या। रात्रि 9 बजे सुनेंगे आप कार्यक्रम आपके लिए। रात्रि का छायागीत कार्यक्रम होगा 10 बजे आलेख एवं स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। रात्रि 10:30 सुनिए ढलती जाए रात और रात 11 बजे विविधा। ये थी जानकारी आज दिनभर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की, और अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरितमानस का भाग 219।

चित्रकूट में एकत्रित साधुओं तथा गुरुजनों की सभा में भरत विविध प्रकार से श्री राम के प्रति अपनी भक्ति और निष्ठा प्रकट करते हैं। प्रेम के प्रण को निभाते हुए पिता की मृत्यु, माता कैकेयी की कुबुद्धि, अन्य माताओं की विकलता तथा अवध निवासियों के परिताप, इन सभी अनर्थों के मूल में भरत स्वयं को पाते हैं। तब मुनि वशिष्ठ ने अनेक कथाएं सुनाते हुए भरत जी के परिताप का समाधान किया। प्रभु श्री राम ने कहा, हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो। जीव की गति ईश्वर के अधीन होती है। तीनों काल तथा तीनों लोकों के सभी पुण्यात्माओं से तुम्हारा स्थान ऊंचा है। शिवजी साक्षी हैं कि ये पृथ्वी तुम जैसे पुण्यात्माओं के बल पर टिकी है। प्रेम और बैर छिपाए नहीं छिपते। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। वे मुनियों के पास निशंक चले जाते हैं, किंतु बधिकों को देखते ही भाग खड़े होते हैं।

0: गज तत्व वाद्य प्रस्तुत है गज वाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की अगली कड़ी। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक।
1: सारंगी सुमधुर और समृद्ध साज है। यह एक ऐसा वाद्य है जो लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों में ही प्रचलित है। पहले हम लोक संगीत में प्रचलित सारंगियों पर विचार करेंगे। भारत के लोक वाद्यों में सारंगी परिवार के वाद्य हैं सारंग, राजस्थान का सारिंदा, कमायचा, मध्य प्रदेश का चिकारा, बिहार का बनाम आदि विशेष गज वाद्य हैं। भारतीय लोक संगीत में गज से बजाई जाने वाली सिंधी सारंगी, जोगिया सारंगी, धानी सारंगी, गुजराथन सारंगी और अलाबू सारंगी प्रचलित होने की जानकारी मिलती है। सिंधी सारंगी सिंध प्रदेश में प्रचलित रही। वैसे लंगा जाति के लोग इसका वादन करते हैं। नाम से गुजरातन सारंगी भले ही गुजरात का लोकवाद्य प्रतीत होता हो, किंतु इसे राजस्थान के लंगा जाति के गायक अपने साथ संगत हेतु अधिक उपयोग में लाते हैं। जोगिया सारंगी संज्ञा इसलिए दी कि जोगियों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता रहा। अलाबू सारंगी का प्रयोग विशेषकर जैसलमेर क्षेत्र में अधिक होता है। मंजनिया जाति के लोग अलाबू सारंगी बजाते हैं। इन सभी सारंगियों में सामान्यतः मुख्य दो लोहे के तार, दो तांत के तार और 9, 11 अथवा 17 तर

गज तत्वाद्य, गज वाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की ये कड़ी अभी आपने सुनी। कलाकार थे डॉक्टर प्रकाश महाडिक, प्रस्तुति सहायक थे जयंत श्रीवास्तव और प्रस्तुतकर्ता चारुबाला खरे। संगीत सरिता के लिए इस श्रृंखला की रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी भोपाल की सौजन्य से। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम संपन्न होता है।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज करते हैं फागुन फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है आशा भोसले ने। कमर जलालाबादी ने इसके बोल लिखे हैं, संगीत है ओपी नैयर का।

आज के इस विशेष कार्यक्रम में विशेष इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज भूले बिसरे गीत इस कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के अमर अभिनेता और गायक कलाकार भारत भूषण को। उनके जन्मदिन के अवसर पर आज हम सुनेंगे उन्हीं के कुछ सदाबहार गीत जो आज भी दिलों में वही मिठास और अपनापन जगाते हैं। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत। बरसात की एक रात इस फिल्म से है, साहिर लुधियानवी ने इसके बोल लिखे हैं, रोशन का संगीत है और इस गीत को स्वर दिए हैं आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा, शंकर शंभू और साथियों ने।

श्रोताओं, भारत भूषण जी भले ही स्वयं गायक नहीं थे, लेकिन संगीत प्रधान फिल्मों में उनकी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली रही कि उनका नाम सुनते ही मधुर गीतों की पूरी दुनिया याद आ जाती है। आइए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत। फिल्म का नाम है

भूले बिसरे गीत, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। और आइए अब आपको सुनवाते हैं शबाब फिल्म का गीत, आवाज लता मंगेशकर की, शकील बदायूनी की रचना, नौशाद का की धुन।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: और आइए अब सुरैया की आवाज में सुनते हैं राजपूत फिल्म का ये गीत। कैफ इरफानी ने इसके बोल लिखे हैं और हंस राज बहल ने इसकी धुन बनाई है।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी।
3: भूले बिसर गीत इस कार्यक्रम का ये अगला गीत आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम मल्हार, मुकेश की आवाज, कैफ इरफानी के बोल, रोशन का संगीत।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 7:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास

नमस्ते रोहतास कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजय चतुर्वेदी का सप्रेम नमस्कार और कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत भी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस आशा और उम्मीद के साथ कि आपके जीवन का हर पल शुभ और मंगलमय हो। चलिए ले लेते हैं सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में आज का सुविचार। सत्यमेव जयते, सत्यम इव जयते, यानी सत्य की विजय होती है, सत्य ही जीतता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, यह एक प्राचीन संस्कृत मंत्र है जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है और इसका अर्थ है सत्य अकेले ही जीतता है या सत्य की ही विजय होती है। अतः हम असत्य से परे होकर सत्य की ओर प्रवृत्त हों और सत्य ही धर्म हो, सत्य ही कर्म हो। आज भी इसी की ज़रूरत है और ये अकाट्य चिरंतन शाश्वत सत्य है, सत्यमेव जयते। तो यह आज का सुविचार और अब एक नज़र डाल लेते हैं आज की तारीख यानी 14 जून से संबंधित इतिहास की।

परी घटनाओं पर। जी हां श्रोताओं, आज विश्व रक्तदाता दिवस भी है और साथ ही राजस संक्रांति भी है, जिसे उड़ीसा में विशेष महत्व दिया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस है तो तैयार रहिए ना। रक्तदान महादान कहा गया है और रक्तदान करने से स्वास्थ्य नहीं बिगड़ता, शरीर में खून बनने की प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है और यदि आप रक्त देते हैं तो नया रक्त तैयार होने में देर नहीं लगता और आप तरोताज़ा हो जाते हैं। तो आज का ये शुभ अवसर है। हालांकि हर अवसर पर अपने या अपनों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। रक्तदान महादान इसी से कहा गया है, क्योंकि रक्त किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, ये शरीर में ही बनता है और इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ने पर रक्तदान करना चाहिए ताकि दूसरे की प्राण रक्षा की जा सके, दूसरे की सहायता की जा सके। तो आज का ये एक विशेष अवसर है, विश्व रक्तदाता दिवस। पूरी दुनिया में आज इस चीज़ की धुन है, तो हम भी और आप भी, हम सभी तत्पर रहें। 1775 में आज ही के दिन अमेरिकी सेना की स्थापना हुई और अमेरिका ने स्टार्स

दूसरे की प्राण रक्षा की जा सके, दूसरे की सहायता की जा सके। तो आज का ये एक विशेष अवसर है, विश्व रक्तदाता दिवस, पूरी दुनिया में आज इस चीज़ की धुन है। तो हम भी और आप भी, हम सभी तत्पर रहें। 1775 में आज ही के दिन अमेरिकी सेना की स्थापना हुई और अमेरिका ने स्टार्स एंड स्ट्राइप्स को अपने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। आज ही के दिन 1949 में अल्बर्ट द्वितीय नाम का बंदर अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला बना, और 1901 में पहली बार गोल्फ प्रतियोगिता का आयोजन आज ही के दिन हुआ। पंचशील, जी हाँ, ये सिद्धांत तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। तो 2004 में आज ही के दिन पंचशील सिद्धांत की 50वीं वर्षगांठ पर बीजिंग में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित हुआ, और 2007 में आज ही के दिन चीन के गोबी रेगिस्तान में पक्षीनुमा विशाल डायनासोर के जीवाश्म मिले, और 2008 में आज ही के दिन केंद्र सरकार ने अलग गोरखालैंड राज्य के निर्माण की संभावना को खारिज किया, और राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में 96 मीट्रिक टन गोल्ड की माइंस का पता चला। 1595 में आज ही के दिन सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोविंद सिंह जी का जन्म हुआ, और आज ही के दिन जन्मे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और 1988 में आज ही के दिन भारतीय सिनेमा के महान अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर साहब का निधन हुआ। हमने फिल्म जगत का एक चमकता हुआ सितारा खोया। चलिए हम आपको कार्यक्रम में आगे बढ़ने के पहले एक नगमा सुना देते हैं, लीजिए सुनिए।

तो अभी आपने यह नगमा सुना, और अब आइए एक नज़र डाल लेते हैं स्थानीय सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियों पर। जी हाँ श्रोताओं, कल शाम की बारिश ने तो कई पेड़ भी गिराए और ऐसा लगा कि अचानक मानसून का आगमन हुआ। लोगों में खुशी भी है और ऐसा भरोसा भी है कि 2 रोज़ पहले ही मानसून ने ज़िले में दस्तक दे दी है, और यदि यह है तो बहुत ही सुखद चीज़ है, क्योंकि कृषि कार्यों में इससे तेज़ी आएगी। ज़िले में 76,000 क्विंटल लक्ष्य के विरुद्ध अप्रैल से अब तक सिर्फ 12,360 क्विंटल ही गेहूं की हुई है खरीदारी, क्योंकि

लक्ष्य से काफी पीछे गेहूं की हुई है खरीद और ये चिंता का सबब है। और साथ ही साथ एक अन्य खबर पे यदि नजर डाली जाए तो विद्युत प्रमंडल कार्यालय में बाल श्रम उन्मूलन की दिलाई गई शपथ और बाल श्रम निषेध के लिए सबने कमर कसी और 19 प्रखंडों में 17 और 18 जून को जन कल्याण शिविर लगेगा। DRDA सभागार में डीएम रोहतास की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें तैयारियों की समीक्षा की गई और शिविर में आवेदन सत्यापन KYC से लेकर लाभ वितरण तक की सुविधा मिलेगी ऐसा बताया गया। सासाराम में 250 करोड़ से बदलेगी जल निकासी की व्यवस्था। सासाराम में ड्रेनेज 2 परियोजना को अब और व्यापक रूप दिया जा रहा है। पुराने प्रस्ताव में संशोधन, नए क्षेत्रों को शामिल कर 10 किलोमीटर लंबी ड्रेनेज लाइन का होगा निर्माण और बुडको की PMO एजेंसी तैयार कर रही है नया DPR। स्वीकृति मिलने के बाद जल्द ही होगा काम शुरू। महिलाओं को सरकारी योजनाओं को जानकारी दी गई। सदर प्रखंड के बिलाड़ी पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में दर्जनों महिलाएं हुई शामिल और कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान कर किया गया प्रोत्साहित। बंद पड़े पत्थर उद्योग फिर से होंगे शुरू। बिहार सरकार के खनन मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने सासाराम स्थित सर्किट हाउस में कहा कि यदि सभी परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी तो आगामी जुलाई माह से रोहतास जिले में पत्थर खनन का कार्य पुनः प्रारंभ किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार इस दिशा में गंभीरता से कार्य कर रही है और आवश्यक प्रक्रियाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। और एक अन्य गतिविधि में एक दिन में 100 करोड़ की जीविका को ऋण बांट ग्रामीण बैंक ने रचा इतिहास। सबसे अधिक करघर शाखा में बांटा गया 750 करोड़ का ऋण। महिलाओं में है खुशी और जनता दरबार में पहुंचे 13 फरियादियों ने लगाई न्याय की गुहार। और साथ ही साथ एक अन्य खबर में ये है कि पटना में 22 को होगा अति पिछड़ा अभिनंदन समारोह। तो ये थी स्थानीय सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियां। वैसे आगे बढ़ने के पहले आइए एक और गीत सुन लेते हैं।

डाल लेते हैं चार प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियों पर, जहां दैनिक हिंदुस्तान के हवाले से खबर है कि राज्य की 11 नई टाउनशिप से 6.45 लाख करोड़ का होगा निवेश, और हाईकोर्ट के माननीय हाईकोर्ट के 7 नए माननीय जज 15 को लेंगे शपथ, और विश्वविद्यालय कॉलेज शिक्षकों और कर्मियों के लिए 1,000 करोड़ रुपए हुए जारी। दैनिक जागरण लिखता है कि पाक में पिछले 6 साल में 7% आबादी और हुई गरीब, और कैलाश मानसरोवर यात्रा की है तैयारियों के लिए भारतीय राजदूत तिब्बत का दौरा, और विश्व कप की तैयारी शुरू करेगा भारत। प्रभात खबर लिखता है कि बिहार में मानसून ने पकड़ी रफ्तार और 17 जिलों में पहुंचा मानसून। नीट पुनर्परीक्षा में छात्रों को मिलेगा 15 मिनट का अतिरिक्त समय, और दैनिक भास्कर के हवाले से खबर है कि शिक्षकों को सीटेट या टीईटी यानी टेट पास करना जरूरी, नहीं तो जाएगी नौकरी। और एलन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर, उनकी संपत्ति 95 लाख करोड़ पार हुई, और यह है भारत की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद के 1/4 के बराबर। आइए एक और नगमा सुन लेते हैं।

तो श्रोताओं, इन्हीं नगमों के साथ ही दीजिए संजय चतुर्वेदी को आज के नमस्ते रोहतास कार्यक्रम से आज्ञा। नमस्कार।

नमस्ते रोहतास, अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में यानी ठीक 8 बजे आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित समाचार प्रभात। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खोल दिया जाएगा। भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
4: नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, CEO और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों नेता टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन और रणनीतिक मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नीस फ्रांस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
3: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान

इनका विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। श्री नारायण ने बताया कि इसरो और सीएसआईआर ने तकनीकी सहयोग के 40 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें से 17 को पहले चरण में कार्यान्वयन की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसी ही अनुसंधान साझेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी की जा रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग अगले 2-3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। कर प्रणाली में किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त वर्ष 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
5: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
4: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
6: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
7: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
4: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी

0: योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है।
2: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते की तुलना 2015 की संयुक्त कार्य योजना से भी की। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई गई है और शेष परमाणु सामग्री बाद में नष्ट कर दी जाएगी। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। ईरान के लोक प्रसारक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार श्री बागई ने दूसरे पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमनेई के अंतिम संस्कार के विधि विधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान की इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 तारीख को तेहरान और 7 तारीख को पवित्र शहर कौम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले लगातार वर्षा के कारण मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, फ्रांस पहुंचे मोदी, G7 में ट्रंप से भी मिलेंगे। पत्र के अनुसार वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आवाज देगा भारत। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, युवा शक्ति भारत के भविष्य को दिशा दे रही, युवाओं की उपलब्धियां विकसित भारत के निर्माण में मजबूत नींव बन रही। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहली बार IMA से पास आउट 9 महिला कैडेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इतिहास में मील का पत्थर, 5 महिला कैडेट्स वायुसेना में भी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब ICBM मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, बना 5वां देश। नेवल एंटीशिप मिसाइल का भी पहला सफल परीक्षण। पंजाब केसरी के अनुसार सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी बदलाव पर सरकार सख्त। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति को जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। सियासी तूफान शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर छापा, पुलिस बोली 4 घंटे खड़े रहे। पंजाब केसरी ने असले तृणमूल का सवाल देते हुए लिखा है, अपने आप ये अजूबा है कि 4 मई को विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने अलग गुट को मान्यता भी दे दी। देशबंधु की सुर्खी है, गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहा पाकिस्तान।

0: तकसीम मुनीर की नीतियों से हो रहा नुकसान, इस्लामाबाद में यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामले बढ़े।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। और भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए देशभक्ति संगीत।

तो अभी आपने मन्ना डे की आवाज़ में यह देशभक्ति रचना सुनी। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM बैंड के 103.4 MHz पर। 8:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए, फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी। पसंद आपकी कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपका रेडियो दोस्त संजय चतुर्वेदी। स्वीकार कीजिए हमारा सप्रेम नमस्कार। श्रोताओं, हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम की शुरुआत में वक्त फिल्म का एक नगमा, आशा भोसले की आवाज़ में। शायर अध्यानवी के लिखे गीत की तर्ज बनाई है रवि ने, और इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी श्रोतागण। आप हैं फुटानी चौक नारायण स्टेट से ललन मिश्रा, उदयकांत ठाकुर, अमन परासर, बेबी आराध्या, लल्लू पंडित और मिसर मोहल्ला। नारायण बाजार से आप हैं भाई फटफटिया झा, गुंजन परासर, अमित सुमित छोटू और बी के सुर गनैया। और इसी गीत के लिए हमें फरमाइश आपकी भी मिली है। जी हाँ, आप हैं नाज मंजिल मैसौल सीतामढ़ी बिहार से, अकरम हुसैन प्रिंस बेगम इशरत अकरम, बहू रुबीमा परवीन, नवासा अरहान बाबू, नवासा हमजा बाबू, नवासा तैमूर बाबू, नवासी हुमैरा नाज, नवासी सुमैरा नाज, नवासी अबिया नाज, साजिया शाहिन नाज, नाजिया नूरी नाज और बच्चू शायक चीना शायक, नवासा मुजम्मिल बाबू। चलिए, हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश का ये गीत।

शक्ति ये नाम है उस फिल्म का जिसका गीत हमारे श्रोता सुनना चाह रहे हैं, लता मंगेशकर के साथ किशोर कुमार को आनंद बख्शी के लिखे गीत की संगीत रचना की है राहुल देव बर्मन ने, और इस गीत को सुनना चाहते हैं ब्रह्मपुरा मणिगाछी से भाई अच्छे लाल राय, पानो देवी मुकेश कुमार राय, प्रेम कुमार और प्रिंस कुमार, गोरक्षणी सासाराम से राहुल वर्मा, राजीव वर्मा, संजय वर्मा, सुमित वर्मा और विश्रामबु महतो। चलिए हम आपको एक और फरमाइश ले लेते हैं इस गीत के लिए। सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरबा से भाई कारी राय कारी, मीना कारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जय श्री, पिंकी रिंकी, रिक्की नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा और जयंत कुमार बैरागी ने भी इस गीत को सुनना चाहा है, और इसी गीत को सुनना चाहते हैं आप भी। आप हैं भभुआ कैमूर से ललन तिवारी, दीपक राज, सुतांशु शेखर और आपके ढेर सारे मित्रगण। तो चलिए हम आपको शक्ति फिल्म का ये नगमा सुना रहे हैं, बहुत ही प्यारा नगमा, ये रहा आपके रेडियो सेट पर।

0: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन। वेटर ने फेंका स्पिन, 4000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
3: इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी। आइए हम आपको सुना रहे हैं कार्यक्रम का अगला नगमा यस बॉस फिल्म से। इस गीत को गाया है अभिजीत और अलका याग्निक ने, गीत लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत दिया है जतिन ललित ने। और इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी श्रोतागण, जी हाँ आप हैं गोकुल चौक गंगाजला सहरसा से, राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी और साक्षी। बुल्की वाला क्षमा करेंगे, बुल्की वाली फलनाचा, नयानगर सुपौल से श्वेता रंजन, पप्पू जी, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, गजेंद्र कुमार निराला ने भी इस गीत को सुनने की ख्वाहिश व्यक्त की है। और साथ ही साथ हमें एक और फरमाइश इस गीत के लिए आता हुआ दिख रहा है। जी हाँ आप हैं नौहट्टा से गिरधारी महतो, राधे लाल जी और आपके ढेर सारे दोस्त। चलिए हम आपको सुनवा रहे हैं ये नगमा इन शब्दों के साथ की है कभी पीड़ा कभी आनंद है प्राण से यह प्राण का अनुबंध है, देह कैसे गा सकेगा प्रेम को, प्रेम केवल आत्मा का छंद है। लीजिए सुनिए बहुत ही प्यारा नगमा।

और यह कार्यक्रम की आखिरी पेशकश लव इन टोक्यो फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में आइए सुन लेते हैं शैलेंद्र का लिखा एक नगमा। स्वरबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने और इस गीत को सुनना चाहते हैं कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान, बेगम निकहत परवीन, सदफ आरजू, साहिल अरमान, शमा परवीन, सादिया तस्नीम और अलीशा। और गोरक्षणी सासाराम से आप हैं मनोज चौबे, कौस्तुभ और अर्पणा चौबे। लीजिए सुनिए।

तो श्रोताओं, लता मंगेशकर की गाई इसी रचना के साथ ही पसंद आपके कार्यक्रम से संजय चतुर्वेदी को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के पटना केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी का पटना केंद्र है, प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
2: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
3: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रसारित।
5: सड़क दुर्घटनाएं सिर्फ खबर नहीं, कई परिवारों का दर्द बन जाती हैं। इसीलिए बिहार परिवहन विभाग लेकर आया है एक नई पहल।
6: अब आम जन भी सड़क सुरक्षा में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। अगर कहीं दिखे 3 सवारी, रैश ड्राइविंग, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट या यातायात नियमों का कोई भी उल्लंघन,
5: तो फोटो या वीडियो भेजिए व्हाट्सएप नंबर 9153971897 पर या ईमेल करें commandcontrolcenterbihar@gmail.com पर।
6: आपकी शिकायत पर होगी त्वरित कार्रवाई और आपकी पहचान रहेगी पूरी तरह गोपनीय।
5: आइए मिलकर बनाएं सुरक्षित बिहार, स्वयं नियमों का पालन करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। परिवहन विभाग, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
7: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
8: बन गया बजट?
7: हाँ, 5,000 बच गए।
8: तो नई साड़ी ले ले।
7: ना, पिछले महीने तो ली थी।
8: एक और
7: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
8: बढ़िया है,
7: जाओ भाई।
9: RBI कहता है,
10: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
11: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
12: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
13: हर घर सूर्य घर।
14: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चांद पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। असम के जोरहाट में वायुसेना विमान दुर्घटना में जहानाबाद के शुभम कुमार और भोजपुर के दानिश आलम समेत 5 जवान शहीद। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जताया शोक। नालंदा की 52 बूटी साड़ी और फैब्रिक, गया के पत्थरकट्टी स्टोन क्राफ्ट तथा भोजपुर की पेड़िया पेंटिंग को मिला GI टैग। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 9वीं से 12वीं कक्षा तक के लिए सभी विद्यार्थियों के लिए अपार ID अनिवार्य किया। अब समाचार विस्तार से। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने कहा है कि इसरो ने परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस्ड आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया है जो लूनर लैंडर को चंद्रमा के बेहद ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में CSIR RISE कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि सौर ऊर्जा से चलने वाला चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चंद्रमा पर केवल 14 दिनों तक ही काम कर पाया था। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने पर काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिनों तक काम कर सके। आर्टिफिशियल हीटर वाला यह लैंडर चंद्रमा के कठोर मौसम में भी काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशन

0: में लंबे समय तक मदद मिलेगी। असम के जोरहाट में कल भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में बिहार के 2 जवान समेत 5 सैन्यकर्मी शहीद हो गए। हादसे में जान गंवाने वालों में बिहार के शुभम कुमार और दानिश आलम भी शामिल हैं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार जहानाबाद जिले के हुलासगंज थाना क्षेत्र के बनवरिया गांव के निवासी थे। वहीं अग्निवीर वायु दानिश आलम भोजपुर जिले के कोयलवर प्रखंड के कायम नगर के रहने वाले थे। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की गई है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश शहीदों के साहस और सेवा को हमेशा गर्व के साथ याद रखेगा। उन्होंने शहीदों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र शहीदों के अदम्य साहस, कर्तव्य निष्ठा और समर्पण को सदैव श्रद्धापूर्वक स्मरण करेगा। बिहार के 3 पारंपरिक उत्पादों नालंदा की 52 बूटी साड़ी और फैब्रिक, गया के पत्थरकट्टी स्टोन क्राफ्ट तथा भोजपुर की पीढ़िया पेंटिंग को भौगोलिक संकेतक GI टैग मिला है। इससे इन उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक नई पहचान मिलेगी। बिहार की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने राज्य के शिल्पकारों, बुनकरों, कलाकारों और संबंधित संस्थाओं को बधाई भी दी है। श्री चौधरी ने कहा कि यह उपलब्धि बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक कला कौशल और ग्रामीण प्रतिभा को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने वाली है। उन्होंने कहा कि राज्य की लोक कला, हस्तशिल्प और हथकरघा परंपराएं बिहार की अमूल्य धरोहर हैं तथा GI टैग मिलने से इन उत्पादों की विशिष्ट पहचान को कानूनी संरक्षण के साथ वैश्विक बाजार में नई प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 9वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों के लिए अपार ID बनवाना अनिवार्य कर दिया है। समिति ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस संबंध में पत्र जारी करते हुए 30 जून तक सभी छात्रों की अपार ID तैयार करने का निर्देश दिया है। बिहार बोर्ड ने स्कूल प्रधानों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी छात्रों की अपार ID बनवाने की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। साथ ही UDIS कोड के साथ अपार ID का विवरण उपलब्ध कराना भी आवश्यक होगा। यह कार्रवाई शिक्षा मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप की जा रही है ताकि विद्यार्थियों का शैक्षणिक रिकॉर्ड डिजिटल रूप से एकीकृत और सुरक्षित रखा जा सके। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना स्थित विद्युत भवन में ऊर्जा विभाग की 1,278 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री चौधरी PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1,512 करोड़ रुपए की लागत से 2.5 लाख कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के घरों की छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के कार्य का शुभारंभ भी करेंगे। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव तथा ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री आज ही कृषि विभाग के कार्यक्रम में खरीफ महाअभियान 2026 के तहत किसान जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह वाहन राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर किसानों को खरीफ फसलों की उन्नत खेती, आधुनिक कृषि तकनीकों तथा सरकारी योजनाओं की जानकारी देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। कर प्रणाली

0: किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त वर्ष 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रख्यात अर्थशास्त्री एवं श्रम बाजार विशेषज्ञ प्रोफेसर अलख नारायण शर्मा को केंद्र सरकार ने श्रम सांख्यिकी उच्चतर स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस महत्वपूर्ण दायित्व के लिए प्रोफेसर अलख नारायण शर्मा को बधाई दी है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश के 19 जिलों तक मानसून पहुंच चुका है। मानसून की उत्तरी सीमा अभी मुजफ्फरपुर से होकर गुजर रही है। मानसून के प्रभाव से कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और आसपास के जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना है। इस दौरान पटना, औरंगाबाद, रोहतास, बेगूसराय, नालंदा और शेखपुरा समेत 14 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
2: राज्य के औरंगाबाद, भभुआ, गया, नवादा एवं रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम भाग के जिलों अरवल, बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, लखीसराय, नालंदा, पटना एवं शेखपुरा जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले माह एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने कहा है कि खेल व्यक्तित्व निर्माण, नेतृत्व क्षमता और मानसिक दृढ़ता के विकास

0: के लिए प्रभावी माध्यम है। उन्होंने पटना में खेल भारती द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कहा कि खेल केवल एक मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह मजबूत राष्ट्र का निर्माण भी करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है। पात्रता परीक्षा पास करने के लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त 2028 निर्धारित की गई है। इधर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि वे इस आदेश का अध्ययन कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के पालन के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा।
1: क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के हम भी चिंतित हैं, सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तो देश भर के मामले को देख करके और कोई ना कोई डायरेक्शन हमेशा वहां से पास होता रहा, उसका अध्ययन करेंगे। अभी हमारे पास ये जानकारी आई है, हमने अपने लीगल टीम को कहा है कि उसका अध्ययन करिए, मंडे को उस पर सेक्रेटरी के साथ बैठेंगे, क्या एक्शन प्लान हो सकता है उस पर बातचीत करेंगे, आगे बढ़ेंगे।
0: स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने बाल हृदय योजना के तहत कल 32 बच्चों को अहमदाबाद के लिए रवाना किया। अहमदाबाद में जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों का बेहतर और निशुल्क इलाज किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बाल हृदय योजना के तहत अब तक 3,101 बच्चों का सफल इलाज कराया जा चुका है। परिवहन विभाग के सचिव राजकुमार ने कहा है कि वाहनों में प्रेशर हॉर्न और मल्टी ट्यून्ड हॉर्न लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रेशर हॉर्न और ट्यून्ड हॉर्न बजाने वाले प्रतिष्ठानों पर भी कार्रवाई की जाएगी। परिवहन सचिव ने कहा कि इसके इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए राज्यव्यापी विशेष जाँच और प्रवर्तन अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का यह मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत और पाकिस्तान की महिला टीमों के बीच अब तक खेले गए 16 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में भारत ने 13 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि पाकिस्तान को केवल 3 मैचों में सफलता मिली है। वहीं आज एक अन्य मैच में नीदरलैंड्स का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने IIT पटना की रिपोर्ट पर सुर्खी लगाई है, राज्य के 23 बड़े पुलों की स्थिति बेहद गंभीर, 10 पर चल रहा है काम। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, बिहार के विकास के लिए सभी को 20 घंटे करना होगा काम। दैनिक जागरण का शीर्षक है, ICBM मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, DRDO ने किया सफल परीक्षण। दैनिक भास्कर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से जुड़ी खबर पर लिखा है, फ्रांस से 12 समझौते संभव, रफाल के सोर्स कोड लेने पर भी होगी बात। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चांद पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। असम के जोरहाट में वायुसेना के विमान दुर्घटना में जहानाबाद के शुभम कुमार और भोजपुर के दानिश आलम समेत 5 जवान शहीद, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जताया शोक। नालंदा की 52 बूटी साड़ी और फैब्रिक, गया के पत्थरकट्टी स्टोन क्राफ्ट तथा भोजपुर की पीढ़िया पेंटिंग को मिला GI टैग। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 9वीं से 12वीं कक्षा तक के लिए सभी विद्यार्थियों के लिए अपार ID अनिवार्य किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
3: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार।

0: द्वारा प्रसारित।
1: बाढ़ से बचने के उपाय। आपातकालीन किट हमेशा अपने पास रखें, जिसमें एक छोटी रेडियो, टॉर्च, बैटरी, मजबूत रस्सी, माचिस, मोमबत्ती, पानी, सूखा भोजन, खाद्य सामग्री आदि साथ हो। घर के सभी सदस्यों को नजदीकी सुरक्षित आश्रय का पता हो। बच्चों को बाढ़ के पानी में खेलने से रोकें। सांपों एवं अन्य जहरीले जंतुओं से बचकर रहें। चेतावनी व सुझाव के लिए रेडियो सुने या टीवी देखें। अफवाह पर ध्यान न दें और न ही घबराएं। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
2: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
3: आगे सैलरी? नहीं झुमके
4: ना, पहले बचत,
3: पहले झुमके।
4: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
3: लेकिन झुमकों का क्या?
4: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
5: आरबीआई कहता है,
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: कृपया ध्यान दें, डेंगू अपने शहर में पांव पसार रहा है, पर हम सावधानी और स्वच्छता से इसको हरा सकते हैं।
8: डेंगू की रोकथाम के लिए कुछ जरूरी बातों का पालन अवश्य करें। जैसे डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनपता है, इसीलिए कहीं भी पानी जमा ना होने दें। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, इसीलिए अपने आसपास साफ रखें और अपने शरीर को ढक कर रखें। समय समय पर फॉगिंग करें और मच्छरदानी का प्रयोग करें। बच्चों को बाहर भेजने से पहले मच्छर भगाने की क्रीम लगाएं। खिड़की दरवाजों में मच्छर जाली लगवाएं।
7: जब होगा पूरा प्रयास हमारा, तभी मिलेगा डेंगू से छुटकारा। जीवंत बिहार, सपना हो साकार। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग और सूचना व जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

एक नज़र हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों पर। जी हाँ, आज 9:10 पर यानी अब से थोड़ी ही देर बाद फिल्म संगीत का रुत्फ उठाइएगा गीत मालका के तहत, और बच्चे अपना प्रसारण सुनेंगे अंकुर 10:05।

लोक माधुरी के तहत भोजपुरी एल्बम लोक गीत आप सुनेंगे 10:30 पर, और भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स का लुत्फ उठाइएगा रसधार कार्यक्रम में 10:45 पर।

हमारे सांध्यकालीन प्रसारण में आप सुनेंगे विज्ञान एवं पर्यावरण कार्यक्रम 5:30 पर। साथ ही 6:05 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रसारित भोजपुरी समाचार बुलेटिन।

ग्रामीण श्रोता अपना कार्यक्रम सुनेंगे गांव घर 6:10 पर। और आज के इस कार्यक्रम में भूपेंद्र नारायण सिंह जानकारी देंगे कटते जंगल चढ़ते पारे के संबंध में। अलावा इसके इस कार्यक्रम में बच्चों के अच्छे संस्कारों के लिए रहें सजग और विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर रक्तदाता महादाता

की भी चर्चा की जाएगी। प्रायोजित कार्यक्रम ममता का आंचल आप सुनेंगे संध्या 7 बजे। तो श्रोताओं, यह थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा आपके लिए। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। 9:10 हुए हैं। गीत मालिका के तहत लीजिए सुनिए कुछ फिल्मी नगमे।

प्रोफेसर फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में। आइए इन्हीं आवाज़ों में सुन लेते हैं एक और नगमा। फिल्म है काली टोपी लाल रुमाल।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: विविध भारती के मुंबई केंद्र से कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

अभी आपने सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में साहिर का लिखा और रोशन का स्वरबद्ध किया नगमा सुना। फिल्म थी दिल ही तो है। और इन्हीं गीतों के साथ ही आज का यह गीत मालिका कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही क्षणों में

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

बरसात की रात फिल्म की ये कव्वाली सुनकर याद आ जाता है वो जमाना जब फिल्में तो ब्लैक एंड व्हाइट होती थीं, मगर उनकी कहानियां जीवन के जज्बाती रंगों से भरपूर। और याद आता है वो कलाकार जो अपने सुदर्शन व्यक्तित्व और सीधे सरल परंतु प्रभावी अभिनय से दर्शकों के दिलों पर छा जाता था।

सन 1920 के जून महीने की 14 तारीख को मेरठ में जन्म हुआ भारत भूषण का। पिता राय बहादुर मोतीलाल सरकारी वकील थे। भारत भूषण बस 2 ही वर्ष के थे जब उनकी माता का देहावसान हुआ। मां के गुजरने के बाद बड़े भाई आर चंद्रा के साथ भारत भूषण अपने दादाजी के यहां अलीगढ़ चले आए।

अलीगढ़ में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात भारत भूषण पिता की मर्जी के खिलाफ एक्टिंग में करियर बनाने के लिए पहले कोलकाता और बाद में मुंबई आकर बस गए। किदार शर्मा निर्देशित 1941 की फिल्म चित्रलेखा में भारत भूषण को अभिनय का पहला अवसर मिला। भारत भूषण को अभिनय का पहला अवसर तो मिला, मगर उसके बाद संघर्ष का एक लंबा दौर

जीवन का एक दशक बीता और 1952 में भारत भूषण को फिल्म मिली बैजू बावरा। इस फिल्म ने उन्हें आनन फानन सुप्रसिद्ध फिल्म सितारों की श्रेणी में लाकर रख दिया। इस फिल्म के संगीतकार नौशाद, नायिका मीना कुमारी और पार्श्व गायक मोहम्मद रफी को जितनी तारीफें मिली, उतनी ही तारीफ और शोहरत भारत भूषण को भी नसीब हुई। मानो प्रतिभा की गंगा और किस्मत की जमुना का मिलन होना था, हो गया।

0: सहारा।
1: बैजू बावरा की अपार सफलता के बाद सिलसिला चल पड़ा, एक के बाद एक फिल्में आती गईं। भारत भूषण अपने अभिनय से किरदार सजाते गए और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए। 1952 से 1954 तक रिलीज हुई ये फिल्में हैं आनंद मठ, माँ, मिर्जा गालिब, शबाब और श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु इस फिल्म के लिए भारत भूषण को सर्वोत्कृष्ट अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार प्रदान किया गया। उनके समकालीन अभिनेता और निर्माता चंद्रशेखर कहा करते थे, हिंदी फिल्मों में यदि पौराणिक या ऐतिहासिक पात्र कोई सबसे अच्छा निभाते हैं तो वो है अभिनेता भारत।

आभूषण केवल अभिनेता नहीं थे, उन्हें किताबों का बहुत शौक था। विभिन्न विषयों की किताबें वो पढ़ते रहते थे और शायद यही वजह थी कि वो बहुत अच्छे लेखक भी थे। बरसात की रात, नई उम्र की नई फसल, बसंत बहार और दूज का चांद आदि फिल्मों की कहानियां उन्हीं की लिखी हुई थीं।

0: देखते रहे।
1: बसंत बहार, कवि कालिदास, परदेसी, रानी रूपमती, चंपा कली, गेटवे ऑफ इंडिया, फागुन, सम्राट चंद्रगुप्त, सोहनी महिवाल, सावन, अंगुलीमाल, बरसात की रात, मुड़मुड़ के न देख, घूंघट, संगीत सम्राट तानसेन, 11,000 लड़कियां, जहां आरा, तकदीर, 1950 और 1960 के दशक की इन फिल्मों में नायक की भूमिका निभाने वाले भारत भूषण उन गिने चुने अभिनेताओं में से थे जिन्हें संगीत की बहुत अच्छी समझ थी, और इसीलिए अधिकतर संगीत प्रधान फिल्मों के नायक के रूप में उनका चुनाव किया जाता। दूज का चांद इस फिल्म के वो निर्माता भी थे। उस जमाने के मशहूर गायक कलाकार मोहम्मद रफी, मन्ना डे, मुकेश और तलत महमूद के गाए ज्यादातर गीत भारत भूषण पर फिल्माए गए।

बढ़ती उम्र में भी चरित्र अभिनेता के रूप में भारत भूषण पूरे उत्साह और उमंग के साथ सक्रिय थे। 1970, 1980 और 90 के दशक की ये फिल्में थीं जय संतोषी मां, मीरा, उमराव जान, हीरो, रहगुजर, काला धंधा, गोरे लोग और अव्वल नंबर।

0: आज के फनकार अभिनेता भारत भूषण पर केंद्रित ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत जयंत पात्रीकर को।
1: आज के फनकार।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया।
1: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांस

0: सीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिनों तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की है कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के फसल उत्सव राजा के अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने राजा को मानसून के स्वागत का त्यौहार बताया। उन्होंने कहा कि यह त्यौहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले समग्र स्वास्थ्य, मानसिक आरोग्य और प्रकृति के साथ सामंजस्य को बढ़ावा देने में योग की भूमिका का उल्लेख किया है। कजाकिस्तान के दुशांबे में योग सत्र में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि योग उन शाश्वत मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है जो विश्व भर में लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस की थीम है मानवता की एक बूंद, रक्तदान करें, जीवन बचाएं। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है नन्हे श्रोताओं का साप्ताहिक प्रसारण अंकुर।

0: जय हिंद बच्चों।
1: जय हिंद दीदी।
0: स्वागत है आप सभी का आज के अंकुर कार्यक्रम में। बच्चों, आप सभी को आपकी वंदना दीदी का बहुत सारा प्यार।
1: आपको भी हम बच्चों का बहुत सारा प्यार।
0: बच्चों, यह तो हम सभी जानते हैं कि प्रकृति के बिना हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। हवा, पानी, भोजन, धूप, सब कुछ हमें प्रकृति से ही तो मिलता है। शायद इसीलिए प्रकृति के अनेक रूपों जैसे कि वृक्षों की, सूर्य की, चांद की, नदियों की हम पूजा करते हैं। लेकिन यहीं पर जब आराम और सुविधा की बात आती है तो हम सब यह भूल जाते हैं कि प्रकृति ने जो हमें दिया है उसका संरक्षण करना भी हम सबका कर्तव्य है। हम अपनी सुख सुविधा के लिए प्रकृति का इतना लाभ ले लेते हैं कि उसका आने वाले समय में मानव पर भयानक असर पड़ सकता है। आज हमारी प्रकृति इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के कारण अनेक तरह की बीमारियां होने लगी हैं। बढ़ते वायु प्रदूषण का सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ता है और इन सब के जिम्मेदार भी हम मनुष्य ही हैं।
2: लेकिन दीदी, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए?
0: हाँ बच्चों, हम यदि सोच ले बदलाव ला सकते हैं। हमें सबसे पहले तो यह समझना होगा कि हम कितना पानी और कितनी ऊर्जा इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अपने तरीकों में बदलाव लाकर कम से कम पानी का उपयोग कर पाएंगे, साथ ही इसकी बर्बादी भी कम कर सकते हैं। धरती का सम्मान करना हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए। इस बदलाव की शुरुआत हम खुद से करें। ऊर्जा की बर्बादी को रोकना होगा, साथ ही हमें ऊर्जा के अन्य स्रोतों की तलाश करनी होगी। जिस धरती से हमें जीवन मिल रहा है, सुख सुविधाएं मिल रही हैं, उसे हरा भरा रखने की जिम्मेवारी भी हम सबकी ही है। घर में, स्कूल में या अन्य खाली जगहों पर पेड़ पौधे लगाकर हम जहां पर्यावरण को हरा भरा रख सकते हैं, वहीं वायु प्रदूषण को भी कम करने में अपना योगदान दे सकते हैं। हालांकि सरकार द्वारा भी प्रदूषण रोकने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन ये उपाय सफल तभी हो सकते हैं जब हम सभी खुद भी प्रयास करें, तभी इन गंभीर समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है। पता है आपको, देश की राजधानी दिल्ली सहित देश के अन्य भागों में बढ़ता वायु प्रदूषण काफी खतरनाक स्तर तक पहुँच गया है। निश्चित रूप से यह बढ़ता वायु प्रदूषण हमारे आधुनिक रहन सहन का ही परिणाम है। बच्चों, आज पूरी दुनिया के बहुत सारे लोग सांस लेने के लिए साफ हवा से भी वंचित हैं। इतने पर भी यदि हम अपने रहन सहन के तरीके नहीं बदलेंगे तो आने वाले समय में और भी भारी मुश्किलें आएंगी। बच्चों, बाजार से जो हम पॉलिथीन थैलों में सब्जी या सामान वगैरह लाते हैं, पता है आपको, वो पॉलिथीन थैला आज हमारे पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। आज बहुत बड़ी मात्रा में प्लास्टिक के थैले हर साल फेंके जा रहे हैं। बच्चों, ये प्लास्टिक बैग नालियों को जाम कर रहे हैं और नदियों एवं महासागरों तक भी पहुंच रहे हैं। चूंकि ये गलते नहीं है, इसीलिए ये पर्यावरण को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती लायक जमीन बंजर होते जा रहे हैं। गाय, भैंस, बैल या अन्य पालतू जानवर इन्हें खा जाते हैं और फिर मर जाते हैं। बच्चों, इस प्लास्टिक कचरे से मिट्टी, जल, वायु हर तरह के प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है।
2: तो दीदी, हम इसे कैसे हटाएंगे?
0: बच्चों, ना तो हम प्लास्टिक को जला सकते हैं क्योंकि इससे कई प्रकार की जहरीली गैसें निकलती हैं और वायु प्रदूषण बढ़ता है, और ना ही हम इसे मिट्टी में ढक सकते हैं क्योंकि यह मिट्टी में नष्ट नहीं होता और कई हजारों वर्षों तक मिट्टी में वैसा का वैसा ही बना रहता है। इससे मिट्टी प्रदूषण बढ़ता है।
3: दीदी, प्लास्टिक तो पानी में भी नहीं घुल सकता है ना?
0: जल में नहीं घुलता, इसीलिए जल प्रदूषण बढ़ता है।
3: तो फिर दीदी, प्लास्टिक को हम कैसे खत्म कर सकते हैं?
0: प्लास्टिक को खत्म करने के लिए तो सबसे पहले प्लास्टिक के थैले को ही बंद करना होगा। इसके लिए इनकी जगह पेपर बैग या कपड़ों का बैग या थैला उपयोग में लाना होगा। हमें जल्द से जल्द प्लास्टिक बैग को हटाने के लिए नए विकल्पों को तलाशना होगा। और सबसे बड़ी बात, लोगों के मन में प्लास्टिक बैग को खत्म करने के लिए जागरूक

0: चिंता उत्पन्न करनी होगी।
1: दीदी, हमें संकल्प लेना होगा कि आज से हम जब भी बाजार सामान खरीदने जाएं तो झोला लेकर जाएं।
0: बिल्कुल, प्लास्टिक पर पूरी तरह रोक लगाकर ही हम पर्यावरण संरक्षण में अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। पर्यावरण स्वच्छ रहेगा तभी हम स्वस्थ रहेंगे। बच्चों, धरती है तो हम है। आज हम सभी को इसकी रक्षा के लिए न सिर्फ जागरूक होना होगा बल्कि जी जान से इसे सुंदर और स्वच्छ बनाने में लग जाना होगा। पेड़ों में भी जीवन होता है। जब वे काटे जाते हैं तो मौन रहकर चुपचाप अपने हालत पर आंसू बहाते हैं, लेकिन इंसान इस पर ध्यान न देकर उन्हें नष्ट ही करता जा रहा है, साथ ही अपनी दुनिया भी वीरान करता जा रहा है। पेड़ की कहानी आइए सुनते हैं। पेड़ की जुबानी, एक छोटा सा लघु नाटक।
2: दो लकड़हारे लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाते हैं। जब वे एक पेड़ को काटते हैं तो पेड़ बोलता है, अरे अरे भाई, तुम लोग मुझे क्यों काट रहे हो? एक लकड़हारा आश्चर्य से इधर उधर देखते हुए बोलता है, कोई हमसे कुछ बोल रहा है क्या?
0: दूसरा लकड़हारा,
3: मुझे तो यह पेड़ ही बोलता हुआ लग रहा है।
0: पेड़ फिर से बोला, हाँ यह मैं हूँ जिसे तुम लोग काटने जा रहे हो। पहला लकड़हारा,
4: अरे ये तो पेड़ सचमुच बोल रहा है।
0: दूसरे लकड़हारे ने कहा,
3: हाँ इसके पहले तो हमने आज तक किसी पेड़ को कभी बोलते हुए नहीं सुना।
0: इस पर पेड़ ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि हम पेड़ों में जीवन नहीं होता? तुम हमें काटते हो तो हमें कष्ट नहीं होता। तुम क्या सोचते हो कि हम हमेशा तुम मनुष्यों के अत्याचार को चुपचाप ऐसे ही सहन करते रहें? पहला लकड़हारा बोलता है,
4: हमने भला तुम पर ऐसा कौन सा अत्याचार किया है?
0: पेड़ ने इसका उत्तर देते हुए कहा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तुम सबने मिलकर अपने मतलब के लिए हमारे पूरे हरे भरे परिवार को एक एक कर नष्ट कर दिया है। अब इधर मैं संयोग से बचा हूँ तो मुझे भी काटने के लिए आ गए। तब दूसरा लकड़हारा बोलता है,
3: लेकिन लकड़ियाँ बेचना तो हमारा काम है, हम लकड़ी ना बेचे तो जिएंगे कैसे?
0: पेड़ बोला, तुम्हें सिर्फ अपने जीवन की पड़ी है मूर्ख, ये नहीं सोच रहे हो कि जब इस धरती पर पेड़ ही नहीं रहेंगे तब तुम मनुष्य भी एक दिन जीवित नहीं रह सकते हो। पहला लकड़हारा कहता है,
4: यह तुम क्या कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है?
0: पेड़ ने कहा, देखो हम पेड़ पौधों की वजह से ही तो यह धरती आबाद है। तुम्हें साफ सुथरा पर्यावरण मिलता है। जिस दिन हम नहीं रहेंगे उस दिन धरती वीरान हो जाएगी और यहाँ रहने वाले सारे जीव जंतु विलुप्त हो जाएंगे। जिस तरह दूसरे ग्रहों पर जीवन नहीं है वैसे ही एक दिन इस पृथ्वी से भी जीवन नष्ट हो जाएगा। दूसरे लकड़हारे ने कहा,
3: वह भला कैसे?
0: पेड़ ने समझाते हुए कहा, देखो पेड़ पौधों की वजह से सभी जीव जंतुओं को भोजन, पानी और शुद्ध हवा मिलता है। हमारी संख्या में कमी होने से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। दोनों चुपचाप पेड़ की बातों को सुनकर उसका मुंह देखते हैं। पेड़ ने आगे कहा, पेड़ पौधों को काटने के अलावा मनुष्य और न जाने कितने अत्याचार इस धरती पर कर रहा है। वह अपनी मिट्टी, वायु, जल इत्यादि पर्यावरण के घटकों को दिन प्रतिदिन प्रदूषित करता जा रहा है। हम पेड़ पौधों का परिवार मिलकर इस असंतुलन को ठीक करने का प्रयास करते हैं। हम तो जब तक जीते हैं तब तक तुम्हारी भलाई करते हैं। पहले लकड़हारे ने कहा,
4: लेकिन लकड़ियाँ काटने वाले एक हम ही तो अकेले नहीं हैं, हम नहीं काटेंगे तो कोई दूसरा आकर काटेगा ही।
0: पेड़ ने समझाते हुए कहा, पर्यावरण की रक्षा करना किसी एक का काम नहीं बल्कि यह सभी का दायित्व है। तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने आज तक कितने पेड़ काटे होंगे? दूसरा लकड़हारा सोचते हुए बोला,
3: वह तो हमें याद नहीं।
0: पेड़ बोला, अच्छा यह बताओ कि आज तक तुमने कितने पेड़ लगाए होंगे? दोनों लकड़हारे सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं,
5: पेड़ तो हमने कभी लगाए ही नहीं।
0: पेड़ ने सवाल किया, क्यों? इस पर पहला

0: लकड़हारा बोला, क्योंकि पेड़ लगाना हमारा काम नहीं, हम तो सिर्फ उसे काटना ही जानते हैं।
1: पेड़ बोला, जब सारे पेड़ खत्म हो जाएंगे तब क्या करोगे?
0: दूसरा लकड़हारा बोला,
2: हमने तो कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं, इतना बड़ा जंगल है तो सारे पेड़ कैसे खत्म हो जाएंगे?
1: पेड़ ने कहा, जैसे जैसे शहर बढ़ रहे हैं और औद्योगिकरण का विस्तार हो रहा है, वैसे वैसे जंगल सिमटते जा रहे हैं, धरती से वन और वन्य जीव लुप्त होते जा रहे हैं। आज जंगलों को विस्तार देने की जरूरत है, न कि उन्हें काटने की, नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब वर्षा की कमी और धरती के बढ़ते तापमान से यहाँ आने वाली पीढ़ियों का जीवन घोर संकट में पड़ जाएगा।
0: पहला लकड़हारा कहता है,
3: देखो पेड़ भाई, हम तो ठहरे एक साधारण अनपढ़ लकड़हारे, इतनी गंभीर बातें हमारी समझ में नहीं आती। अब जब तुम इतना बोल रहे हो तो यह भी बता दो कि अब हम क्या करें।
0: पेड़ इसका उत्तर देते हुए कहता है, प्रायश्चित। दूसरा लकड़हारा आश्चर्य से बोलता है,
4: क्या?
0: पेड़ ने आगे कहा, देखो मैं ये बात सिर्फ तुमसे ही नहीं बल्कि हर किसी से कह रहा हूँ कि तुमने आज तक पर्यावरण का जितना नुकसान किया है उसकी भरपाई तो संभव नहीं है, लेकिन अब से भी यदि तुम संभल जाओ और ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाकर उनकी रक्षा करने का संकल्प लो तो भविष्य में धरती पर जीवन के मंडराते हुए खतरे को टाला जा सकता है। पेड़ ने आगे समझाते हुए कहा, देखो मुझे ये तो पता है कि मानव की आने वाली पीढ़ियां काफी तेज होंगी, लेकिन पर्यावरण की अवहेलना कर और प्रकृति की पुकार को अनसुना कर कोई भी पीढ़ी कभी सुखी नहीं हो सकती। इसलिए समय रहते सभी को थोड़ा रुककर सोचने की और अपने पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने की जरूरत है, क्योंकि जब तक होगी प्रकृति की रक्षा तब तक होगी जीवन की सुरक्षा। पेड़ की कहानी उसी की जुबानी, अभी हम सुन रहे थे लघु नाटक। लेते हैं यहीं पर एक छोटा सा अंतराल और सुनते हैं कुछ संदेश।
5: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
6: जी,
5: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
6: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
5: पर ये होगा कैसे?
6: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
5: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
6: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
5: बस
6: बस
5: समझ गया।
6: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
7: आरबीआई कहता है,
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: कार्यक्रम के इस भाग में पुनः आप सभी का स्वागत है। बच्चों कहते हैं लालच बुरी बला है। किसी भी चीज का यदि हम अपने सुख सुविधा के लिए एक सीमा से ज्यादा लाभ लेना चाहते हैं तो उसे नुकसान पहुंच सकता है। हमारी प्रकृति, हमारे वनों के साथ भी यही तो हो रहा है। हमने अपनी सुख सुविधा और जरूरतों के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई की है और परिणाम स्वरूप प्रदूषित पर्यावरण आज हम सबके सामने एक बड़ी समस्या के रूप में खड़ी है। ये तो हुआ वास्तविक परिणाम पेड़ों को नष्ट करने का, लेकिन और भी बहुत कुछ हो सकता है कहानियों में। आइए सुनाती हूँ आपको ऐसी ही एक कहानी। बच्चों एक था सुंदर सा गांव, जहां पर थी ढेर सारी हरियाली, सुंदर चहचहाते पक्षी और खूबसूरत फूल। उस गांव में रहता था एक बड़ा लड़का और उसकी माँ। लड़के का नाम था नीरज। नीरज की माँ कठिन मेहनत करती थी घर का खर्च चलाने के लिए। बड़ी मुश्किल से वे दोनों समय का भोजन जुटा पाती थी। एक दिन वो गई जंगल में और कुछ सूखी लकड़ियां जमा करके ले आई। इस बीच वो लड़का यानी नीरज घर में या आसपास घूमता रहता। उसे माँ की कठिन परिश्रम की

तनिक भी चिंता नहीं रहती। तो बच्चों, नीरज की माँ जब लकड़ियों का गट्ठर लिए आई और उसे घर में खेलते देखा तो बहुत दुखी हुई। नीरज छोटा तो था नहीं, अपनी माँ के कामों में हाथ बटा सकता था। तभी नीरज की माँ को अचानक से कुछ ख्याल आया। उन्होंने लड़के को बुलाया और वो सूखी लकड़ियाँ उसे दे दी। फिर कहा, जाओ इसे बेचकर कुछ खाने के लिए लेते आओ। लकड़ी का ढेर सर पर रखकर नीरज बाजार की ओर निकल पड़ा। हालांकि वह कभी बाजार नहीं गया था, सो कैसे खरीदते बेचते हैं उसे पता ही नहीं था। वह बाजार में एक अनाज वाले के पास गया। वह ध्यान से दुकान में देख रहा था, तभी अचानक उसकी नजर एक चमकीले बीज पर पड़ी। नीरज सोचने लगा कि वह बीज चमक क्यों रहा था। उसने दुकानदार से पूछा, इस लकड़ी के लिए आप मुझे कितना अनाज देंगे? दुकानदार ने लकड़ी के बदले कुछ अनाज देने की बात कही, लेकिन नीरज की नजर तो उस चमकीले बीज पर ही थी। उसने दुकानदार से कहा, मुझे अनाज नहीं चाहिए, मुझे वो चमकीला बीज चाहिए। दुकानदार के बहुत समझाने पर भी उसने वो चमकीला बीज ही लिया। घर वापस आकर नीरज ने वो बीज माँ को दिखाया। ये देखो माँ, मैंने एक चमकीला जादुई बीज लाया है। माँ हैरान रह गईं और बोली, तुमने खाने के लिए ये लाया है? माता जी से पकड़कर रोने लगी। तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? तुमने सारी लकड़ी देकर ये एक बेकार बीज लाया है, हम आज क्या खाएंगे? तुम कब समझोगे ये सब? नीरज रोने लगा और वहां से भाग गया। एक सुनसान जगह पर पहुंचा और उस चमकीले बीज को पानी में फेंक दिया। अचानक से क्या हुआ कि बीज फूल गया पानी से और एक पेड़ उसमें से उगने लगा। छोटे पेड़ ने लड़के की ओर देखा और कहा, ओ लड़के, क्या तुमने मुझे बोया है? हाँ, मैंने ही बोया, नीरज रोते हुए बोला। पर तुम रो क्यों रहे हो? पेड़ ने पूछा। सब तुम्हारी वजह से, नीरज ने सारी कहानी पेड़ को सुना दी। पेड़ को भी दुख हुआ और उसने लड़के को एक आम का फल दिया। नीरज खुश हो गया और घर वापस दौड़ते हुए गया, माँ को आम दिया और फिर दोनों ने आम को बांटकर खाया। अगले दिन फिर नीरज आम के पेड़ के पास गया आम लेने के लिए। इस बार भी पेड़ ने एक ही आम दिया। नीरज को लालच आ गया और वह और आम मांगने लगा। पेड़ ने कहा, बच्चे, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, मुझ पे एक श्राप है, मैं तुम्हें एक आम से ज्यादा नहीं दे सकता। मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ पर नहीं कर सकता। फिर से अगले दिन नीरज पेड़ के पास गया और मांगने के लिए, पर पेड़ ने फिर वही जवाब दिया। नीरज ने पेड़ से पूछा, क्या आपके पास और कोई जादुई शक्ति है? नहीं, पर मैं एक काम कर सकता हूँ, मेरे पास कुछ लकड़ी है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तुम लकड़ी का इस्तेमाल करके एक अच्छा घर बना सकते हो, पर एक शर्त है, मेरे लकड़ी देने के बाद तुम मुझसे एक भी डाली नहीं काट सकते और काटने की सोच भी नहीं सकते, एक भी नहीं। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा और फिर मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। मुझसे वादा करो कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। नीरज ने पेड़ को वचन दिया और खुशी से लकड़ी अपने घर ले आया माँ को दिखाने। माँ, मैं एक घर बना सकता हूँ हमारे लिए, नीरज उत्साहित होते हुए बोला। कई हफ्ते बीत गए और नीरज ने एक अच्छा सा छोटा सा मकान बनाया। उसे अपने आप पर बहुत गर्व था। धीरे धीरे उसका मन लालच से भरने लगा, क्यों ना इस घर को और बड़ा बनाया जाए, फिर कल को इस मकान की कीमत और ज्यादा होगी, मुझे इसके लिए और लकड़ी चाहिए, पर मेरे पास तो पैसे है ही नहीं लकड़ी खरीदने के लिए। तभी उसे उस जादुई पेड़ की याद आई और उसने तय किया कि वह उसी पेड़ को काटकर और लकड़ी जमा करेगा। अगले दिन वह धीरे से एक कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ के पास गया। पेड़ ने लड़के को देखा और कहा, तुम इधर वापस क्यों आए? तुम अपना वचन तोड़ने वाले हो? नीरज ने घमंड से कहा, जी हाँ, मेरे पास अब बड़ी योजनाएं हैं।

0: और मैं कोई बेकार शाप से नहीं डरता। मुझे क्या होगा, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, पेड़ ने चेतावनी देते हुए कहा। तुम मुसीबत में पड़ चुके हो, तुम्हें याद है मैंने बोला था कि तुम मेरी डालियों को काटने की सोच भी नहीं सकते, और अब देखो तुम्हें बहुत झेलना पड़ेगा। इस पर नीरज हंसने लगा। तभी अचानक से उसके शरीर को कुछ होने लगा, उसके पैर जड़ों में बदलने लगे जो जमीन में घुस गए, और उसके हाथ लंबे डालियों में बदल गए जिसमें से पत्ते उगने लगे। नीरज जोर से चिल्लाने लगा और अंत में वह एक बड़े से पेड़ के रूप में बदल गया। आम का पेड़ बोला, देखा मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि कुछ बहुत बुरा होगा, अब असल में तुमने मेरा शाप ले लिया अपने लालच की वजह से, अब मैं मुक्त हो गया हूँ इस पेड़ के रूप से। आम का पेड़ धीरे धीरे आदमी में बदल गया और खुशी से वहां से चला गया। लालची लड़के को अपने लालच की सजा भुगतनी पड़ी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि लालची विचारों को अपने से दूर रखना चाहिए, क्योंकि लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। बच्चों, हर साल 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन दुनिया भर के शरणार्थियों की मदद की जाती है, साथ ही उनकी स्थिति के प्रति जागरूकता फैलाई जाती है। आज पूरे विश्व में 8 करोड़ महिलाएं, बच्चे और पुरुष शरणार्थी के तौर पर जीवन बिता रहे हैं। बच्चों, शरणार्थी या रिफ्यूजी उन लोगों को कहा जाता है जिनका न तो अपना घर होता है और न ही देश। इन्हें सब कुछ छोड़कर दूसरे की शरण में जीना पड़ता है। इन्हें किसी युद्ध, आपदा, आतंकवाद के चलते अपना सब कुछ छोड़कर किसी दूसरे देश में मजबूरी में जाना पड़ता है। अपना सब कुछ खोकर किसी दूसरे देश में बसने के लिए जाना पड़ता है, और डर के मारे ये वापस अपने देश लौटना नहीं चाहते। पहली बार सन 2001 में 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया था। ये दिन हमें याद दिलाता है कि अभी भी लाखों करोड़ों लोग बेघर हैं, जो किसी दूसरे की शरण में रहने को मजबूर हैं। विश्व शरणार्थी दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों में जागरूकता फैलाना है कि हम शरणार्थियों को अच्छी हालत में लाने के लिए सोचें, उन्हें हर वो जरूरी सुविधा दें जो एक अच्छे जीवन के लिए जरूरी हैं, उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने दें। अभी हम विश्व शरणार्थी दिवस पर कर रहे थे बातें। इसी के साथ बच्चों, कार्यक्रम का समय हो रहा है कि अगले कार्यक्रम तक के लिए हम आपसे इजाजत ले लें। आप नोट कर ले कार्यक्रम का पता। कार्यक्रम का पता है कार्यक्रम अंकुर, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी सासाराम, पिन कोड 821115। इसी पते पर भेजे गए आपके पत्रों का रहेगा हमें बहुत ही इंतजार। दीजिए अपनी वंदना दीदी को इजाजत। जय हिंद बच्चों।
1: जय हिंद।

यह था नन्हे श्रोताओं का साप्ताहिक प्रसारण अंकुर। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं लोक माधुरी कार्यक्रम में भोजपुरी एल्बम लोकगीत।

अभी आपने शारदा सिन्हा के स्वर में यह रचना सुनी और अब आइए सुन लेते हैं मुन्ना सिंह को।

श्रोताओं, अभी आपने भरत शर्मा व्यास की आवाज़ में यह रचना सुनी और इसी के साथ ही लोक माधुरी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आइए सुनते हैं रसधार कार्यक्रम। भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स के इस कार्यक्रम में सबसे पहले आइए सुनते हैं मुलायम यादव की गाई ये रचना।

तो अभी आपने किरण पांडे की आवाज़ में ये रचना सुनी और इसी के साथ ही रसधार कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। आइए सुन लेते हैं भोजपुरी एल्बम लोकगीत। सबसे पहले सुनते हैं प्रेम सागर सिंह की गाई ये रचना। लीजिए सुनिए।

0: दिशा स्कीम के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: संदेश के पहले आपने प्रेम सागर सिंह को सुना और एक रचना प्रस्तुत है कश्यप सिन्हा की आवाज में।

0: विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है। और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान। गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है। और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।
1: तो श्रोताओं, इसी संदेश के साथ ही लोक माधुरी कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के प्रसारण। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

इस फिल्म का ये गाना जब रिकॉर्ड होना था तब लता जी का गला खराब था और वो गाना गाने की स्थिति में नहीं थी। ऐसे में मदन मोहन ने खुद ये गाना गाया था और शूटिंग के लिए भेज दिया गया था। बाद में इसे लता जी की आवाज में डब कर लिया गया था।

0: इस फिल्म के एक और गाने से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी संगीतकार मदन मोहन के बेटे समीर कोहली की जुबानी।
1: अब आपने बात की लज्जा गले की, अभी देख लज्जा गले एक अचम्मा बन चुका है, इट्स अ मिरेकल। आज अगर आप YouTube पे जाएं तो YouTube पे 500 मिलियन से ज्यादा व्यूज, मुझे नहीं लगता कि किसी पुराने गाने के इतने व्यूज हैं।
0: बिल्कुल,
1: पर मनोज कुमार साहब से मेरी मुलाकात, वो हीरो थे इस फिल्म के, तो उन्होंने मुझे एक किस्सा बताया कि मदन जी को सिचुएशन दी गई, सिचुएशन के लिए राजा मेहर अली खान साहब ने गाना लिखा, मदन जी ने कंपोज किया, मदन जी ने कुछ गिने चुने लोगों को ये ट्यून सुनाई जिसमें से लता जी भी थी, सबको बहुत पसंद आई। अब बात आई राज खोसला साहब की, राज खोसला साहब का देखिए मदन जी से रिश्ता तब से है जब मदन जी ने अपनी जिंदगी की सबसे पहली फिल्म की थी जिसका नाम था आंखें,
0: आंखें देवेंद्र गोयल,
1: आंखें में उन्होंने एक गाना भी गाया था मदन जी के लिए
0: जी।
1: इसका रिकॉर्ड अवेलेबल है, एक कोरस सॉन्ग है, और ये बात हमेशा उनके बारे में बड़ी मशहूर कि उनको म्यूजिक की बड़ी समझ। तो मदन जी ने उनको बुलाया अपने म्यूजिक रूम में और कहा कि आप आइए, मैं आपको ट्यून सुनाना चाहता हूं आपकी सिचुएशन। अब वो आए, वो पता नहीं देखिए आर्टिस्ट पता नहीं कभी कौन से मूड में होता है, वो बैठे नीचे और जैसे ही मदन जी ने उनको ट्यून सुनाई, मदन आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, मुझे तो बिल्कुल मजा

0: बन गया।
1: ये कह के वो चले गए, तो मदन जी ने एक सिटिंग बुलाई संडे के दिन। सिप्पी साहब बैठे हैं सामने, मनोज कुमार बैठे हैं, चार पांच म्यूजिशियन हैं, राजा साहब बैठे हैं। तो मनोज कुमार जी ने उनसे कहा कि फिर से सुन लें एक रिक्वेस्ट, आपको पसंद नहीं आता दूसरी ट्यून्स। उन्होंने कहा ठीक है सुना। जैसे ही उन्होंने फिर से सुनी, मदन जी ने खुद गा के सुनाई, तो वो इधर उधर देखने लगे कि यार मेरा जूता कहाँ है। तो मनोज कुमार क्या कहते, दिल कर रहा है मैं अपना ये जूता उठा के अपने सर पे मारूं।
2: ओह गॉड,
1: मैंने इस ट्यून को मना कर दिया। मनोज कुमार जी ने बड़े फखर के साथ मुझे कहा था इस गाने को मैंने बचाया है, और आज ये गाना अल्टीमेट सॉन्ग
2: जी
1: माना जाता है।

0: साधना के साथ सस्पेंस वाली फिल्मों की कड़ी की दूसरी फिल्म थी मेरा साया। इस फिल्म में भी साधना डबल रोल में थी। आपको बता दें कि मेरा साया असल में राजा परांजपे की एक मराठी फिल्म पाथलक का रीमेक थी और ये मराठी फिल्म जयंत देवकुले के उपन्यास आशा परत येते पर आधारित थी।
1: मैं एक फिल्म बना रहा था मेरा साया। मदन मोहन उस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे। उन दिनों एक दिन पहले रिहर्सल हुआ करता था और वो भी सुबह 9 बजे। मैं और मदन मोहन बैठे हुए थे और लता का इंतजार हो रहा था। गाना हमारे सामने था लेकिन धुन नहीं बनी थी। जैसे ही लता आई तो उसने हमारी शक्लें देखी और फौरन समझ गई कि कोई बात है। तो उन्होंने कहा, मदन भैया क्या बात है? उन्होंने कुछ नहीं, ट्यून नहीं है, धुन नहीं है। तो जरा सा मुस्कुराई और फिर कहने लगी, क्या मुखड़ा क्या है, जरा सुनाओ। तो उन्होंने मुखड़ा सुनाया। एक आधा मिनट भी नहीं सोचा होगा लता ने और फौरन कहा कि मदन भैया इसे नंद राग में बना के देखो। और 2-3 मिनट में वो ट्यून बन गई और वो गाना बड़ा अजब और मेरे लिए बहुत बड़ी यादगार।
0: राज खोसला की ये वो फिल्में हैं जिनमें नाटकीयता है, सस्पेंस है, बेमिसाल संगीत है और है शानदार अभिनय।

कहते हैं कि इस गाने को उस जमाने में जानी मानी कोरियोग्राफर सरोज खान ने कोरियोग्राफ किया था। वो उन दिनों मास्टर सोहन लाल की असिस्टेंट हुआ करती थी। मीरा साया के सभी गाने लाजवाब थे।

कहते हैं कि ये फिल्म अल्फ्रेड हिचकॉक की मशहूर फिल्म वर्टिगो से प्रेरित थी। अनीता को वो कामयाबी नहीं मिली जो इस सीरीज की बाकी दो फिल्मों को मिली थी। इस फिल्म के संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

इस बीच सन 1966 में राज खोसला ने फिल्म बनाई दो बदन। अभिनेत्री आशा पारेख ने इससे पहले तीसरी मंजिल, प्यार का मौसम और कारवां जैसी हिट फिल्में की थीं, लेकिन उनकी एक खास छवि थी। वो एक सजीली नायिका, एक ग्लैमर गर्ल के तौर पर देखी जाती थीं। अभी तक उनकी कोई ऐसी फिल्म नहीं आई थी जो उनकी अभिनय क्षमता को साबित करे। ये काम राज खोसला ने किया।

कितना अजीब इत्तेफाक है कि साधना के बाद आशा पारेख के साथ भी राज खोसला की 3 फिल्में आईं। पहली थी दो बदन, जिसने आशा पारेख को एक सशक्त अभिनेत्री के तौर पर स्थापित कर दिया। एक बार आशा पारेख ने कहा था, इंडस्ट्री में सभी को लगता था कि मैं सिर्फ एक ग्लैमर और डांसिंग गर्ल हूं, एक अच्छी अभिनेत्री नहीं। मुझे नहीं पता कि राज खोसला ने क्या सोचा था और उन्होंने मुझे दो बदन ऑफर की। लेकिन इस फिल्म के बाद आलोचकों का मुंह बंद हो गया और मुझे वो कॉन्फिडेंस मिला कि मैं भी ऐसे सीरियस रोल कर सकती हूं।

इस फिल्म के लिए सिमी ग्रेवाल को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। सन 1969 में राजखोसला लेकर आए फिल्म चिराग। इस फिल्म में आशा पारेख के साथ हीरो थे सुनील।

आशा पारेख के साथ राजकोसला ने 3 फिल्में की, दो बदन, चिराग और इस कड़ी की तीसरी और बेहद महत्वपूर्ण फिल्म थी सन 1978 में आई मैं तुलसी तेरे आंगन की।

आशा पारेख के साथ राजकोसला ने 3 फिल्में की, दो बदन, चिराग और इस कड़ी की तीसरी और बेहद महत्वपूर्ण फिल्म थी सन 1978 में आई मैं तुलसी तेरे आंगन की।

फिल्म चंद्रकांत काकोडकर के एक मशहूर मराठी उपन्यास अशीतुजी प्रीत पर आधारित थी। चंद्रकांत काकोडकर लंबे समय से राज खोसला के साथ काम करते आ रहे थे। उन्होंने अनीता और दो बदन के डायलॉग भी लिखे थे। ये फिल्म राज खोसला की सस्पेंस फिल्मों से एकदम अलग थी। दो महिलाओं की कहानी, रिश्तों की उलझन, कश्मकश, आत्मसम्मान की कहानी। नाटकीय फिल्मों पर जो पकड़ राज खोसला की थी, वो उन्हें एक विलक्षण निर्देशक

इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया। इस फिल्म को 3 फिल्मफेयर पुरस्कार मिले थे। राज खोसला को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार।

0: बेस्ट डायलॉग का पुरस्कार जीता डॉक्टर राही मासूम रजा ने इस फिल्म के लिए अभिनेत्री नूतन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। ये उनका 5वां फिल्म फेयर पुरस्कार था। यहां खास बात यह है कि 42 बरस की उम्र में नूतन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है क्योंकि इस उम्र तक अभिनेत्रियों का करियर ढलान पर पहुंच जाता है। राज खोसला की खासियत ये थी कि वो तरह तरह के विषयों पर फिल्में बनाते रहे। सन 1959 में उन्होंने बनाई दो रास्ते।
1: मुझे संगीत ने जिंदगी के हर मोड़ पर साथ दिया है। एक वक्त था कि मुझ पर बहुत कर्जे थे और एक गाने ने मुझे इन सब कर्जों से निकाल दिया। किस्सा ये था कि पिताजी सहगल के एक गाने को बहुत पसंद करते थे और अक्सर सुना करते थे। उस जमाने में ग्रामोफोन पर एक भोंपू हुआ करता था और एक कुत्ता सुना करता था। इसी गाने से मुतासिर होकर मैंने एक फिल्म बनाई दो रास्ते, और फिर संगीत ने मेरी मदद की और ये फिल्म गोल्डन जुबली हिट हुई। लीजिए वो गाना।

राजेश खन्ना और मुमताज के अभिनय वाली ये फिल्म खासी कामयाब रही। जब मुमताज बी ग्रेड की फिल्मों में काम कर रही थी, तब दो रास्ते के जरिए राज खोसला उन्हें मुख्य धारा की हीरोइन के तौर पर स्थापित कर पाए।

तक राज खोसला तकरीबन हर जॉनर की फिल्में बना चुके थे, बाकी थी डाकुओं की कहानी। उन्होंने एक शानदार ताना बाना बुना और 1971 में आई मेरा गांव मेरा देश।

विनोद खन्ना ने अपना करियर 1968 में सुनील दत्त की फिल्म मन का मीत से शुरू किया था। अमूमन वो खलनायक के रोल कर रहे थे। मेरा गांव मेरा देश में उन्होंने जब्बर सिंह की भूमिका की और उन्हें एक मुकम्मल पहचान मिली।

सन 2021 में जब इस फिल्म के 50 बरस पूरे हुए तो अभिनेता धर्मेंद्र ने सोशल मीडिया पर लिखा था, 50 साल 50 लम्हे बनकर गुजर गए, मेरे लिए ये फिल्म बहुत मायने रखती है।

देव आनंद के साथ राज खोसला का जो नाता था उसे राज लगातार निभाते रहे। सन 1973 में उन्होंने देव आनंद के लिए बनाई शरीफ बदमाश, इसकी हीरोइन थी हेमा मालिनी।

सन 1975 में राज खोसला लेकर आए फिल्म प्रेम कहानी। इसके कलाकार थे शशि कपूर, राजेश खन्ना, मुमताज और विनोद खन्ना। मैं तुझे प्यार

इस दौर में राज खोसला की सबसे बड़ी फिल्म कही जा सकती है यश जौहर की दोस्ताना। इसके कलाकार थे अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, प्रेम चोपड़ा, अमरीश पुरी, हेलेन और प्राण। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था।

का दशक आते आते राज खोसला का करियर अपने आखिरी दौर तक पहुंच चुका था। उनकी हिट फिल्मों का जो जादू 70 के दशक तक कायम था वो अब बुझने लगा था। सन 1984 में उन्होंने धर्मेंद्र, सनी देओल, वहीदा रहमान और शर्मिला टैगोर को लेकर बनाई

राज खोसला के निर्देशन वाली आखिरी फिल्म थी सन 1989 में आई नकाब। कलाकार थे ऋषि कपूर और फरहा। इस फिल्म के लेखक थे डॉक्टर राही मासूम रजा। राज खोसला के करियर की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 1972 में उन्होंने एक फिल्म प्रोड्यूस की, दो चोर, लेकिन इस अकेली फिल्म का निर्देशन उन्होंने खुद नहीं किया, इसके निर्देशक थे पद्मनाभ। धर्मेंद्र, तनुजा, शोभना समर्थ और जलाल आगा जैसे कलाकार, गीत मजरूह सुल्तानपुरी, संगीत आर डी परमन।

नब्बे का दशक आते आते राज खोसला सिनेमा से दूर हो गए। एक लंबा करियर, एक से बढ़कर एक फिल्में, फिल्मों की कमाल की विविधता, कहीं सस्पेंस थ्रिलर तो कहीं सामाजिक फिल्में और कहीं डाकुओं वाली फिल्में। कलाकारों की पीढ़ियां, संगीतकारों की और लेखकों की पीढ़ियां बदलती चली गई थीं, पर राज खोसला का करियर जारी रहा था।

लेकिन हर सूरज को एक दिन ढलना होता है। 9 जून 1991, 66 बरस की उम्र में राजखोसला ने आखिरी सांस ली।

वो अपने पीछे छोड़ गए अपनी ढेर सारी मनोरंजक फिल्में। ये वो फिल्में हैं जो दर्शकों को बांध कर रखती हैं, ये हमारे लिए मनोरंजन का स्तंभ हैं। हम उन्हें विनम्र नमन करते हैं।

0: आप सुन रहे थे राजखोसला पर यह विशेष फीचर। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान। प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों के स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा।

0: इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। उन्हें रोजगार, श्रम, गरीबी और विकास से जुड़े विषयों पर 40 वर्षों से अधिक का अनुभव है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में रांची के 2 और गढ़वा जिले के 2 लोग हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की है कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी है। कनाडा के वैंकूवर में फीफा विश्व कप में अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के फसल उत्सव राजा के अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैकाल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। विविध भारती से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल। बस थोड़ा सा इंतजार।

0: राहुल देव बर्मन की बनाई तर्ज पर इसे गाया किशोर कुमार ने। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे मेरे जीवन साथी, इस फिल्म का गीत आपने सुना।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं यादों की महफिल।

0: जलालाबादी के बोल थे आशा भोसले मोहम्मद रफी के युगल सुरों में। फागुन फिल्म का गीत आपने सुना।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3:03।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ों में आपको गीत सुनवाते हैं, फिल्म है गेटवे ऑफ इंडिया।

0: सोहनी महिवाल फिल्म का गीत आपने सुना, लता मंगेशकर का गाया, शकील बदायूनी के बोलों को सुरों में ढाला नौशाद ने। और इस गीत के पहले श्रोताओं, आपने मदन मोहन का सर्वाधिकीय गीत सुना, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, दो आवाजें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, फिल्म थी गेटवे ऑफ इंडिया।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: धन्य जवानियों अपने थी, धन्य वो उनकी जवानी जो

आऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चा बच्चा।

अजनबी फिल्म का गीत आपने सुना, किशोर कुमार की आवाज थी, नगमा निगार आनंद बख्शी, मौसिकार राहुल देव बर्मन। मेरे हमदम मेरे दोस्त मोहम्मद रफी की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, तर्ज है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

0: मेरे हुजूर, फिल्म का ये गीत आपने सुना मन्ना दी की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल थे शंकर, जय किशन की तर्ज थी। यही थी आज के कार्यक्रम यादों का सफर की आखिरी पेशकश।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद हुए हैं, जरा याद करो कुर्बानी।
0: यादों की महफिल।
4: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है। और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।

अचके में उनका माथ से।

गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गाँव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है, और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।

गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गाँव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है। और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।

काजल फिल्म का ये गीत सुन रहे थे आप। आपको कलाकार बताने हैं इस गीत के, और अगले गीत में भी आपको कलाकार बताने हैं और फिल्म पहचाननी है, गीतकार बताना है। हमारी एक श्रोता ने लिखा है, हमारे ग्वालियर में हर साल व्यापार मेला लगता है, उसमें एक हॉल में कई प्रकार के शीशे लगे होते हैं, उनमें किसी में मोटे पतले या फिर अलग अलग तरह के मुंह बनकर सामने आते हैं, तो उसे देखकर बड़ी हंसी आती है। जी हाँ, ये तो है, लेकिन शीशे के परिधान भी होते हैं श्रोता। वो आपको कितने पसंद हैं और कहाँ से आप खरीदते हैं, जहाँ आपने जहाँ भी खरीदा होगा, जहाँ से भी खरीदा होगा, वो एक खास नगरी होगी। वैसे ग्लास सिटी ऑफ इंडिया यानी कांच नगरी किसे कहते हैं, और क्या आपने यहाँ कभी खरीदारी की है? एक और सवाल का जवाब आपको देना है कि एक गीत है जो 60 के दशक की एक मकबूल फिल्म का है, उसमें बहुत सारे शीशे दर्शाए गए हैं, आपको वो फिल्म, वो अभिनेत्री पहचाननी है। एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज प्रसारित होने वाला सुरीला सफर कार्यक्रम में कुछ गीत नैनो में दर्पण है, दर्पण के इन्होंने बहुत सारे गीत लिखे हैं, लेकिन अगर आप टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग गीतों का जिक्र है श्रोताओं, और जरूर दर्पण के भी गीत

श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में हुस्न उफनती हसरतों उमंगों तरंगों का जिक्र है। जब इश्क की अरमान लिए दिल एक हम सफर हमराही और हमराज की चाहत रखता है, जो उसके दिल की भावनाओं को समझे और जीवन सफर का हम सफर बने। हुस्न और इश्क के ताने बाने में बुनी हुई तड़प दर्शाती खूबसूरत इबारत इश्क की इबारत है। संगीत में सफर की प्रेम गंगा में डुबकी लगाने के लिए हम श्रोतागण भी बेकरार हैं। तो जी हाँ, कार्यक्रम तो शुरू हो चुका है। श्रोता, एक और श्रोता ने लिखा है कि दर्पण की बात देखकर हमें तो गीत गाता चल का गीत याद आ गया, जिसमें प्यारी सी सारिका जी गा रही हैं, मैं वही दर्पण वही। और एक और श्रोता लिखते हैं, आईना सिर्फ चेहरा देखने के काम नहीं आता, आईना हमें मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे छुपे दर्द का एहसास भी दिलाता है। आईना हर देखने वाले को सच ही दिखलाता है, देखने वाला आईने में क्या देखना चाहता है, जो रूप भी आईने के सामने आता है आईना भी उस रूप का सच दिखाता है। पर आईने की एक सच्चाई ये भी है दोस्तों, ये कब सच बतलाता है, जब देखो दायां तो बायां ये दिखलाता है।

0: जीवन के दिल के अलग अलग परिदृश्य हैं श्रोताओं, जो गीतों में ढलकर हमारे सामने आए हैं, और यही तो आईना दिखाना चाहता है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है फिल्म के बारे में, जो हमने सवाल पूछा था मुगले आजम फिल्म का, वो गीत प्यार किया तो डरना क्या। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। और उसमें बहुत सारे शीशे जो हैं वो बेल्जियम ग्लास इस्तेमाल किए गए हैं। मधुबाला पर फिल्माया गया ये गीत है। और हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि भारत में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद को कांच नगरी यानी ग्लास सिटी कहा जाता है। इसे चूड़ी नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये देश में कांच की चूड़ियों और कांच के अन्य सजावटी सामानों का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये शहर आगरा के पास स्थित है। जी हाँ, और भी शीशे को लेकर बहुत सारी जो है बातें हैं, और बहुत सारे शहर हैं श्रोताओं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी कलाकृतियां हैं जो भारत में प्रसिद्ध हैं और जो व्यापार में भी लाई जाती हैं, यानी जिनका जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो इस बारे में भी अगर आप जानते हैं तो आप जरूर लिखें। और शीशे के जो गहने होते हैं वो भी अलग होते हैं। कुछ एक मीनाकारी और कुंदन के तरह का बनाया जाता है जिसमें मीनाकारी होती है। तो ये पारंपरिक जो ज्वेलरी है जो है वो राजस्थान के एक शहर में बनाई जाती है। क्या इस शहर के बारे में आपको पता है, जहां कुंदन और मीनाकारी का काम होता है। एक हमारे श्रोता लिखती हैं कि शीशे की एक सुंदर नाजुक वस्तु यानी आईना दर्पण, जो किसी भी चीज का सटीक प्रतिबिंब दिखलाता है, सजना संवरना, खुद को स्मार्ट दिखना रखना, ये काम दर्पण की सहायता से आसान बन जाते हैं। मन का दर्पण सच्चाई का प्रतीक होता है, जो आत्मबोध के साथ नकारात्मकता से बचाता है, आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। तो दर्पण जब घर में रखा जाता है तो बहुत सारी बातों का भी ध्यान रखा जाता है श्रोताओं, जैसा कि हमारी इन श्रोता ने लिखा है। तो क्या आप दर्पण को कहाँ रखना है इस बारे में भी ध्यान देते हैं तो जरूर बताइए। एक और श्रोता ने लिखा है कि आईना तो वही रहता है मगर चेहरा हर रोज बदल जाता है, कभी थका हुआ, कभी बिखरा हुआ, तो कभी संवरा हुआ। ये सच है कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन पूरा सच भी नहीं दिखा सकता। आईना चेहरे की झुर्रियां तो दिखा देगा, पर चेहरे के पीछे की थकान नहीं, मुस्कान तो दिखा देगा, पर उसके पीछे छुपे दर्द को नहीं बता सकता। एक और श्रोता ने लिखा है, वस्तुओं में एक आईना ही है जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करने की ग्रहणशीलता रखता है। पूरी निश्चलता के साथ आईने की जो सबसे बड़ी खूबी है, जहां से जो मिला उसे उसी रूप में लौटा देता है। इसलिए तो कहते हैं कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। उम्र दर उम्र और बदलते वक्त के दो ही साक्षी होते हैं, पहला समय और दूसरा आईना। हम इस बात को कभी समझ नहीं पाते, मगर सच यही है, आईना अपनी मौजूदगी में हमें खुद से मिलने की आज़ादी देता है। एक केवल उसी के पास साहस होता है तुमको तुमसे रूबरू कराने का। आईना हमारे जीवन रथ का सच्चा सारथी है।
1: गजरा लगा के, गजरा सजा के,

अपना देश फिल्म का ये गीत था, मुमताज और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया। किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाजें थी, आनंद बख्शी के बोल थे। एक श्रोता लिखते हैं कि आज गद्यांश में ऐसी नाजुक चीज की बात है जो सभी का हम सफर भी है, और वो चीज जो हमें खुद से रूबरू कराती है, और ये है आईना जो कभी झूठ नहीं बोला करता। आपके प्रतिबिंब जैसा है, आपका प्रतिबिंब जैसा है वैसा ही उभरता है। वक्त के साथ बदलते चेहरे से लेकर हर उन बदलावों का गवाह होता है जो उसमें प्रतिबिंब होते हैं। और कुछ एक गीत भी इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता ने लिखा है कि बहुत कमियां निकालते हैं हम दूसरों में, अक्सर आओ एक मुलाकात जरा आईने से भी कर लेते हैं। एक यही तो है जो जैसा है वैसा ही दिखाता है। सिर्फ आंतरिक भावनाओं को छोड़कर मैं जब भी अकेला होता हूँ तो आईने के सामने खड़ा होकर अपने आप को देखता हूँ तो महसूस करता हूँ कि कोई तो है मेरे साथ। और उसी समय रेडियो पर बजता गीत दिल को बेहद सुकून दे जाता है। आज की इबारत पढ़ने से पता चलता है कि बड़े ही रोमांटिक गीत सुनवाए जाएंगे कार्यक्रम में। और कुछ एक गीत भी इन्होंने बताए हैं जिसमें से कुछ एक गीत जो हैं वो मिलते भी हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज का सुरीला सफर आईने के साथ शुरू करना और आईने को लेकर ही पूरा करना है। मैं वही दर्पण, वही अपने आप को जवान दिखाने के लिए लोग बाल काले करते हैं, चेहरे पर मालिश लगा लेते हैं, लेकिन जब वो आईना देखते हैं तो आईना असली सूरत और उम्र दिखाता है। कभी कभी हम इतने उदास होते हैं और आईने को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जिंदगी के आईने को तोड़ दो, इसमें अब कुछ नजर नहीं आता। ऐसे ही कुछ गीत पुष्प सुनकर आज सुरीला सफर कार्यक्रम पूरा करना है।

इस गीत को आपको पहचानना है श्रोताओं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि रास्ता आईना मासूम चेहरा जुल्फ रंग महल हम सफर गजरा गजरा और बहुत सारे शब्द इन्होंने चुने हुए हैं। दर्पण भी है, हुस्न भी है, जरा ठहरो मोहब्बत दिलदार, तो ये सारे शब्द इन्होंने चुने हैं। एक और श्रोता ने लिखा है आईने में देख कर खुद को मुस्कुरा देते हैं वो उस और उस मुस्कान पर न जाने कितने दिल हार जाते हैं। तुम्हारी आंखों की चमक के आगे आईना भी फीका लगे, खुदा ने बड़ी फुर्सत से तुम्हारी सूरत बनाई है। तो इस तरह से इन्होंने अपनी इबारत को लिखना चाहा है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत को ध्यान से पढ़ने पर ये मुख्य शब्द निकल कर आते हैं जिन पर गाने आधारित हो सकते हैं। आईना चेहरा जुल्फ हम सफर और बहुत सारे शब्द इन्होंने लिखे हैं। और एक और श्रोता लिखते हैं कि एक छोटी सी प्यारी सी बात, दर्पण में दिखने वाला अक्स तो कुछ पल साथ रहता है लेकिन अच्छे कर्मों का प्रतिबिंब लोगों के दिलों में बरसों तक चमकता रहता है। एक और श्रोता लिखते हैं आज की इबारत आत्म मंथन और प्रेम का सुंदर संगम लगती है। आईना केवल चेहरा नहीं दिखाता बल्कि दिल के भीतर छिपे एहसासों, यादों, इंतजार और मोहब्बत को भी सामने ले आता है। ऐसा लगता है जैसे आज का सुरीला सफर हमें अपने ही दिल से मिलने, मुस्कुराने और जीवन के सबसे सच्चे हम सफर अपने आप को पहचानने की ओर ले जाएगा। जी हाँ श्रोताओं, और यही सब बातें जो हैं, कई बार हम जब आईने के सामने खड़े होते हैं तो हम अपने दिल से पूछते हैं, और इन्हीं सब बातों का जिक्र आज गीतों के जरिए आपके सामने आया है। कभी कभी तो आईने के सामने खड़े होकर हम बातें भी करते हैं, कभी अपने आप से कुछ कहते हैं तो कभी अपने आप से लड़ भी पड़ते हैं।

श्रोताओं, आपको कलाकार और संगीतकार बताने हैं।

वैजंती माला और दिलीप कुमार पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे लीडर फिल्म से। शकील बदायूनी का लिखा नौशाद का संगीत था, जिसके पहले आपने सुना मेरे महबूब फिल्म का गीत जो साधना पर फिल्माया गया नौशाद की तर्ज थी। एक श्रोता लिखते हैं कि यदि आईना में साफ दिखता नहीं है तो आईना साफ करने के साथ साथ एक बार अपने ऐनक के ग्लास को भी साफ कर देखें। हर बार गलती सामने वाले की नहीं होती, एक बार अपने अंदर भी झांक लें। एक श्रोता लिखते हैं कि आज प्रस्तुत गद्यमयी इबारत में आईने की बात है। आईना हर किसी के चेहरे की सच्चाई बयां किया करता है और इस दिल की भी उपमा चेहरे के समान ही है। एक चेहरे की हकीकत को यथा योग्य दिखाने वाले उस आईने को बाहरी आईने के समान अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन उस हृदय रूपी आईने के कृत्य उस आईने के मन दर्पण की अभिव्यक्ति करने में पूरी तरह समर्थ हुआ करते हैं। और ऐसे ही अभिव्यक्ति को जो है वो बता रही है ये इबारत। जी हाँ, और आईना बहुत सारी अभिव्यक्तियों को ध्यान में हमारे लाता है। श्रोताओं, ऐसे ही गीत आज हमने पिरोए हैं और अगला गीत भी बिल्कुल वैसा ही है। एक और श्रोता लिखती हैं कि दर्पण जीवन के विभिन्न रंग दिखाता है, मोहब्बत, प्रतीक्षा, रूठना मनाना, अपने और बीते हुए रिश्तों की परछाइयां। अतः आईना एक एहसास कराता है कि सच्चा हम सफर कोई और नहीं बल्कि स्वयं का दिल और अपनी पहचान है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आईना हकीकत बयां करता है, कुछ पाता नहीं, सामने लाता है आईना। कुछ गीत इन्होंने लिखा है, आईना वही रहता है जो चेहरे बदल जाते हैं। वैसे कांच की बात अगर करें श्रोताओं, जिससे आईना बनता है तो इसके बहुत सारे आभूषण भी बनते हैं, फूलदान भी बनते हैं, और एक जमाना था जब खिलौने भी बहुत बना करते थे और हम सब खरीदा भी करते थे। कांच के खिलौनों की अगर कोई यादें हैं तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। और बहुत सारे शीशे कई सारे ऐतिहासिक महलों में लगाए गए हैं, उनके बारे में अगर आपकी कोई जानकारी है तो आप हमें जरूर लिखें। और इस गीत को पहचाने अदाकार बताने हैं आपको। कई बार दर्पण देखते देखते देर भी हो जाती है, और ऐसा ही ये गीत है।

तनुजा और राजीव पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म थी नई उम्र की नई फसल, मुकेश की आवाज़ थी, नीरज के बोल थे, रोशन का संगीत था। शीश महल जो आमिर का किला है श्रोताओं, उसमें बड़ा ही खूबसूरत तरीके से, बड़ी खूबसूरत तरीके से इसे बनाया गया है। 1727 में जिसे राजा मान सिंह द्वारा बनवाया गया था। रानी महल में यहाँ आप देख सकते हैं कि तारों को देखने के लिए दीवारों और छतों पर हजारों दर्पण लगाए गए थे, जो एक दिए की अगर रोशनी की बात करें तो उससे भी जगमगा उठते थे। और अब ये गीत आप सुनिए और बताइए कि ऐसा लॉकेट आपके पास भी था क्या? इस लॉकेट में किसकी सूरत या शक्ल नजर आती है?

शालीमार फिल्म का ये गीत आपने सुना, जीनत अमान और धर्मेंद्र भी इसमें नजर आते हैं। लॉकेट में जो एक टूटे शीशे में नजर आती है वो धर्मेंद्र की तस्वीर है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि कांच का पेपर वेट बहुत सुंदर लगता है, कांच के दो तीन फ्लावर पॉट हैं हमारे घर में, कांच के और भी सुंदर डेकोरेटिव पीसेज हैं, पर बस डर लगता है कि टूट ना जाए। जहाँ टूटने का तो खतरा रहता है, ऐसा ही दिल भी है और जो शीशे का ही होता है। तो इस बारे में भी अगर आप कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि कांच का बना हुआ पहले दो चिड़िया का सेट आया करता था, जिसमें वो बीच में रखे एक बर्तन में एक के बाद एक अपनी चोंच डुबोती थीं, अब वो नहीं मिलता। एक और श्रोता ने लिखा है कि जयपुर के आमेर किले के अंदर मशहूर शीश महल है, कहते हैं इस शीश महल के दर्पण विदेश से मंगवाए गए थे। जी हाँ, बेल्जियम ग्लासेस हैं इसमें। एक और श्रोता लिखते हैं कि दर्पण एक ऐसी वस्तु है जिसका प्रयोग हम स्त्रियां अधिक करती हैं सजने संवरने के लिए, शायद इसीलिए हम स्त्रियों को टोका जाता है कि हम सजने संवरने में बहुत समय

अराउंड द वर्ल्ड फिल्म का ये गीत है आपको कलाकार बताने हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि नवरात्रि, दीपावली और शादियों के दौरान शीशे के काम वाला कपड़ों की मांग बढ़ जाती है। गुजरात का प्रसिद्ध चनिया चोली और राजस्थान का घाघरा चोली बिना मिरर वर्क के अधूरे माने जाते हैं। आधुनिक समय में ये कला सिर्फ पारंपरिक परिधानों तक ही सीमित नहीं बल्कि पश्चिम पहनावे जैसे जैकेट, कुर्तियां, स्कर्ट, बैग और होम डेकोर के में भी इसका खूब इस्तेमाल होता है।

राज कपूर और राजश्री पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म थी अराउंड द वर्ल्ड, मुकेश और शारदा की आवाजें थी। इस गीत की डिटेल हमारे श्रोताओं ने ठीक लिखी है और यही है आज के सुरीला सफल कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आप सभी की प्रतिक्रियाओं, आपके कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दीप्ति रमन से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ नागरिक ही देश की सबसे बड़ी ताकत है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुँच रही है। श्री नड्डा ने कहा कि देश में एम्स की संख्या एक से बढ़कर 23 हो गई है। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बीमारी के कारण किसी परिवार पर आर्थिक बोझ न पड़े। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना स्थित विद्युत भवन में ऊर्जा विभाग की 1278 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री चौधरी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1512 करोड़ रुपए की लागत से 2.5 लाख कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के घरों की छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के कार्य का शुभारम्भ भी करेंगे। इधर मुख्यमंत्री ने खरीफ महाअभियान 2026 के तहत किसान जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस वाहन के माध्यम से राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर किसानों को खरीफ फसलों की उन्नत खेती, आधुनिक कृषि तकनीकों तथा सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नालंदा की 52 बूटी साड़ी, गया के पत्थरकट्टी स्टोन क्राफ्ट और भोजपुर की पीढ़िया पेंटिंग को GI टैग मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि यह उपलब्धि राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक कला और शिल्प को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने वाली है। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गया जी जिले के खिजरसराय में एक नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। यह केंद्र 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश के सभी जिलों में स्थित केंद्रों पर आज मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल और चलंत दस्ता सिपाही भर्ती के लिए लिखित परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जा रही है। केंद्रीय सिपाही चयन परिषद के अनुसार इस परीक्षा के माध्यम से 4,200 से अधिक पदों पर बहाली होगी। इन पदों पर बहाली के लिए अगली परीक्षा 17 जून को होगी। सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों ने पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। पर्याप्त ट्रेन सेवाएं उपलब्ध नहीं होने से नाराज छात्रों ने स्टेशन परिसर में तोड़फोड़ और पथराव किया। इससे रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचा। पटना के पुलिस महानिरीक्षक जितेंद्र राणा ने बताया कि पुलिस के हस्तक्षेप से हंगामे को काबू में कर ट्रेनों का परिचालन सामान्य किया गया। प्रदेश में मानसून की उत्तरी सीमा अभी मुजफ्फरपुर से होकर गुजर रही है। मानसून के प्रभाव से कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद और आसपास के जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना है। इस दौरान वज्रपात के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। इधर विभाग ने अगले 2 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण जिले के गौनाहा, चनपटिया, नरकटियागंज, लौरिया और सिकटा सहित अन्य प्रखंडों में बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। नालंदा जिले के छबीलापुर थाना क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज के पास आज हुए भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत घटनास्थल पर हो गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

सामईन आदाब, यह आकाशवाणी पटना है। अब आप मोहम्मद तनवीर अली से इलाकाई खबरें सुनिए। सेहत के मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने कहा है कि गुज़िश्ता 12 बरसों में मुल्क की सेहत खिदमात में बड़ी बेहतरी हुई है। उन्होंने कहा कि सेहतमंद शहरी ही मुल्क की सबसे बड़ी ताकत हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में जनाब नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत मंसूबा, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और दीगर डिजिटल सेहत खिदमात के जरिए ज़्यादा लोगों तक इलाज की सहूलत पहुँच रही है। जनाब नड्डा ने कहा कि मुल्क में एम्स की तादाद 1 से बढ़कर 23 हो गई है। वहीं मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया के सबसे बड़े सेहत मंसूबे का इनेकाद पूरी कामयाबी के साथ कर रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि हुकूमत का मकसद ये यकीनी बनाना है कि बीमारी के सबब किसी खानदान पर इक्तसादी बोझ न पड़े। वज़ीर-ए-आला सम्राट चौधरी आज पटना वाक़े विद्युत भवन में महकमा तवानाई के 1,278 करोड़ रुपए के मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। जनाब चौधरी पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली मंसूबे के तहत 1,512 करोड़ रुपए की लागत से 2.5 लाख कुटीर ज्योति सार्फीन के घरों की छतों पर सोलर एनर्जी प्लांट लगाने के काम का भी आगाज करेंगे। इधर वज़ीर-ए-आला ने खरीफ महाअभियान 2026 के तहत किसान बेदारी गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस गाड़ी के तवस्सुस से रियासत के मुख्तलिफ अजला में जाकर किसानों को खरीफ फसलों की बेहतर खेती, जदीद ज़रई तकनीक और सरकारी मंसूबों की जानकारी फराहम कराई जाएगी। वज़ीर-ए-आला सम्राट चौधरी ने नालंदा की 52 बूटी साड़ी, गया के पत्थरकट्टी स्टोन क्राफ्ट और भोजपुर की पिढ़िया पेंटिंग को GI टैग मिलने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि यह हुसूलियाबी रियासत की खुशहाल सकाफती विरासत, रिवायती फ़न और दस्तकारी को कौमी व बैनुल अक़वामी सतह पर नई पहचान दिलाने वाली है। माइक्रो, छोटे और दरमियानी दर्जे की सनत के मरकजी वजीर जीतन राम मांझी और वजीर आला सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी ज़िले के खिजर सराय में एक नए टेक्नोलॉजी सेंटर का संग बुनियाद रखेंगे। ये सेंटर 170 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से कायम किया जाएगा। वजारत ने कहा है कि मरकजी हुकूमत का निशाना सालाना 7,000 नौजवानों को ट्रेनिंग देना और रोजगार जराए के तवस्सुस से हर साल 1,000 से जायद सनतकारों को इमदाद फराहम करना है। रियासत के सभी अजला में वाक़ मराकिस पर आज नशाबंदी सिपाही, वार्डन और मोबाइल दस्ता सिपाही तकरीरी के लिए तहरीरी इम्तहान 2 नशिस्तों में मुनक़िद किया जा रहा है। सेंट्रल कांस्टेबल सिलेक्शन बोर्ड के मुताबिक इस इम्तहान के तवस्सुस से 4,200 से जायद ओहदों पर बहालियां होंगी। इन ओहदों पर बहाली के लिए अगला इम्तहान 17 जून को होगा। सिपाही तकरीरी इम्तहान में शामिल होने वाले उम्मीदवारों ने पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा किया।

0: ट्रेन खिदमात दस्तियाब नहीं होने से नाराज तलबा ने स्टेशन अहाते में तोड़फोड़ और संगबारी की। इससे रेलवे की इमलाक को काफी नुकसान पहुंचा है। पटना के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जितेंद्र राणा ने बताया कि पुलिस की मदाखलत से हंगामे पर काबू पाकर ट्रेनों की आमदोरफ्त बहाल की गई। रियासत में मानसून की शुमाली हद अभी मुजफ्फरपुर से होकर गुजर रही है। मानसून के असर से कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और आसपास के अजला में मूसलाधार बारिश हुई है। महकमा मौसमियात से मौसूला इत्तला के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में रियासत के बेशतर हिस्सों में बारिश का इम्कान है। इस दौरान बर्फबारी के साथ 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। इधर महकमा ने आइंदा 2 घंटों के दौरान मगरबी चंपारण जिले के गौनाहा, चनपटिया, नरकटियागंज, लौरिया और सिकटा समेत दिगर ब्लॉकों में बारिश की पेशगोई जाहिर की है। नालंदा जिले के छबीलापुर थाना इलाके के मेडिकल कॉलेज के करीब आज हुए जबरदस्त सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत जाए वकूं पर ही हो गई, जबकि दिगर अफराद संगीन तौर पर जख्मी हो गए। छबीलापुर थाना के थाना इंचार्ज ने बताया कि 8 लोग ऑटो पर सवार होकर राजगीर मलमास मेला से स्नान करके अपने गांव कुचरा लौट रहे थे। इसी दौरान छबीलापुर में मेडिकल कॉलेज के करीब मुखालिफ सिम से आ रहे एक हाईवा ट्रक ने ऑटो में सीधी टक्कर मार दी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। सुनिए रोजगार सूचना। इलाहाबाद हाई कोर्ट रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एवं कंप्यूटर असिस्टेंट के कुल 543 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ ही कंप्यूटर साइंस में डिग्री डिप्लोमा हो या ओ लेवल, सीसीसी लेवल का प्रमाण पत्र हो। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें।

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कंप्यूटर असिस्टेंट हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.allahabadhighcourt.in से प्राप्त किया जा सकता है।

रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट के कुल 11,127 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वें उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI या डिप्लोमा अथवा इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 23 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.indianrailways.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

कर्मचारी चयन आयोग SSC CGL 2026 के आलोक में कुल 12,256 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम किसी भी विषय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.ssc.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने कोलंबो में सामूहिक प्रस्तुति देकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत आज शाम बर्मिंघम में पाकिस्तान के साथ अपना पहला मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंचे। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत को अविस्मरणीय बताया। श्री मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे।
1: कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा।
2: ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा। स्लोवाक संस्कृति के अनुसार मेहमानों और खास लोगों का स्वागत ब्रेड और नमक के साथ किया जाता है। ब्रेड को खुशहाली जबकि नमक को अहमियत, दोस्ती और सुरक्षा

0: प्रतीक माना जाता है। स्लोवाकिया के बच्चों का एक मशहूर लोक कला समूह प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक स्लोवाक नृत्य प्रस्तुत करेगा। लुचनिका एंसेम्बल द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति स्वागत समारोह का मुख्य आकर्षण होगी। स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। इस योजना का दायरा अब वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण उपलब्ध कराई जा रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुँच रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक दैनिक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया है कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7,000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग सीआईडी तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी मामले में पार्टी सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय से पूछताछ कर रही है। अभिषेक आज कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय भवानी पहुंचे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता के चयन के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षरों में जालसाजी की। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा।

0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि ये उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक कलाकारों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कोलंबो के गोल्फेस ग्रीन में आज इतिहास रचा गया। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। रंग, लय और परंपरा के अद्भुत संगम ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद साकार हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी है। इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने कलाकारों और आयोजकों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को और सशक्त बनाने वाला ये आयोजन कला और विरासत की एक अविस्मरणीय मिसाल बन गया है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद हॉर्मूज जल डमरू मध्य सभी देशों के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता। हालांकि ईरान ने आज समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरों की पुष्टि नहीं की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो वो आगे की बातचीत के लिए केवल प्रारंभिक ढांचा होगा। इस बीच ईरान के कई शहरों में लोगों ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया। ओडिशा में 3 दिवसीय फसल उत्सव राजा आज पाहली राजा उत्सव के साथ शुरू हुआ। ये महोत्सव मानसून और उड़िया महीने आषाढ़ के आगमन का प्रतीक है।
2: राज्य के सबसे पसंदीदा सांस्कृतिक त्योहार का नाम रजस्वला से आया है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि महिलाओं की तरह धरती भी आराम और नई ऊर्जा पाने के दौर से गुजरती है। उड़ीसा के हर घर में त्योहार के खास पकवाने जैसे पोड़ पीठा, अरीसा पीठा, चकुली पीठा और मसूर राजा पान की खुशबू फैली हुई है। राजा नारित्व और प्रकृति तथा जीवन को बनाए रखने वाली उसकी प्रक्रियाओं के प्रति उड़ीसा के गहरे सम्मान का एक अनोखा उत्सव है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में कल तक तेज आंधी तूफान की संभावना है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज लू चलने का अनुमान है।

0: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने 1-1 गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।

0: कहा अब तुम हो जवां मेरी जान धड़कपन छोड़ो।
1: तर्ज सचिन देव बर्मन की मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत आपने सुना, किशोर कुमार आशा भोसले का गाया, फिल्म थी तीन देवियां।
2: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
3: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जो शहीद

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: शागिर्द फिल्म का गीत था, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर का गाया, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे।
1: दिल की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: कजरा अखियां मलते मलते नैना मार गई रे।
1: राम और श्याम इस फिल्म का दो गाना था, मोहम्मद रफी आशा भोसले का गया, शकील बदायूनी के बोलों को सुरों में ढाला नौशाद ने, और यही थी सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

श्रोताओ नमस्कार। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3:01 हो रहे हैं और वक्त हो चला है कार्यक्रम मन चाहे गीत का। तो मन चाहे गीत कार्यक्रम में हम अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम को बिल्कुल ध्यान से सुनिए श्रोताओ, कहीं आपकी पसंद के गीत इसमें शामिल तो नहीं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर सुनने वालों को। संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

ब्लैकमेल, इस फिल्म में आपने सुना किशोर कुमार की आवाज राजेंद्र कृष्ण के बोल थे कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी, और इस गीत को पसंद किया शाहू नगर यवतमल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल और चेतन मनवर, यहीं से रोशनी और बेबी प्रियांशी ने।

कमाल अमरोही की रचना थी गुलाम मोहम्मद की तर्ज। लता मंगेशकर की आवाज़ में पाकीज़ा फिल्म का ये गीत आपने सुना। इस गीत को पसंद किया अनिल इंदौर से, अनिल बामनिया, प्रमिला बामनिया, नंदनी मुस्कान, नीलम सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक, कुणाल केतन और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने।

फिल्म मेला का ये गीत था, मोहम्मद जफी और लता मंगेशकर का गाया, आर डी बर्मन की तर्ज थी, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे। जिला अहिल्यानगर महाराष्ट्र से नंद कुमार अद्वंत, उर्मिला अद्वंत, नीलेश मयूरी, कल्पेश और संगीता अद्वंत की ये फरमाइश थी और इसी गीत को पसंद किया। बेरखेड़ा उज्जैन से विनोद मुड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मुड़त और चेतन नाहटा ने।

कच्चे धागे फिल्म का ये गीत आपने सुना, लता मंगेशकर और हेमलता की आवाजें थी। अनजान का लिखा ये गीत था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। गांधीनगर चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और पंचोलिया परिवार के सभी सदस्यों की ये फरमाइश।

आप सुन रहे थे मौसम फिल्म का गीत लता मंगेशकर और भूपेंद्र का गाया, गुलजार के बोल थे मदन मोहन का संगीत था। इस गीत को पसंद किया जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन, नजमा रियाज, शमरीन परवीन और मोहम्मद रिहान, और इसी गीत को सुनना चाहते थे जबलपुर से जिनेन्द्र जैन। और इस गीत के पहले श्रोताओं आपने कच्चे धागे फिल्म का गीत सुना था, आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, लता मंगेशकर की आवाज थी। इस गीत के साथ ही आवाज का मन चाहे गीत कार्यक्रम संपन्न करने की संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में सुनिए नाटक अभिशप्त गांधार का दूसरा और अंतिम भाग। इसके लेखक हैं डॉक्टर शंकर शेष, निर्देशक सुदर्शन कुमार। तो आइए सुनते हैं नाटक अभिशप्त गांधार दूसरा और अंतिम भाग।

0: पांडव पांच गांव ही तो मांग रहे हैं महाराज, दुर्योधन से कहिए दे दे।
1: कह चुका हूं।
0: तब?
1: नहीं मानता।
0: क्या कहता है?
1: उसका तर्क है, पांडवों ने अपनी धन संपदा राज सब कुछ द्यूत में हार दिया है। दासत्व से मुक्त होने के लिए पांडवों के लिए 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की शर्त रखी गई थी। ये अवधि पूरी होने पर पांडव दासत्व से मुक्त होकर स्वतंत्र हो गए हैं। उन्हें उनका राज्य वापस लौटाया जाएगा, ऐसी कोई शर्त नहीं थी। ऐसी स्थिति में उन्हें 5 गांव देने की बात कहां से उत्पन्न हो गई?
0: उसका तर्क अनुचित है क्या?
1: तर्क तो केवल तर्क ही है गांधारी, किंतु सत्य ये है कि कौरव और पांडव दोनों हैं तो एक ही वंश के, उनके बीच ईर्ष्या द्वेष वैमनस्य शोभा नहीं देते। यदि युद्ध हुआ तो जय पराजय किसी की भी हो, विनाश तो वंश का ही होगा।
0: तो फिर आप पांडवों को समझाइए कि वे भूमि के लिए हठ न करें।
1: कोई लाभ नहीं होगा।
0: क्यों?
1: उनकी ओर से समस्त निर्णय श्री कृष्ण लेते हैं।
0: वो क्या कहते हैं?
1: वही तो सारे विवाद के मूल में है। कहते हैं द्यूत में रखे गए पड़ों की कोई मान्यता नहीं, वो सब शकुनी का छल था।
0: छल? युधिष्ठिर ने स्वेच्छा से द्यूत क्रीड़ा में भाग लिया था। शकुनी की निपुणता और अपने दुर्भाग्य के कारण युधिष्ठिर पराजित हुआ, इसमें छल कहाँ है?
1: इस विवाद से कोई लाभ नहीं गांधारी, सर्वनाश से बचने का केवल एक उपाय है।
0: क्या?
1: दुर्योधन को समझा दो कि पांडवों को 5 गांव देकर उनसे मैत्री कर ली।
0: उस पर मेरा वश नहीं है, वो मेरी सुनता कहाँ है?
1: और इसके लिए कौन उत्तरदायी है? क्यों चुप क्यों हो गई? कुंती की क्यों सुनी जाती है? क्यों उसका प्रत्येक पुत्र उसके आदेश को वेदवाक्य मानता है?
0: फिर वही तुलना।
1: तुलना के अभिशाप से तुम बच नहीं सकती गांधारी। कुंती ने अपनी कटुता से मुक्ति पा ली, किंतु तुम?
0: कुंती के साथ मेरी तरह कोई छल नहीं
1: हुआ। क्यों नहीं हुआ था? कुंती जानती थी कि उसका होने वाला पति रोगी है। क्या उसके स्वप्न तुम्हारी तरह चूर चूर नहीं हुए? किंतु वे टूटी नहीं, उसने अपने दुख को जड़ता और संज्ञाहीनता का पर्याय नहीं बनने दिया।

0: आशा के मध्य भी उसने जीवन की एक सार्थक व्याख्या ढूंढी, जीवन को तुम्हारी तरह नकार नहीं दिया।
1: महाराज,
0: गंधारी, कुंती के बच्चे स्नेह और मातृत्व के प्रतीक हैं, तुम्हारे बच्चे घृणा और तिरस्कार की उपज है। यदि ये बच्चे द्रौपदी का वस्त्र नहीं खींचेंगे तो और कौन खींचेगा?
1: अभी कुछ नहीं बिगड़ा है महाराज, किसी प्रकार दुर्योधन को समझाइए, पांडव 5 गांव मांग रहे हैं, दे दे उन्हें।
0: दुर्योधन सुई की नोक बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं देगा गंधारी।
1: इसका अभिप्राय ये हुआ कि युद्ध अवश्यंभावी है और युद्ध का अर्थ है विनाश, संपूर्ण विनाश।
0: यही विधि का विधान है तो इसे कौन रोक सकता है?
1: ईश्वर कल्याण करे।

0: युद्ध का प्रथम दिन है गांधारी, भयानक विनाशकारी युद्ध। संजय कहता है इस युद्ध में रक्त की नदियां बह जाएंगी, धरती वंध्या हो जाएगी।
1: विनाश को आमंत्रित करने का निर्णय हमारा तो नहीं,
0: किंतु हम इसके प्रभाव से अछूते भी नहीं रह सकते। जानता हूं ये निर्णय आत्मघाती है, परंतु विवश हूं गांधारी, कुछ कर नहीं सकता। लगता है संजय आ रहा है, युद्ध का समाचार होगा।
2: महाराज की जय हो।
0: क्या समाचार लाए हो संजय?
1: कोई आहत हुआ?
2: नहीं महारानी, आप चिंता क्यों करती हैं? कौरवों के साथ पितामह भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे महारथी हैं, उनकी सैन्य शक्ति भी पांडवों से अधिक है। आज तो युद्ध का पहला दिन था, दोनों दल बराबर रहे। सत्य तो यह है महारानी कि पांडव सेना आज पीछे हटी।
1: मेरे सब पुत्र तो सुरक्षित है ना संजय?
2: हाँ महारानी। राजन,
0: कहो संजय।
2: आज आपके 9 पुत्र मारे गए।
0: 9 पुत्र?
2: हाँ महाराज, जलसंध, सुषेण, उग्र, वीरबाहु, भीमरथ, सुलोचन।
1: संजय बा...

चित्रसेन, उपचित्र, सुचारू, चित्राक्ष, नंद और उपनंद मारे गए।

राज, दुर्मुख, दुर्जय, दुष्कर्ण, शत्रुंजय, बिंद।

गांधारी, आपके पुत्रों की संख्या घटते घटते केवल दो रह गई।

0: संजय, मेरा दुर्योधन कहाँ है? जिससे पूछती हूँ वही चुप। कहाँ चला गया है मेरा बेटा?
1: जिस भीम ने आपके दूसरे पुत्रों का वध किया, उसने ही महाराज दुर्योधन का भी।
0: असंभव। दुर्योधन नहीं मारा जा सकता। मैंने उसे वज्र की देह दी है। संसार में ऐसे पुरुष का जन्म नहीं हुआ है जो दुर्योधन को मार सके। तुम असत्य बोल रहे हो संजय। कहो कि तुम असत्य बोल रहे हो।
1: नहीं महारानी, मैं सत्य बोल रहा हूं। भीम नहीं महाराज दुर्योधन की जंघा पर गदा से प्रहार करके उनके प्राण लिए।
2: क्या?
0: जंघा पर प्रहार, नाभि के नीचे वार। संजय, यह अन्याय है, अधर्म है, पाप है।
3: निसंदेह ये विश्वासघात है, ये मर्यादा का उल्लंघन है।
0: संजय, सच सच बताना। सच बताने की तुमने प्रतिज्ञा की है। क्या मेरे पुत्र का वध षड्यंत्र के कारण नहीं हुआ? किसने किया ये षड्यंत्र?
1: देवी, महाराज दुर्योधन युद्ध से थककर एक सरोवर में विश्राम कर रहे थे। युधिष्ठिर और उनके भाई उन्हें खोजते हुए सरोवर तक पहुंचे। युधिष्ठिर ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा, कहा तुम पांचों पांडवों में से किसी एक को युद्ध के लिए चुन लो। यदि तुम विजयी हो गए तो तुम सारे राज्य के स्वामी हो जाओगे।
0: हाँ दुर्योधन, तूने भीम ही को क्यों चुना?
1: देवी, महाराज दुर्योधन ने अपने गदा कौशल से भीम को लगभग परास्त ही कर दिया था, परंतु
3: परंतु
1: कृष्ण ने अर्जुन को सांकेतिक भाषा में समझाया कि यदि भीम महाराज दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करे तो विजयी हो जाएगा।
3: ये घोर नीति।
1: भीम ने कृष्ण का यह संकेत तुरंत भांप लिया और सिंह की भांति झपटकर जंघा पर प्रहार किया। महाराज दुर्योधन कटे वृक्ष की भांति भूमि पर गिर
0: पड़े। बस संजय, अब आगे कुछ मत कहो, एक शब्द भी नहीं। आज 100 पुत्रों की माता निसंतान हो गई। सब वेदनाएं सो गई। दुख की पराकाष्ठा ने मन को आवेगों से मुक्त कर दिया है।
3: फिर भी हमें जीवन का अभिशाप भोगना है गांधारी, एक अर्थहीन जीवन का अभिशाप। 100 पुत्रों की मृत्यु का आघात सहकर भी हमें अपने अस्तित्व का शव अपने कंधों पर धोना है। अपने ही पुत्रों के वधिकों को हमें दीर्घजीवी और यशस्वी होने का आशीर्वाद देना है। आंसू पोछो कांधारी, आंसुओं से भीगी पट्टी तुम्हें अधिक कष्ट देगी। उठो, उठो।
4: मैं वासुदेव कृष्ण माता गांधारी को प्रणाम करता हूँ।
0: वासुदेव कृष्ण, क्यों आए हो यहाँ? अब मेरा एक भी पुत्र नहीं बचा, किसे मारोगे?
4: शांत हो राजमाता।
0: राजमाता, श्री कृष्ण उपहास क्यों करते हो? तुमने कितनी माताओं से उनका मातृत्व छीन लिया, कितनी स्त्रियों से उनका पति छीन लिया। मैंने अपने इन कानों से सहसरों स्त्रियों का आर्तनाद सुना है। अच्छा हुआ मैं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पड़े शवों को नहीं देख सकी। पट्टी बांध

0: सोने का उपयोग पहली बार समझ में आया।
1: देवी गांधारी, क्या मैंने युद्ध रोकने का प्रयत्न नहीं किया था? क्या मैं दूत बनकर आपकी राजसभा में नहीं आया था? किंतु आपके पुत्र ने सुनी ही कहा, राज्य लोभ द्वेष से पीड़ित उसकी आत्मा।
0: नहीं कृष्ण, नहीं, तुमने युद्ध रोकने का वास्तविक प्रयत्न किया ही नहीं। तुम चाहते तो ये युद्ध हो ही नहीं सकता था। तुम्हारा पराक्रम, तुम्हारी नीति और तुम्हारी हल्की सी धमकी इस युद्ध की महाज्वाला को रोक सकती थी।
1: देवी गांधारी,
0: कृष्ण, मैं तुम्हारा दर्शन समझती हूँ। तुमने देख लिया था कि वस्तु स्थिति सुधार से परे है। फटे आकाश को सीकर ठीक नहीं किया जा सकता। नए जीवन की भूमिका रचने के लिए विगत को क्रूर विदाई देनी ही पड़ती है। किंतु कृष्ण, जो बचे हैं उनके विषय में कभी सोचा तुमने? हम अब क्या करेंगे? किसका मुंह देखकर जिएंगे? बताओ।
1: मुझे क्षमा करो माता।
0: दुर्योधन बुरा होगा, दुशासन ने नारकीय कृत्य किए होंगे, पर मेरे 100 के 100 बेटे तो इतने बुरे नहीं थे। तुम चाहते तो उनमें से एक जीवित रह सकता था, एक। हम अंधों की लाठी तो नहीं छिनती।
1: माता, जो अवश्यंभावी है उसे कोई नहीं रोक सकता, न मैं और न आप।
0: नहीं, तुम रोक सकते थे कृष्ण, तुम रोक सकते थे, किंतु तुमने प्रयत्न नहीं किया। छल और प्रवंचना तुम्हारी सबसे बड़ी नीति रही है। वासुदेव, शापित जीवन की ज्वाला में झुलसी ये गांधारी तुम्हें शाप देती है। तुम्हारा समस्त वंश भी इसी प्रकार आपसी कलह में नष्ट हो जाए। जिस प्रकार छलकर तुमने मेरे पुत्रों को मारा है, उसी प्रकार किसी के भ्रम के कारण ही तुम्हारे भी प्राण निकले। जाओ, जाओ, मुझे किसी की सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है। मेरी जड़ी भूत आत्मा उस संवेदना से परे है।

0: मन करता है अब हस्तिनापुर से दूर कहीं अरण्य में चले।
1: क्या किसी ने कुछ कह दिया? कुंती ने, द्रौपदी ने?
0: नहीं, उनका व्यवहार इतना अच्छा है कि अपने पराश्रित होने की अनुभूति और गहरी हो जाती है। इससे मुझे अपने बच्चे अधिक याद आते हैं।
1: मैं समझ गया। ठीक है गांधारी, वंश परंपरा के अनुसार हमें वल्कल धारण कर वन में जाना चाहिए।

0: अब निश्वास लेने से क्या लाभ गांधारी? हम लोगों की गृहस्थी जैसे चलनी थी चली, अब उसका स्मरण करके दुखी होने से क्या लाभ?
1: महाराज, मैं अपने दुखों के लिए उसास नहीं भर रही हूँ।
0: तब
1: यहाँ की खुली सुगंधित वायु, पांव तले की असम धरती, उस पर वृक्षों की सूखी पत्तियों का स्पर्श, पास के वन से आ रही जंगली फूलों की गंध, कहीं पास ही कोई पहाड़ी झरना है, उसकी कल कल ध्वनि, न जाने क्यों सहसा गांधार की याद मन में उभर आई।
0: सत्य ही तो।

0: एक ज्योतिहीन के गले बंधने की यातना तुमने पूरे जीवन भर सही। कविता ही खो गई तुम्हारे मन की। मायके की याद आना कितना स्वाभाविक है।
1: मायके की याद? उसे तो मैं उसी दिन भूल गई थी जिस दिन गांधार की सीमा का त्याग किया था। मुझे तो स्मरण हो रहा है गांधार प्रदेश, उस भूमि का स्पर्श कितना सौम्य है।
0: गांधारी, हमने और तुम्हारे पितृ कुल ने तुम्हारे साथ कितनी बड़ी प्रवंचना की। विवाह से पहले मेरे अंधत्व की जानकारी तक नहीं थी तुम्हें। हमारे कुल ने तुम्हारे प्रति अक्षम्य अपराध किया।
1: महाराज, अब पुरानी बातों को दोहराने से क्या लाभ।
0: अब हमारे जीवन में मृत्यु के अतिरिक्त कोई नई बात तो होने से रही। पुरानी बातों की गश्ती को उलट पुलट कर ही समय के दबाव को कम किया जा सकता है। एक बात कहूंगा अंधारी, तुमने भी कम प्रतिशोध नहीं लिया। क्या आज भी पुरानी बातों को क्षमा नहीं करोगी?
1: महाराज,
0: सचमुच बहुत बड़ा दंड दिया तुमने। विवाह की पहली रात मुझे आज भी याद है। ओह, कितनी भयानक रात थी। मैंने तुमसे पट्टी हटाने के लिए कहा था और उत्तर में तुमने स्त्री धर्म पातिव्रत्य न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें कही थी ना?
1: हाँ, कही थी।
0: और उस समय मेरे मन में क्रोध उमड़ पड़ा था। इच्छा तो हुई थी कि उसी समय
1: आपने मेरी आंखों की पट्टी निकाल कर फेंक क्यों नहीं दी? आप केवल एक बार कह देते कि ये पति की आज्ञा है तो क्या मैं टाल सकती थी?
0: मैंने सोचा तुम धीरे धीरे मान जाओगी। जब दुर्योधन तुम्हारे सामने लाया गया, मुझे आशा थी कि तुम स्वयं पट्टी उतार फेंकोगी, किंतु तुमने अपना हठ नहीं छोड़ा।
1: आपने कभी कहा नहीं, आप राजा थे, उस अधिकार से ही।
0: तब तक बात सीमाएं पार कर चुकी थी। तुम महासती के रूप में विख्यात हो चुकी थी। तुम अपने ही बंधनों का दंड भोग रही थी।
1: महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं?
0: जो सत्य है वही कह रहा हूं। अब तो सब कुछ समाप्त हो चुका है। सुनो, एक प्रश्न का उत्तर बहुत प्रामाणिकता से देना। तुमने कभी मुझसे प्रेम किया? शरीर से परे एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में कभी तुमने मुझसे प्रेम किया? यदि शरीर धर्म का परिणाम ये बच्चे न होते तो क्या हम निकट आते?
1: महाराज, इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगी।
0: तुम्हारे उत्तर न देने में ही मुझे उत्तर मिल गया है गांधारी। जानती हो हम लोग कब सच्चे अर्थों में निकट आए? युद्ध में अपने पुत्रों के मारे जाने के बाद उस व्यथा ने हमें एक दूसरे के निकट पहुंचाया, एक दूसरे के अस्तित्व के लिए अनिवार्य बना दिया, और इसीलिए आज उस अनिवार्यता के बोध से
1: स्त्री मन की इतनी गहरी समझ रखते हुए भी आप।
0: गुरु वंश के पुरुषों ने स्त्रियों पर असंख्य अत्याचार किए हैं गांधारी, और उसका प्रायश्चित भी उन्होंने भोगा है। अंबा के शाप में भीष्म चलते रहे, तुम्हारे शाप में मैं जला, मेरी संतति जली। कुंती का विवाह भी एक पंगु से हुआ था, किंतु वो दूसरों से भिन्न थी। उसने अपना दुख निगल कर अपना प्रेम बच्चों पर

0: उड़ेल दिया।
1: महाराज,
0: इसीलिए गांधारी कुंती के पांच ही बेटे विश्व विजयी हुए। ओ प्यार की संतान है, मां का अमृत उन पर हरनिश बरसता रहा और हमारे बच्चे केवल शरीर की उपज थे, केवल संख्या के पर्याय, इसीलिए वो सौ होकर भी नष्ट हो गए।
1: हमारे बच्चे संख्या के शिशु थे, उन्हें किसने प्यार दिया, किसने संस्कार दिए, किसने दिशा दी? हम अपराधी भी नहीं, हम है महाराज, हम।
0: गांधारी देखो, मैं आज मैं ये सब इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारा मन व्यथित हो, किंतु किंतु जिस हट धर्मी को लेकर तुम अपने आप से लड़ती रही हो, वो युद्ध संबंध हो। अपने से उठकर तुम सत्य का साक्षात्कार कर सको, मुझे नहीं तो कम से कम अपने आप को क्षमा कर सको और कम से कम इस निष्कर्ष पर पहुंच सको कि एक अन्याय का प्रतिकार दूसरे अन्याय से नहीं होता।
1: महाराज, मेरे जीवन का प्रारंभ किसी राग के कोमल गांधार की तरह हुआ था, किंतु उसके वादी संवादी स्वरों का तालमेल कभी नहीं बैठा। पूरा राग बिखर गया और उनका स्थान ले लिया दिशाओं को बहरा करने वाले कोलाहल ने। किंतु महाराज, अब मन शांत है। आज मैं अपने सतीत्व को साक्षी रखकर कह सकती हूं, मैं आपसे प्रेम करती हूं।
0: गांधारी, लगता है पास का वन जल रहा है, उसमें आग लग गई है।
1: आपको कैसे ज्ञात हुआ?
0: धुएं की गंध वायु के पंखों पर यहां तक आ रही है, मैं उसी ओर जा रहा हूं।
1: महाराज,
0: हाँ गांधारी, अभी तुमने अपने प्रेम की आत्म स्वीकृति थी, मन के सारे अभाव दूर हो गए। अब मन कैसा तृप्त है, इसी तृप्ति के साथ इस जीवन का भी अंत हो जाना चाहिए, एक तृप्तिमय अंत।
1: रुकिए, रुकिए, मैं भी साथ चलूंगी।
0: तुम भी?
1: गांधार के स्वर भले विकृत हो गए, पर अब मन में नए राग के स्वर उभर रहे हैं। चलिए, इसी के सुर में, ताल लय में अपने जीवन को विसर्जित करते हैं।
0: चलो, तावानल पड़ रहा है, आज प्रकृति ने ही हमारे लिए इतनी उदारता से चिता रचती है। जीने योग्य आदर्श स्थिति इस जीवन में कभी नहीं मिली, आज मृत्यु के योग्य आदर्श स्थिति मिली है, तो उसका परित्याग क्यों किया जाए? चलो गांधारी, थामो मेरा हाथ, इसी तरह चलो।
1: चलिए महाराज, इस ज्वाला में संकेत है परिवर्तन का, एक नए अध्याय के प्रारंभ का। समय हमारा बोझ उतार कर

अभी आपने सुना डॉक्टर शंकर शेष के लिखे नाटक अभिशप्त गांधार का दूसरा और अंतिम भाग। इसका निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति आपने सुनी। इसी के साथ आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: नमस्कार श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार की बातें जो पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं।
1: आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की।
0: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी।
2: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: जिनके गीतों में धार्मिकता भी है और

0: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को याद कर रहे हैं, इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में।
2: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया।
1: मितुल जी, हम उनके गीतों की बात कर रहे हैं, देशभक्ति गीतों की, साथ ही उन्होंने बहुत सारे भजन भी लिखे हैं प्रदीप जी ने, और जिन्हें हम सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा भजन ज्यादा अच्छा है या कौन सा कम है, तो आप बताइए कि भजन लिखने की जो उनकी आदत थी वो कैसे पड़ी और किस तरह से भजन की दुनिया में भी उन्होंने बहुत ही खूबसूरत भजन लिखे।
2: उनकी माँ के द्वारा जो लोकगीत गाए जाते थे, भजन गाए जाते थे, वो भी उन्होंने बहुत आत्मसात किए बचपन से। तो भजन की आदत तो उनको भगवान के प्रति आस्था, भगवान के प्रति प्रेम। लेकिन आपको एक बात ये बताऊं कि भगवान उनके लिए कौन थे? अदृश्य शक्ति। ये नहीं है कि वो मंदिर जाएंगे या वहां जाके कुछ पूजा करेंगे, वो पूजा पाठ में बिल्कुल नहीं मानते थे, रिचुअल्स में नहीं। लेकिन उनके लिए आकाश में बैठा वो भगवान था जो उनकी बात सुनते हैं। अगर कभी आप सुनेंगे उनके गीत तो वो भगवान को भी ऐसे संबोधित करते हैं कि जो वो अपनापन से करते हैं। अगर आप ऊपर देख के ये कहे कि सूरज रे जलते रहना, रे हाँ, तो ये रे जो है ना वो एक प्रेम का संबोधन है। तो उन्होंने भगवान को भी ऐसे ही संबोधन किया और गाने भी और भजन भी बहुत पॉपुलर लिखे। उनकी शुरुआत का एक भजन था, मैं तो आरती उतारू राधे श्याम की रे, राधे श्याम की रे मुक्ति धाम की रे। ये उनका शुरुआत की पहला भजन था फिल्म के लिए।

0: और उसके बाद में अगर आप आगे चले तो मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की,
1: वो तो बहुत पॉपुलर था,
0: तो भजन लिखने में और मदद करो संतोषी माता, तो उनको भगवान के प्रति जो था ना वो भी आस्था मन से आती थी, ना कोई मंदिर में जाके। तो कई भजन ऐसे हैं और बैठ के लोग सुनते हैं तो वो भजन भगवान के भजन है। हरि दर्शन फिल्म आई थी उसमें बहुत सारे भजन थे, मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान, वो भी एक बहुत पॉपुलर गीत था।
1: बिल्कुल,
0: बहुत सारे हरि दर्शन फिल्म के गाने हैं जो भजन है।
1: तो घर का माहौल कभी ऐसा हुआ कि आप बहनों ने मिलकर भी उन भजनों को गाया अपनी माँ के साथ?
0: बहुत बार, माँ के साथ तो नहीं, माँ तो नहीं गाती थी।
1: अच्छा,
0: माँ तो कहे कि मैं तो इनके सामने कुछ नहीं गाऊंगी हम गाते थे
1: अच्छा
0: तो जय जय नारायण नारायण हरि हरि, वो हमको बहुत अच्छा लगता था।
1: तो मितुल जी आप कहें तो ये गीत हम आपको सुनवा दें?
0: जरूर सुनवाइए।

0: मितुल जी, कभी पिता के साथ बैठकर बात करने का मौका मिला?
1: घर में तो हम लोग साथ में ही रहते थे ना, तो उसमें बातचीत तो रोज ही होती थी, और रोज बातचीत होने में जनरली मजाक भी बहुत करते थे।
0: अच्छा।
1: हाँ, उनको आप अगर देखें तो उनका जो स्वभाव था, खुलकर हंसते थे। हंसना उनका इतना खुलकर था, जो एक बच्चों की तरह हृदय जो साफ रहता है ना, वैसे ही इंसान ऐसे हंस सकता है। तो बैठ के बातचीत का तो बहुत मौका मिलता था, लेकिन जनरली बातचीत होती थी तो माँ के खिलाफ होती थी।
0: अच्छा।
1: आज तुम्हारी माँ ने जो दाल में हींग अच्छी नहीं डाली।
0: अच्छा। हाँ जी।
1: और माँ वहां पर खड़े होके सुनते हैं, तो बेटा आज का जो खाना था वो थोड़ा सा हींग ठीक नहीं थी, फिर मजाक में हर एक बात में, तो वो चीज माँ को बहुत मन में खटका देती थी।
0: अच्छा।
1: हाँ ठीक है, मतलब
0: हाँ।
1: वो भी मजाक में, लेकिन वो बोलते ठीक है आज हींग ठीक नहीं हुई ना, ठीक है तो अब तुम ना आप एक काम करिए कि आप मालवा से ही हींग मंगा लो। तो वैसी बातचीत बैठ बैठ के हंसी मजाक चलती थी। और काफी कुछ बातचीत तो काफी होती थी, जैसे घर में परिवार में होती है।
0: कभी प्रदीप जी ने आप बच्चों से पूछा हो भी पढ़ाई कैसी चल रही है, पढ़ने में कैसे हो?

0: कुछ लिखते हो पढ़ते हो, मेरी तरह कुछ कविताएं लिखने की आदत है तुम लोगों में, क्या कभी ऐसा भी कहा उन्होंने?
1: नहीं, उन्होंने कहा कभी लिखना नहीं,
0: अच्छा
1: जो करना हो दूसरा कुछ करो, लिखना और फिल्म इंडस्ट्री के बारे में मत सोचना, और लिखना कभी तो कभी नहीं बनना, ऐसा उन्होंने कहा कि भाई आपको ठीक है, मैं बहुत हो गया, अगर पैसे कमाने हैं तो इसमें मत पड़ा, कुछ और काम करना। तो फिर मैंने और कुछ काम किया, और तब भी उनको थोड़ा सा बुरा लगा था जब मैंने अपना काम शुरू किया, पेंटिंग करना, लोगों को सिखाना, ड्राइंग सिखाना।
0: तो उन्हें बुरा क्यों लगा?
1: हाँ, तो यही बात है कि उनको बुरा क्यों लगा, बोलते कवि प्रदीप की बेटी है और वो बाहर जाके पैसे कमाएगी।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो वो उनको जैसे तब एक ट्रेडिशनल पिता उनके मन में जागृत हुआ
0: जागृत है। जी
1: कि
0: जी
1: भाई ये काम आप क्यों
0: हाँ,
1: करेंगी।
0: लेकिन तब तक आप भी बड़ी हो गई थी,
1: मैं तो
0: आपकी भी
1: बड़ी
0: अपनी
1: हो
0: एक
1: गई थी
0: दुनिया बन चुकी थी, आपके भी अपने सपने थे, अपने
1: तो,
0: शौक थे।
1: हाँ, तो तब माँ ने कहा कि नहीं, हमें तो उसको अपने पैरों पे खड़ा करना है, उसको अगर ये अच्छा लगता है और वो उसमें आगे बढ़ना चाहती है तो क्या हुआ। तो ये कोई थोड़ी कहेगा कि ये प्रदीप जी की बेटी है तो क्यों पैसे बाहर जाके कमाएगी, जाएगी बाहर जाके। मैं बहुत सारी डेमोन्स्ट्रेशंस देती थी कॉलेजेस में, स्कूल्स में। उसके बाद में उनको लगा कि नहीं, ये तो अच्छा कर रही है, तो फिर कोई भी आएगा उनके पास तो उनको लेके आएंगे कि देखो मेरी बेटी का ड्राइंग, देखो देखो मेरी बेटी ने आज ये पेंटिंग बनाया,
0: भीतर
1: वो
0: होता
1: फिर
0: है
1: गर्व
0: वो
1: महसूस करने
0: महसूस
1: लगे।
0: किया। मित्र जी कहते हैं कि महाकवि निराला भी उनकी कविताओं और उनकी आवाज की प्रशंसक थे, क्या ये बात सच है?
1: बहुत सच है, क्योंकि निराला जी ने उनमें एक स्पार्क देखा, मतलब एक ऐसा कवि देखा जो बहुत सालों के बाद एक ऐसी भाषा यूज कर रहा था, और छायावाद वगैरह जो है, तो निराला जी ने वो सुना उनकी कविता और उन्होंने उनके ऊपर पूरा एक आर्टिकल लिखा कि ये नवीन कवि प्रदीप जो आगे चल के बहुत आगे बढ़ेगा, ऐसा।
0: जी। तो जैसा कि हम कह रहे हैं कि उन्होंने देशभक्ति गीतों को बहुत लिखा, बहुत बड़ी तादाद में उनके भजन हम देखते हैं, क्या कभी उन्होंने रोमांटिक गीत भी लिखे प्रदीप जी
1: हाँ,
0: ने?
1: रोमांटिक गीत भी अच्छे अच्छे लिखे हैं, और वो भी इतनी अच्छी भाषा में लिखे हैं कि कोई भी कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई वल्गर बात आई। प्रेम की बात भी उन्होंने कितनी अच्छी की है
0: खूबसूरती
1: कि
0: के
1: मेरे
0: साथ।
1: जीवन में किरण बन के बिखरने वाले, बोलो
0: बोलो
1: तुम
0: तुम
1: कौन
0: कौन
1: हो,
0: हो?
1: बोलो तुम
0: आहा,
1: कौन हो।
0: क्या बात है, क्या
1: हाँ,
0: बात
1: तो
0: है।
1: मेरे जीवन में किरण बन के बिखरने वाले, कितना
0: जी
1: सुंदर से उन्होंने संबोधन किया है प्रेमी को। या फिर दूसरा है कि ना जाने कहाँ हम थे, ना जाने कहाँ
0: तुम
1: तुम।
0: थे।
1: हाँ,
0: आहा।
1: तो ये भी बहुत सुंदर सुंदर है। और एक हल्का फुल्का सा गाना भी है जो जगदीप के ऊपर फिल्माया गया था, ओ दिलदार बोलो एक बार
0: क्या मेरा
1: क्या
0: प्यार
1: मेरा
0: पसंद है
1: प्यार पसंद
0: तुम्हें
1: है। तो ये भी कितना सुंदर सुंदर से
0: बहुत
1: गीत है,
0: बहुत स्वीट।
1: और कभी भी कोई भी इसको गा सकता है,
0: हर पल के गीत है ये,
1: हर
0: हर
1: पल के। तो
0: मौके
1: ये
0: के गीत है।
1: रोमांटिक गाने भी उन्होंने
0: जी
1: लिखे,
0: जी
1: और ज्यादातर युगल गीत थे ये।

0: एक बात बताना चाहती हूँ कि हम अभी रोमांटिक गाने उनके सुने भी सही और बात भी की हमने।
1: जी जी बिल्कुल।
0: उन्होंने कविता शुरू की थी रोमांटिक कविताओं से, और उसके बाद में जो है उनको देशभक्ति की कविता लिखने का मौका मिला और फिर उन्होंने उसी लाइन पे अपनी कविताएं लिखी। तो एक रोमांटिक उनकी कविता बहुत शुरू शुरू में थी और वो है, मेरे छंदों के बंद बंद में तुम हो प्रिय, तुम हो इन बरन बरन के विहंगों का कल कूजन, क्यों बरबस हर लेता है जन जन का मन, मैं खोज रहा था इस मिठास का कारण, हंस दिए तभी तुम, हुआ रहस्योद्घाटन।
1: क्या बात है।
0: और तुम मेरे काव्य स्वस्तिकों के कुमकुम हो, मेरे छंदों के बंद बंद में प्रिय तुम
1: हो। क्या बात है।
0: तो ये
1: रुमानियत गहरी गहरी
0: कितनी गहरी। तो मतलब ये है कि तुम मेरे काव्य स्वस्तिकों के कुमकुम, मतलब काव्य का जो स्वस्तिक है
1: उसके
0: कुमकुम हो।
1: बहुत सुंदर, जिस तरह से उपाधियां दी हैं वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रदीप
0: तो
1: जी ने।
0: ये भी उनकी एक कविता है जो रोमांस पे है
1: जी। और ये खासियत है कि इतना बड़ा कवि, जो कि जन जागृति जिन्होंने पैदा कर दी, जिन्होंने देश प्रेम लोगों के दिलों में पैदा कर दिया, वो कभी रुमानियत के उस माहौल में भी थे जहाँ रुमानी कविता उनकी कलम से निकली, रुमानी गीत निकले इतने शानदार तरीके से, जिन्हें हम आज भी गुनगुनाते हैं। तो हम बात करते हैं 1997 की, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष था कवि प्रदीप जी के लिए, बताइए कैसे।
0: उनको 1998 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला, जो 1997 का दादा साहेब फाल्के गिना जाएगा
1: जी,
0: लेकिन जब मिला तो वो इसमें मिला 98 में
1: जी।
0: दादा साहेब फाल्के अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, लेकिन तब भी वहां के जो आयोजक थे वो थोड़े चिंतित थे।
1: किस बात पे?
0: क्योंकि प्रदीप जी ने बीच में ये बोल दिया था कि मैं कोई अवार्ड नहीं लूंगा
1: जी।
0: तो उन्होंने कहा कि हमको चिंता है कि हम तो आपको दे रहे हैं लेकिन आप आएंगे कि नहीं आएंगे
1: जी।
0: फिर हम परिवार वालों ने उनसे बहुत विनती की कि नहीं बापू, आपके लिए नहीं, हमारे लिए आप ले लीजिए, क्योंकि ये हमारा भी गौरव बढ़ाएगा और आपको मिलेगा तो ये हमें अच्छा लगेगा। तब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी
1: जी।
0: और उनको लगता था कि मैं उतने दिल्ली तक नहीं जा पाऊंगा, तो हम सब ने कहा कोशिश करेंगे, आपको अच्छे से ले जाएंगे, व्हील चेयर में ले जाएंगे। तो ये पहली बार हुआ कि स्टेज के ऊपर व्हील चेयर में लेकर के दादा साहेब फाल्के अवार्ड लेने के लिए कोई व्यक्ति को लेके गए, और आगे चल के प्रेसिडेंट आए। प्रेसिडेंट कभी भी आगे नहीं चलते हैं, वो वहीं खड़े रहते
1: बिल्कुल,
0: हैं
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जैसे ही उनकी व्हील चेयर लेके हम अंदर गए तो आगे चल के

0: प्रेसिडेंट आए देश के और उन्होंने उनको सम्मानित किया। और पहली बार हुआ कि जब स्टेज पे वो गए तो दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, पूरे उसमें गूंजा।
1: क्या बात है,
0: विज्ञान भवन में कार्यक्रम था जी। और वो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि तब गाना बजाया जाता है, तो वो नियम को तोड़ा गया। उस स्टेज पे हम लेके गए उनको और वो गाना बजा, और आप नहीं मानेंगे उस वक्त भी खड़े खड़े खड़े लोग रोए हैं
1: जी।
0: और ये मुझे शत्रुघ्न सिन्हा जी ने भी बताया कि हम रोए। यश चोपड़ा जी वहां खड़े थे, वो बाद में दौड़ के आए कि प्रदीप जी आज आपने हमको भी रुला दिया
1: जी।
0: वो भी ऑडियंस में थे
1: जी। और कभी प्रदीप जी के चेहरे पर कहीं सुख और संतोष के चिन्ह नजर आए ना, कि वो संतुष्ट थे?
0: वो संतुष्ट थे और उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ तुम लोगों ने मुझे कहा, नहीं तो मैं इसको भी मना कर देता, लेकिन ये मेरी आखिरी जीवन की पड़ाव में ये मिलना मेरे लिए बहुत मेरा भाग्य है।
1: जी बिल्कुल। तो बताइए कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी आप?
0: जो भी आपके पास हो, अगर मेरे जीवन में किरण है तो वो करवा दीजिए।
1: चलिए सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत,
0: बहुत सुंदर गीत है।

0: मितुल जी, जब बात चल रही है कवि प्रदीप जी की, तो कविता और लेखन तो खैर उनका मुख्य काम था जिसमें वो बह रहे थे और कहें कि उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन इसके अलावा जब वो कविता नहीं लिखते थे, लेखन नहीं करते थे, तो क्या करते थे? उनके और क्या क्या शौक थे जो आपको समझ आए?
1: उनको गार्डनिंग का बहुत शौक था।
0: हाँ,
1: तो हमारे ऊपर टेरेस है तो उस पे वो चले जाते थे और कई चीजें, जैसे उनको लगा कि ये पत्ते ठीक नहीं है, वो काटते थे। दो दो तीन तीन घंटे तक ऊपर गार्डन में अपना बिताते थे और नीचे भी हमारे पास जितने भी आज बड़े बड़े ट्रीज हैं, वृक्ष हैं, आम के चार हैं, दो नारियल के हैं, जाम्बू, जाम्बू समझते हैं आप, सफेद वाले जिसको आप क्या बोलते हैं पता नहीं, सफेद जाम्बून।
0: हाँ,
1: काले नहीं, सफेद
0: सफेद।
1: खैर एनीवे, वाटर एप्पल या से कुछ बोलते हैं, जो भी होगा उस

0: ये जितने भी हमारे गार्डन में आज जो हमारे वृक्ष हैं वो सब मेरे पिता ने लगाए हुए हैं।
1: क्या बात है।
0: जब हमारा घर बना तब पूरा आसपास में ये बड़े बड़े वृक्ष आज खड़े हैं। तो गार्डनिंग का शौक, और वो जो देखते थे कि कहीं आम के पेड़ में कहीं कीड़े तो नहीं लग गए,
1: अच्छा।
0: तो वो उसको दवाई देना, ये करना, चाहे वो खुद ना दे, माली के पास करवाना। तो आज जो वृक्ष खड़े हैं वो मेरे पिता के कारण खड़े हैं।
1: क्या बात है।
0: और एक कड़ी पत्ता, उसका एक छोटा सा लाए थे वो प्लांट, और आज बहुत बड़ा हो गया है, और वो आज भी है उनका लगाया हुआ।
1: जी, उनकी याद दिलाता
0: हाँ,
1: होगा
0: तो
1: आपको।
0: सभी मतलब वृक्ष जो है उनकी याद दिलाता है।
1: हाँ, तो जब हम आपसे बात कर रहे थे, आपने कहा कि आपका घर ऐतिहासिक है, और कवि प्रदीप जी ने बहुत ही शौक के साथ उस घर को बनाया, बहुत रुचि के साथ। तो बताइए, ये क्या है, किस तरह से उन्होंने अपने मकान को बनाया, क्या किया?
0: मकान को उन्होंने खड़े होकर के एक एक ईंट को देख के उनको जैसे लगवा रहे थे, तो वह खड़े रहते थे। ये नहीं कि उनको उन्होंने दे दिया कि आर्किटेक्ट को कि आप बना लो, नहीं, रोज सवेरे से शाम खड़े रहते थे कि ये यहाँ गलत हो रहा है, ये गलत है, ऐसे करो, ये मजबूत चाहिए, सीमेंट। आज भी हमारी जितनी भी दीवारें हैं उसमें कील भी नहीं ठोक सकते आप, इतनी
1: अच्छा,
0: मजबूत है
1: क्या बात है।
0: इतने सालों के बाद। तो उनका मतलब ये है, हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा मंदिर है, घर नहीं है, मंदिर है।
1: मंदिर है जी, जो उन्होंने बहुत ही आत्मीयता के साथ
0: जी
1: उसको खड़ा किया है।
0: हाँ
1: जी मित्तल जी, आज हमने इस कार्यक्रम में आपके पिता पर एक लंबी बातचीत की है। अब हम आपकी जिंदगी पर भी आते हैं। आपने ये तो बताया कि आपने लेखन को क्यों नहीं अपनाया, आपने कविता को क्यों नहीं अपनाया, लेकिन हम ये जानते हैं कि आप एक जानी मानी चित्रकार हैं, और चित्रों के प्रति एक आपकी जो रुचि है उसका भी उदाहरण देखने को मिलता है। तो ये रुचि आपके मन में कैसे आई, ये रुचि कैसे पैदा हुई, और किस तरह की आर्ट आप बनाती हैं, हमारे श्रोता ये जानना भी चाहेंगे। जैसा आपने कहा कि आप घर से निकली थी, पिता ने एक बार विरोध भी किया था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि आप बहुत अच्छी कलाकार हैं, तो उन्हें आप पर गर्व भी महसूस हुआ।
0: ऐसा है कि मैं करीब 44 साल से पेंटिंग सिखाती हूँ
1: जी।
0: जी, और मेरा आर्ट सेंटर है तुलिका आर्ट सेंटर, जिसमें बहुत सारे लोग सीखने के लिए अभी भी आते हैं। और जब मैंने शुरू किया 1982 में, तब भी लोग बहुत सारे आते थे, आज तक आते हैं। कैसे शुरू हुआ?
1: जी।
0: मैं जब छोटी थी, 2-3 साल की या 4 साल की रही होंगी, मेरी माँ ने मेरे हाथ में कलम थमा दी कि ये लो, इस पे तुम स्वस्तिक ड्रॉ करो। एक कागज दिया और एक पेंसिल दी और कहा कि स्वस्तिक निकालो। तो वो पहली बार था कि जो छोटे बच्चे ने लाइन कर करके स्वस्तिक ड्रॉ किया।
1: जी।
0: मेरी माँ खुद बहुत अच्छी कलाकार थी, बहुत बढ़िया, मतलब मैं कुछ भी नहीं हूं उनके सामने, इतना ब्यूटीफुल उनका आर्ट था, इतना अच्छे अच्छे से वो ड्राइंग्स बनाती थी। उनमें से मुझ में आया,
1: जी।
0: तो पिता का लिखना या गाना नहीं आया, लेकिन माँ का जो माँ की कला है वो मुझ में आई, तो वो जीन्स में आया। तो वहाँ से शुरू हुआ। फिर हर रंगोली निकालना, हर एक दिवाली के दिन या कोई भी अच्छा शुभ दिन हो तो लो बेटा ये लो, हाथ में पाउडर दे दिया, अब मोर करो, ओम लिखो, श्री लिखो, माता के पैर बनाओ, माता की जो होते हैं
1: जी,
0: ना
1: बिल्कुल,
0: लक्ष्मी
1: नवरात्रा
0: के,
1: में मनाते
0: हाँ
1: हैं, दीपावली में।
0: दीपावली में, तो वो सबसे शुरुआत हुई मेरी। लेकिन जब मैं स्कूल में पढ़ती थी या कॉलेज में पढ़ती थी, तब मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं रहा, मुझे कुछ और करना था, मुझे
1: ये तो आपने बचपन की बात बताई, जब माँ आपको ऐसा कहा करती
0: हाँ।
1: थी।
0: लेकिन बीच में मेरा वो बिल्कुल चला गया कि मुझे कुछ करना है, ड्राइंग नहीं, मुझे वो मजा नहीं आता है, मुझे लॉयर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे कुछ और कुछ करना है। तो पढ़ाई चलती रही, लेकिन उस बीच में मुझे ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कलर्स बनाती है, उनकी मालकिन मिली,
1: जी।
0: बोलती आपका ड्राइंग तो बहुत अच्छा है, सुना है। मैंने बोला हाँ वो तो है। तो कहा कि क्यों नहीं आप सिखाते हो, हमारे 40 महिलाएं हैं,
1: हाँ।
0: उनको हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सिखाइए, हमारी टीचर नहीं है। मैंने बोला मैं सिखा तो नहीं सकती हूँ। बोलती नहीं सिखा पाओगे, कोशिश तो करिए। और वो तब की बात है जब पिताजी ने विरोध किया, उन्होंने कहा 40 महिलाएं हैं, आप देखिए कोशिश करिए सिखाइए। मैं बोला ठीक है कोशिश करते हैं। क्या करना था, कपड़े पे फैब्रिक पेंटिंग करना था, कपड़े के ऊपर पेंटिंग करना था। उन्होंने कहा ये रहा, हमारे पास कलर्स हैं, हमारे पास तुलिका है, मतलब ब्रशेस हैं,

0: आप आइए सिखाइए। कैसे सिखाना? हमने कोशिश की, सब खुश हो गए, मैं सक्सेसफुल हो गई सिखाने
1: जी
0: में।
1: जी जी
0: तो वो भी मेरे अनायास हुआ है, जैसे कहते हैं ना कि जो एक लिखा हुआ
1: आपकी
0: होता है
1: डेस्टिनी
0: आपके
1: में।
0: क्या कर्म है आपके कर्मों में, मतलब जो लिखा हुआ है डेस्टिनी में वही हुआ। जब मैं पैदा हुई थी तो ज्योतिष ने कहा था कि ये टीचर बनेगी,
1: अच्छा
0: तो वो टीचर तो नहीं बनी स्कूल की, लेकिन मैं दूसरी टीचर बन गई।
1: जी।
0: तो वो पहली बार था, वो 40 महिलाएं।

एफएम बैंड के 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4:30 हुए हैं। प्रस्तुत है आज प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि ठीक 4:35 पर आप सुनेंगे भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। शाम 5 बजे आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार और 5:05 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम विज्ञान एवं पर्यावरण आप सुन सकते हैं शाम 5:38 पर, और शाम 6 बजे आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीत का कार्यक्रम। शाम 6:05 पर हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र, जहां से आप सुनेंगे भोजपुरी बुलेटिन समाचार।

हमारे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर का प्रसारण समय होगा शाम 6:10 पर और 6:40 पर आप सुनेंगे भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझे गीत।

शाम 7 बजे आप सुनेंगे हमारा प्रायोजित कार्यक्रम ममता का आंचल, और 7:15 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास।

7:25 पर आप सुनेंगे पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार एवं जिले की हलचल, और 7:50 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे आपके ईमेल पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम ई मनपसंद। रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित समाचार संध्या, और रात्रि 9:00 हम आपके लिए लेकर आएंगे भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। गजलों की महफिल सजेगी रात्रि 9:15 पर, और 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे

गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसरंग और 10:30 पर आप सुनेंगे हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने। रात्रि 11:00 आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार एवं इसके ठीक बाद यानी 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। तो श्रोताओं, ये था आज प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

0: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। 4:35 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक माधुरी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं शारदा सिन्हा की आवाज़ से। एल्बम का नाम है परदेसिया बलमुआ। ये गीत हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है। और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।

गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गाँव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है, और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।

गांव के विकास से ही होता है देश का विकास, और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गाँव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले मुखियाओं का सम्मान किया जा रहा है, और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गांव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान।

चैती का भी प्रसिद्ध बाटे हमन के भोजपुरी लोकगीतन में। एक बिहार में अपने ढंग से गावल जात बाटे, चैता कहीं घाटो, चैती तीन सा महीने में आ जाला। विशेष करके हमनी के बनारस में बड़े बड़े लोग, बड़े गुनी गुनी लोग गावल करी निजा, और काफ़ी प्रसिद्धि भी मिलल बाटे वहाँ सबके। एगो मेहरारू के टुकली हेरा जात बाटे, राती के खोजत या परेशान भी, केकरा से पूछो कहाँ हेराइल।

0: व्याख्याओं का सम्मान किया जा रहा है और बिहार के चारों जोन से श्रेष्ठ 80 मुखियाओं को चुना जा चुका है हिंदुस्तान के सहयोग से। यशस्वी मुखिया अभियान के अंतिम चरण में 15 जून को पटना में बिहार के 20 ऐसे यशस्वी मुखियाओं को सम्मानित किया जाएगा जो राज्य स्तर पर बने हैं अपने गाँव के विकास के सारथी। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें हिंदुस्तान
1: समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष में आयोजित इस कार्यक्रम में अन्य देशों के शीर्ष नवाचार स्टार्टअप और उद्यम पूंजीदाता भी शामिल हुए। इसमें उन्नत कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा तथा जैव प्रौद्योगिकी सहित 13 प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार प्रदर्शित किए गए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और फ्रांस के मजबूत संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने भारत फ्रांस साझेदारी को ऐसा अस्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है।
2: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
1: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत के बाहर इस विशेष पहल की मेजबानी को फ्रांस के लिए सम्मान का विषय बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत को न केवल अपार प्रतिभाओं से संपन्न देश के रूप में देख रही है, बल्कि नवाचार के देश और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी शक्ति के रूप में भी देख रही है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद और इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति सहित कई प्रमुख व्यापारिक नेता भी उपस्थित थे। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों आज भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी का वहां पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4,00,000 करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि राज्य को राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, रेलवे परियोजनाओं और बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक गलियारा परियोजना के लिए भी बड़ी राशि दी गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज सागर जिले में आयोजित समारोह में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की। राज्य भर में 25,00,000 से अधिक महिला लाभार्थियों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई। मुख्यमंत्री ने देवरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 191 करोड़ रुपए की 53 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन भी किया। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने ओमान तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट वन के इंजन में खराबी आने की जानकारी दी है। इसमें सवार 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ओमान के अधिकारियों के साथ तालमेल से बचाव अभियान जारी है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। अंतालिया में तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारत के धीरज बोम्मा देवरा और किशोरी कुमकुम मोहत ने रिकर्व मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की ओह ये जिन और किम जे डेओ को 5-1 से हराया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप

देश का विकास और मुखिया ही अपनी दूरदर्शिता और अथक प्रयासों से गांव का विकास कर रहे हैं। इसी दिशा में देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक ने बिहार में एक अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया की शुरुआत की, जिसके तहत बिहार के गांव में उत्कृष्ट विकास कार्य करने वाले

0: में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंगम के एजबेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103.4 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं संजय गिरी की आवाज़ से। एल्बम का नाम है मेरे घर आओ गणेश। संजय गिरी के बोल हैं और लवली शर्मा का संगीत है।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं अनूप जलोटा की आवाज़ में। एल्बम का नाम है राम तेरे घर आएंगे। रवि चोपड़ा के बोल हैं, अनूप जलोटा का संगीत है।

कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। एल्बम का नाम है अनुराधा पौडवाल शिव भजन।

राकेश तिवारी के गाए इसी गीत के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन अब यहीं पे संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से

बोल रहे हैं FM 103.4 मेगा हर्ज पर। अब लीजिए सुनिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम विज्ञान एवं पर्यावरण, स्वर एवं संकलन अर्चना कुमारी, प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार।

विज्ञान एवं पर्यावरण कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को अर्चना का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मानसून से संबंधित ताजी जानकारियों से। सूचना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने अब रफ्तार पकड़ ली है और यह पूर्वोत्तर के राज्यों यानी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश सहित उत्तर बंगाल में भी सक्रिय हो गया है। बंगाल की खाड़ी की शाखा आगे बढ़ते हुए बिहार की दहलीज तक पहुंच चुकी है, जिससे यहां झारखंड में जल्द ही झमाझम बारिश की शुरुआत होने की संभावना है। मानसून की सीमा पूर्वोत्तर और उप हिमाचली पश्चिम बंगाल से बिहार की ओर बढ़ रही है। हालांकि इस बीच दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी का दौर जारी है, लेकिन जल्द ही हल्की बारिश की शुरुआत होगी और तापक्रम में गिरावट आएगी, ऐसी आशा है। वस्तुतः मानसून कुछ और नहीं बल्कि मौसम के अनुसार हवाओं की दिशा में होने वाला एक बड़ा बदलाव है, जो अपने साथ भारी वर्षा लाता है। दरअसल गर्मी के मौसम में जमीन तेजी से गर्म होता है और इसके अपेक्षा समुद्र का पानी धीरे धीरे गर्म होता है। तापमान का यही अंतर जमीन पर कम दबाव और समुद्र में उच्च दबाव का क्षेत्र बनता है। परिणाम स्वरूप समुद्र से भारी मात्रा में नमी लेकर हवाएं तेजी से जमीन की ओर बढ़ते हुए जब पहाड़ों से टकराती है तो मूसलाधार बारिश के आसार बनते हैं। अतः मानसून हमारे देश जैसे कृषि प्रधान देश के लिए जीवन रेखा के समान है। अपने देश की एक बड़ी आबादी खेती के लिए मानसून पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह पीने के पानी के स्रोतों को भरने और जल विद्युत उत्पादन के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम विश्व महासागर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, विश्व बाल श्रम दिवस और विश्व नेत्रदान दिवस की भी चर्चा करेंगे और साथ ही सुनिएगा इनसे संबंधित भेंट वार्ताएं। लेकिन शुरुआत इस अंक के वैज्ञानिकों की चर्चा से। इस अंक के वैज्ञानिक हैं जेम्स क्लार्क मैक्सवेल और फ्रैंक हविटल। 18 जून 1831 को स्कॉटलैंड में जन्मे जेम्स क्लार्क मैक्सवेल एक विख्यात गणितज्ञ एवं भौतिक वैज्ञानिक थे। वर्ष 1865 में इन्होंने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके फलस्वरूप रेडियो और टेलीविजन का आविष्कार संभव हो सका। मैक्सवेल को क्लासिकल विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, चुंबकत्व और प्रकाशिकी के क्षेत्र में दिए गए सिद्धांतों के लिए उन्हें प्रमुखता से याद किया जाता है। न्यूटन के बाद विद्युत चुंबकत्व के क्षेत्र में मैक्सवेल द्वारा किए गए कार्य को भौतिकी के क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा एकीकरण कार्य माना जाता है। 5 नवंबर 1889 को जेम्स क्लार्क मैक्सवेल का निधन हो गया। श्रोताओं, अब बात कर लेते हैं इस अंक के दूसरे वैज्ञानिक फ्रैंक हविटल की। 1 जून 1907 को जन्मे एयर कमोडोर सर फ्रैंक हविटल एक अंग्रेज इंजीनियर, आविष्कारक और रॉयल एयरफोर्स के वायु अधिकारी थे। उन्हें टर्बोजेट इंजन के सह निर्माता के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1930 में उन्होंने अपने टर्बोजेट इंजन के लिए आवेदन किया तथा 5 वर्षों बाद उनके द्वारा बनाए गए इंजन ने उड़ान भरी। हविटल को 1948 में किंग जॉर्ज 6 ने नाइट उपाधि से सम्मानित किया। 8 अगस्त 1996 को फ्रैंक हविटल ने अंतिम सांस ली।

0: तो श्रोताओं, यह थी संघ से जुड़े वैज्ञानिकों की संक्षिप्त चर्चा। और अब एक नज़र विज्ञान से संबंधित नवीनतम खबरों पर। श्रोताओं, चिकित्सा विज्ञान से आ रही खबरों में बताया गया है कि UCLA यानी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजेलिस के वैज्ञानिकों ने दुनिया के कुछ सबसे घातक कैंसरों में से एक अप्रत्याशित छिपी हुई कमजोरी का पता लगाया है, जो भविष्य के इलाजों में मील का पत्थर साबित हो सकता है। वहीं दूसरी ओर चिकित्सा वैज्ञानिकों ने एक नई दवा की पहचान की है, जो GLP-1 यानी मोटापे या मधुमेह की दवा लेने वाले मरीजों को मांसपेशियों के नुकसान से बचा सकती है। और चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़ी एक नई खबर यह भी है कि अब शहद की मक्खियों और झींगा जैसी प्रजातियों के लिए भी अब टीकों का विकास और उपयोग किया जाने लगा है। उधर जलवायु और मौसम से जुड़ी एक खबर यह है कि प्रशांत महासागर में संभावित अलनीनों के प्रभाव और मौसमी बदलावों पर दुनिया भर के जलवायु वैज्ञानिक कड़ी नज़र बनाए हुए हैं, जो कृषि और खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। तो श्रोताओं, यह थी विज्ञान से जुड़ी नवीनतम खबरें और बातें विश्व महासागर दिवस की, जो 8 जून को मनाया गया। यह एक वार्षिक वैश्विक उत्सव है जिसका उद्देश्य है पृथ्वी के ऊपर जीवन को बनाए रखने में महासागरों द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना और समुद्री पर्यावरण की रक्षा के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देना। उल्लेखनीय है कि हमारे 5 महासागर पृथ्वी की सतह के 70% भाग को ढकते हैं और जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे द्वारा ली जाने वाली प्रत्येक सांस के लिए ऑक्सीजन प्रदान करने से लेकर अरबों लोगों को भोजन प्रदान करने और विश्व के 80% जैव विविधता का आश्रय स्थल होने तक महासागर हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है। इस वर्ष के लिए विश्व महासागर दिवस का विषय है पुनर्कल्पना। हम जिस दुनिया को जानते हैं उससे परे हमारे महासागर के साथ एक नया संबंध। श्रोताओं, रोहतास और कैमूर क्षेत्र से निकटतम खुला महासागर बंगाल की खाड़ी है। सड़क मार्ग से इसकी दूरी लगभग 500 किलोमीटर है। महासागरों के किनारे घूमना भी अच्छा पर्यटन है, जो आप भी अपने निकटवर्ती महासागर का अवश्य दर्शन करें और आनंदित हों। श्रोताओं, 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। हमारे जीवन में खेलों का बहुत महत्व है। खेल शारीरिक सौष्ठव के साथ साथ उत्तम स्वास्थ्य की भी गारंटी होते हैं, अतः खेलों से हमारा लगाव जीवन भर रहे तो अच्छा है। आजकल खेल के क्षेत्र में रोजगार भी उपलब्ध हो रहे हैं, खिलाड़ियों को नौकरियों में आरक्षण भी दिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, खेल देशों के बीच आपसी संबंधों की मजबूती करण के लिए भी काम आते हैं, अतः खेलों को आपसी एकता, मेलजोल एवं सौहार्द बढ़ाने के ख्याल से खेलों की खेल की भावना से खेला जाना चाहिए। इस संबंध में क्या कुछ कह रहे हैं उप निदेशक खेल रोहतास राहुल कुमार जी, लीजिए सुनिए।
1: राहुल जी, रोहतास जिले में खेलों को प्रोत्साहन देने हेतु क्या कुछ किया जाना चाहिए?
2: अभी हमारे रोहतास जिले में कुल 19 प्रखंड में से 14 प्रखंडों में स्टेडियम का निर्माण हो चुका है। इस स्टेडियम में खेल प्रेमी तरह तरह के खेल खेलते हैं, या फिर जब भी कोई आयोजन प्रखंड स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर या जिला स्तर पर होता है, तो इन स्टेडियम का प्रयोग हम लोग उन खेल के आयोजन में करते हैं। पिछले वर्ष भी हम देखते हैं कि तरंग और दक्ष जैसे विद्यालय खेल प्रतियोगिता का आयोजन रोहतास जिला में किया गया है, जिसमें कि प्रखंड स्तर से लेकर कमिश्नरी और स्टेट लेवल तक हमारे बच्चे खेलने गए हैं। हमारे फुटबॉल के बच्चों का चयन राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए भी हुआ है। इसमें और भी कई युवा खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म मिला है अपना प्रदर्शन करने के लिए, अपनी काबिलियत को पहचानने के लिए। सासाराम शहर

आप देखेंगे खेल भवन बना हुआ है। इस खेल भवन में वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, टाइक्वांडो, योगा, टेबल टेनिस आदि के क्लासेस चलते हैं। एसोसिएशन की तरफ से या फिर खेल पदाधिकारी की तरफ से वो क्लासेस का वहाँ सुविधाएं दी जाती है खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए। सज्जनगढ़ स्टेडियम में सुबह से लेकर शाम तक आप देखते हैं कि बहुत सारे खिलाड़ी छोटे छोटे खेल खेलते रहते हैं, व्यायाम करते रहते हैं, जो फिजिकल एजुकेशन के जरिए नौकरी पाना चाहते हैं वो अपनी तैयारी करते रहते हैं। इसके साथ ही हमारे रोहतास जिले में राज्य आवासीय प्रशिक्षण केंद्र एकलव्य है, 3 विधा में, बैडमिंटन, बास्केटबॉल और फुटबॉल। ये आवासीय प्रशिक्षण केंद्र है, यहाँ हम लोग प्रशिक्षुओं का, छोटे छोटे बच्चों का, 6 क्लास से ऊपर के जो बच्चे हैं उनका चयन करते हैं, जिनमें खेल की थोड़ी भी प्रतिभा होती है उनका हम लोग सिलेक्शन करके इनको आवासीय प्रशिक्षण केंद्र में रखते हैं। इनका रहने और खाने का जो भी खर्च है वो राज्य सरकार उठाती है और इनको खेल का प्रशिक्षण भी, साथ ही पढ़ाई के साथ साथ खेल का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। और इस प्रशिक्षण के बाद वो तरह तरह के कॉम्पिटिशन में भाग लेकर आगे बढ़ते जाते हैं।

0: चयन करते हैं, जिनमें खेल की थोड़ी भी प्रतिभा होती है, उनका हम लोग सिलेक्शन करके इनको आवासीय प्रशिक्षण केंद्र में रखते हैं। इनका रहने और खाने का जो भी खर्च है वो राज्य सरकार उठाती है, और इनको खेल का प्रशिक्षण भी, साथ ही पढ़ाई के साथ साथ खेल का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। और इस प्रशिक्षण के बाद वो तरह तरह के कॉम्पिटिशन में भाग लेकर आगे बढ़ते जाते हैं। अभी सासाराम के ही एकलव्य सेंटर में फुटबॉल के बच्चे जो है वो काफी आगे गए हैं। एक खिलाड़ी का चयन तो मिनर्वा एकेडमी के लिए हुआ है। बैडमिंटन का एक खिलाड़ी अभी गोपीचंद एकेडमी में प्रशिक्षण ले रहा है। तो खेलों को इस तरीके से हम लोग बढ़ावा देने का काम करते हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो हर स्कूल में शारीरिक शिक्षक मौजूद हैं, जिसमें खेल पीरियड होगी, उसके लिए कुछ फंड भी मौजूद हैं। और जो हमारा विद्यालय खेल प्रतियोगिता हर वर्ष होता है, उसमें हम ऐसे तमाम खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म देते हैं आगे बढ़ने के लिए। जी अर्चना जी,
1: जी, बहुत ही सराहनीय कदम है। अब अंत में उपाधीक्षक महोदय, हमारे खिलाड़ियों को आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं सबसे पहले सभी लोगों का ध्यान इस चीज की तरफ एक बार आकर्षित करना चाहूंगा कि जब एक खिलाड़ी या खेल के प्रति जो आकर्षित वो एक्टिव रहते हैं, वो आदमी खड़ा रहता है, और एक आम आदमी जो अपनी जिंदगी में बिजी है और खेल व्यायाम जैसे चीजों से दूर है, दोनों को देख कर ही आप दोनों में फर्क महसूस कर सकते हैं। एक व्यक्तित्व जो निखर कर आता है खिलाड़ी का, या खेल के प्रति जो लोग भी रेगुलर एक्टिव रहते हैं, वो एक आम आदमी से बिल्कुल भिन्न देखते हैं। ये जो गैप है, ये जो भिन्नता है, ये हमें मिटाने की जरूरत है। हमें समझना पड़ेगा कि खेल हमारी जिंदगी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये हमें पूरे दिन के लिए एक एनर्जी देता है, स्फूर्ति और ताजगी भरता है। हमारे दैनिक कार्यक्रम में और हमारे दैनिक जिंदगी को अनुशासित करने का काम करता है। इसी वजह यही एक वजह है कि एक खिलाड़ी और एक आम आदमी के व्यक्तित्व में अंतर हम बिल्कुल साफ देख सकते हैं। अभी जो हमारी जीवन शैली है बहुत ही बदल चुकी है अर्चना जी, जहाँ हम देखते हैं कि एक भाग दौड़ वाली जिंदगी है, और इस भाग दौड़ वाली जिंदगी में जो थोड़ा वक्त मिलता है वो हम मोबाइल की दुनिया में खो जाते हैं। तो जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी है वो थोड़ी रुक सी गई है। और ये लोग जो समझते हैं कि भाई मोबाइल से मनोरंजन करके भी अपने हम दिमाग को खुराक ही दे रहे हैं, क्योंकि मनोरंजन भी तो मस्तिष्क का खुराक है, वो इसके दुष्प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं। जो शुद्ध हवा और ताजी हवा में सांस लेने से शरीर, फेफड़ा और हृदय का को जो खुराक मिलता है वो इस मोबाइल में नहीं मिलता है। तो इसलिए व्यायाम, खेल आदि में सक्रिय रहने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि हमारे शरीर को, हमारे मस्तिष्क को हमेशा जो एनर्जी उनको चाहिए, जो पॉजिटिव एनर्जी उनको चाहिए, जो हैप्पी हार्मोन हमारे बॉडी को चाहिए, वो मिलता रहे, और एक अनुशासित और स्वस्थ जीवन शैली को हम जी सकें और अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर हम एक अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी होंगे, तो हम उस स्थिति में रहते हैं जब जीवन के किसी भी मुश्किल लक्ष्य को पाना हमारे लिए मुश्किल नहीं रह जाता है। क्योंकि एक खिलाड़ी का आप देखेंगे, जब वो खेलने जाता है तो उससे पहले स्ट्रेटेजी बनाता है, मैदान में अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है, पूरी ताकत झोंक देता है, और उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए कठिन से कठिन लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेता है। यही चीज हमारी आम जिंदगी में भी होती है। छोटी छोटी बड़ी बड़ी बहुत सारी समस्याएं आती है, यदि उस पर हम सोचें, विचार करें, उस पर स्ट्रेटेजी बनाएं और अपनी पूरी ताकत झोंक दें, तो ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं है जिसको हम नहीं पा सकते हैं, ऐसी कोई भी मुश्किल नहीं है जिसको हम जीत नहीं सकते हैं। इसलिए मेरी शुभकामनाएं वैसे सभी लोगों के साथ है, और मेरा जो संदेश है वो यही रहेगा कि हम अपने जीवन में खेल, व्यायाम, योगा, जो भी इस तरीके की फिजिकल एक्टिविटी है, उसको आत्मसात करें, अपने जीवन का एक अंग बनाएं, और अपने व्यक्तित्व को हम उस स्तर पर ले जाएं कि हमारे लिए कोई भी समस्या या कोई भी समस्या हमारे लिए बड़ी ना हो, और कोई भी लक्ष्य हमें इतना बड़ा ना दिखे कि हम उसे पा नहीं सकते हैं। हम हर लक्ष्य को पा सकते हैं, हम हर समस्या पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी, उपाधीक्षक शारीरिक शिक्षा रोहतास राहुल कुमार जी, आपने हमारे कार्यक्रम के लिए अपना महत्वपूर्ण समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद अर्चना जी।
1: श्रोताओं, 12 जून का दिन विश्व बाल श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाल श्रम निषेध दिवस का मुख्य उद्देश्य है दुनिया भर में बाल श्रम की गंभीर समस्या को उजागर करना और उसे पूरी तरह से समाप्त करने के लिए आवश्यक कदमों और जागरूकता को बढ़ावा देना। इस वर्ष के इस दिवस का विषय है बाल श्रम को लाल कार्ड, बच्चों के लिए निष्पक्ष खेल, वयस्क

0: लोगों के लिए सम्मानजनक काम, तो हम और आप भी बच्चों को पढ़ने लिखने और आगे बढ़ाने की अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध करा कर उन्हें विकास कार्यों में लगने दें, यही जरूरी है। श्रोताओं, और अब अंत में, आज मनाए जा रहे हैं विश्व रक्तदाता दिवस की बात कर लेते हैं। यह दिन सुरक्षित रक्त और रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने, स्वच्छैदिक रक्तदाताओं को धन्यवाद देने और लोगों को रक्तदान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। नोबेल पुरस्कार विजेता कार्ल लैंड स्टाइनर की जयंती के रूप में यह दिन मनाया जाता है, जिन्होंने ABO रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी। श्रोताओं, रक्तदान महादान, आप भी रक्तदान करें, दूसरों के काम आएं और सुने क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर KN तिवारी। श्रोताओं, विश्व रक्तदाता दिवस की पूर्व संध्या में अभी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं डॉक्टर KN तिवारी।
1: डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: डॉक्टर KN तिवारी जी, सबसे पहले तो आपसे हमारे श्रोता यह जानना चाहेंगे कि रक्तदान की आवश्यकता क्यों पड़ती है और कैसा व्यक्ति रक्तदान कर सकता है।
2: रक्तदान की आवश्यकता माने सर्जरी में कोई ऑपरेशन हो रहा है, ब्लीडिंग ज्यादा हो गया तो इसमें जरूरी है। RTA में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गया, उस स्थिति में रक्त चढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। और रक्त कोई माने फैक्ट्री में नहीं बन सकता
1: जी,
2: तो रक्त को हम माने हम ही लोग माने दान कर सकते हैं
1: जी, हम ही लोग डोनेट कर सकते हैं।
2: हाँ, ऐसा नहीं है कि रक्त किसी फैक्ट्री में कोई बना दे
1: जी,
2: तो इसलिए रक्त दान को महादान माना जाता है। और रक्त देने से दानकर्ता को कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि हमारे शरीर में माने ब्लड बैंक है शरीर का
1: जी,
2: स्प्लीन में जितना हम एक बोतल खून देंगे तो वो तुरंत रिप्लेस कर देता है
1: जी।
2: तो हर माने 2-4-5 महीने पे रक्त देने से शरीर बल्कि और स्वस्थ रहता है, पुराना नया ब्लड आते रहता है
1: जी जी।
2: इसलिए रक्त देने में कोई इसका माने 18 साल से 60 साल के बीच के लोग रक्तदान कर सकते हैं
1: जी।
2: और यहाँ हमारे यहाँ बहुत लोग आते हैं स्वेच्छा से रक्तदान करते हैं
1: जी।
2: इसको माने ये नहीं समझना चाहिए कि हम एक बोतल खून दे देंगे तो हमको कमजोरी हो जाएगी, ऐसा कुछ होता नहीं है
1: जी।
2: क्योंकि उतना ब्लड शरीर में रिप्लेस हो जाता है
1: जी।
2: हमारे शरीर में स्प्लीन है जिसको हम लोग अपना ह्यूमन ब्लड बैंक, वो तुरंत उतना ब्लड रिप्लेस
1: जी। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, रक्त लेकर ब्लड बैंक तैयार करना काफी चुनौतीपूर्ण कार्य है।
2: हाँ।
1: इस पूरी प्रक्रिया में किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है?
2: हाँ, ब्लड बैंक, जैसे ब्लड बैंक का लाइसेंस भारत सरकार से मिलता है
1: जी,
2: उसका कुछ प्रोटोकॉल है। हम लोग यहाँ माने अब तो हमारे यहाँ सेपरेटर मशीन भी आ गया है, सदर हॉस्पिटल में ब्लड बैंक है
1: जी,
2: जिसमें बड़े बड़े फ्रिज हैं ब्लड रखने के लिए, और एक सेपरेटर जैसे किसी किसी को प्लाज्मा चढ़ाना पड़ता है, किसी को केवल सेल चढ़ाना है
1: जी,
2: तो ब्लड से सेल को और प्लाज्मा को अलग करने की मशीन है
1: जी,
2: इसको सेपरेटर कहते हैं
1: जी जी।
2: उसको सेपरेट करके जैसे कोई मरीज है जिसको हमको माने वॉल्यूम ज्यादा नहीं चाहिए केवल सेल चाहिए तो उसको हम लोग प्लाज्मा हटा के केवल कॉन्सेंट्रेटेड ब्लड चढ़ाते हैं, ज्यादा फायदा करता है
1: जी। डॉक्टर साहब, रोहतास जिले में ब्लड बैंक का भंडार कितना समृद्ध है जिससे आपातकाल की स्थिति में पीड़ित व्यक्तियों की तत्काल मदद की जा सके?
2: यहाँ 3 ब्लड बैंक कार्यरत है
1: जी,
2: 4 कहिए, एक जमुहार में भी है
1: जी,
2: एक हमारे सदर हॉस्पिटल में है
1: जी,
2: एक राज कॉलोनी में माइक्रो ब्लड बैंक है
1: जी,
2: और एक पूनम हॉस्पिटल में ब्लड बैंक है

0: वो प्राइवेट है, हम लोग का सरकारी है। तो
1: जी
0: हम लोग यहाँ ब्लड माने रिप्लेस कोई कराता है तो उसका कोई चार्ज नहीं लगता है, उसका जो टेस्ट है उसी का चार्ज लगता है,
1: जी
0: बाकी हम लोग ऐसे फ्री देते हैं। और
1: जी
0: गरीब मरीज को तो टोटली फ्री दे देते हैं। मान
1: जी
0: लीजिए कोई मरीज बहुत गरीब है और
1: जी
0: उसको ब्लड की आवश्यकता है तो हम लोग देते हैं उसको,
1: जी
0: उससे बहुत मरीजों की जान बचाई जाती है।
1: जी
0: डिलीवरी में भी, डिलीवरी में कुछ मरीज होते हैं जिनका हीमोग्लोबिन एकदम कम है, पहाड़ी
1: जी
0: क्षेत्र के मैक्सिमम मरीजों का हीमोग्लोबिन 6-7 रहता है,
1: जी
0: ऐसे 12 होना चाहिए, तो
1: जी
0: उस मरीज को, गरीब मरीजों को हम लोग फ्री में ब्लड देते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, रक्तदान को लेकर आम लोगों में तरह तरह की भ्रांतियां हैं। अंत में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि वे रक्तदान के लिए प्रेरित हो सके?
0: नहीं, हमारा यही कहना है कि रक्तदान को महादान के श्रेणी में माना जाता है
1: जी
0: और रक्तदान करने से कोई हानि नहीं होती है,
1: जी
0: लाभ ही होता है। ऐसे
1: जी
0: लोगों के दिमाग में है कि हम एक बोतल खून दे दिए तो हमारा खून कम हो गया, वो खून
1: जी
0: तुरंत रिप्लेस हो जाता है।
1: जी
0: शरीर का जो हमारा ब्लड बैंक है वो
1: जी
0: उतना खून तुरंत हमारे सिस्टम में भेज देता है,
1: जी
0: इसलिए इस तरह की भ्रांति रखना मैंने गलत है कि रक्तदान करने से हमको कुछ कमजोरी होगी, इस तरह की कोई बात नहीं।
1: जी डॉक्टर के एन तिवारी जी, विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर आपने हमें अपना महत्वपूर्ण समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

श्रोताओं, हमारे देश के लिए मानसून का आगमन एक उत्सव की तरह होता है। उड़ीसा की रथ यात्रा, केरल का ओणम, महाराष्ट्र की गणेश चतुर्थी तथा राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार की तीज और हरियाली तीज मानसून के दौरान ही महोत्सवों के रूप में संपन्न होते हैं। झूले झूले जाते हैं और कजरी गाई जाती है। तो चंद रोज तक करें इंतजार और फिर कागज़ की कश्ती और बारिश का पानी का उठाएं लुत्फ।

0: श्रोताओं, आज का हमारा यह अंक कैसा लगा अवश्य लिख भेजिएगा। हमारा पता है, कार्यक्रम विज्ञान एवं पर्यावरण द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सासाराम, पिन कोड 8211115। तो अब इसी के साथ अर्चना लेती है विदा। नमस्कार। स्वर संकलन अर्चना कुमारी, प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: आरबीआई कहता है
1: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: हमेशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: अंतराल से पहले आप सुन रहे थे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम विज्ञान एवं पर्यावरण। स्वर एवं संकलन अर्चना कुमारी, प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। प्रस्तुत है भोजपुरी लोकगीत। आज की कलाकार हैं वंदना कुमारी।

वंदना कुमारी के गाए इसी गीत के साथ ही भोजपुरी लोकगीत का कार्यक्रम अब यहीं पे संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। भोजपुरी समाचार बुलेटिन सुनने के लिए अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: समाचार सुने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा कहले बाड़न कि पिछला 12 बरिस में देश के स्वास्थ्य सेवा में खूब सुधार भइल बा। उ कहले कि स्वास्थ्य नगरिक ही देश के सबसे बड़ ताकत बा। सोशल मीडिया पर एगो पोस्ट में श्री नड्डा कहले कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और डिजिटल स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से बेसी लोग तक इलाज के सुविधा पहुंच रहल बा। श्री नड्डा कहले कि देश में एम्स के संख्या 1 से बढ़कर 23 हो गई बा। वही जा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कहले कि भारत सरकार के उद्देश्य ये सुनिश्चित कइल बा कि बीमारी के कारण कोनो परिवार पर आर्थिक बोझ न पड़े। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना स्थित विद्युत भवन में ऊर्जा विभाग के 1,278 करोड़ रुपया के योजना सबके उद्घाटन आ शिलान्यास कैले। श्री चौधरी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1,512 करोड़ रुपया के लागत से 2.5 लाख उपभोक्ता लोग के घर के छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगावे के काम के शुभारंभ भी कैले। केंद्रीय सूक्ष्म लघु आ मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी आ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी काल बिहार के गया जी जिला के खिजर सराय में एगो नयका प्रौद्योगिकी केंद्र के आधारशिला रखी हैं। ये केंद्र 170 करोड़ रुपया के निवेश से स्थापित कैल जाए। मंत्रालय कहलस कि केंद्र सरकार के लक्ष्य बा कि हर बरिस 7,000 युवा लोग के ट्रेनिंग दिहल जाए और रोजगार सेवा के माध्यम से 1,000 से बेसी उद्यमी लोगों के सहायता प्रदान कैल जाए। बिहार के महाधिवक्ता पी के शाही अपन पद से इस्तीफा देते ले बाड़े। हालांकि इस्तीफा के कारण के अभी तक कोनो आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आयल। तत्कालीन महाधिवक्ता ललित किशोर के इस्तीफा के बाद पीके शाही के 16 जनवरी 2023 के बिहार के महाधिवक्ता नियुक्त कैल गेल रहे। बता दी कि महाधिवक्ता राज्य सरकार के सर्वोच्च विधिक अधिकारी होकेलन, जो सरकार के कानूनी सलाह देवे के साथ साथ उच्च न्यायालय और दोसर न्यायिक मंच सब पर सरकार के पक्ष रखेलन। प्रदेश के सभी जिला में स्थित परीक्षा केंद्र पर आज मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल और चलंत दस्ता सिपाही भर्ती खातिर लिखित परीक्षा 2 पाली में आयोजित कैल गई। केंद्रीय सिपाही चयन परिषद के मुताबिक ये परीक्षा के माध्यम से 4,200 से बेसी पद पर बहाली हुई। यही पद सब पर बहाली खातिर अगला परीक्षा 17 जून के हुई। सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल होए वाला अभ्यर्थी लोग पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर जम के हंगामा कैले। पर्याप्त ट्रेन सेवा उपलब्ध ना होके से नाराज छात्र लोग स्टेशन परिसर में तोड़फोड़ और पथराव कैले। ऐसे रेलवे के संपत्ति के नुकसान पहुंचल। पटना के पुलिस महानिरीक्षक जितेंद्र राणा बतौलें कि पुलिस के हस्तक्षेप से हंगामा पर काबू पाके ट्रेन सबके परिचालन सामान्य कैल गेल। असम के जोरहाट हवाई अड्डा पर काले भइल विमान दुर्घटना में शहीद बिहार के 2 गो वीर सपूत फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार आ अग्निवीर दानिश आलम के पार्थिव शरीर आज पटना के बेहटा वायुसेना स्टेशन पर पहुंचल। ए मौका पर भारतीय वायुसेना दोनों शहीदन के सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई देहलस। श्रद्धांजलि अर्पित करे के बाद अग्निवीर दानिश आलम के पार्थिव शरीर के भोजपुर जिला के कायमनगर गांव और फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार के पार्थिव शरीर जहानाबाद जिला के बनवरिया गांव भेज दिया गया। प्रदेश में मॉनसून के उत्तरी सीमा अभी मुजफ्फरपुर से होके गुजर रहल बा। मॉनसून के प्रभाव से कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और आसपास के जिला सब में भारी बारिश भइल बा। मौसम विभाग से मिलल जानकारी के मुताबिक अगला 24 घंटा में प्रदेश के ज्यादातर हिस्सा में बुन्नी पड़े के संभावना बा। इस दौरान बिजली गिरला के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हवा भी चल सकेला। बिहार के 3 गो पारंपरिक उत्पाद नालंदा के 52 बूटी साड़ी और फैब्रिक, गया के पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट और भोजपुर के पीढ़िया पेंटिंग के GI टैग मिल गए बा। ऐसे ही उत्पाद सबके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एगो नया पहचान मिली। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ई उपलब्धि पर खुशी जतैलन और राज्य के शिल्पकार, बुनकर, कलाकार और संबंधित संस्था सबके बधाई भी देले बाड़े। श्री चौधरी कहले कि उपलब्धि बिहार के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक कला कौशल और ग्रामीण प्रतिभा के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत पहचान दिलाई। एक साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के अंक यही जा समाप्त भइल।
1: अभी आप सुन रहे थे पटना से प्रसारित भोजपुरी बुलेटिन समाचार।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:10 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए हमारे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर।

गांव घर सुनने वाले सभी श्रोता लोगन के रनिया बहन का नमस्कार। श्रोता सभे कहल जाला कि खून के हर बूंद में जीवन का संदेश होला, रक्तदान करे वाला सच्चे में विशेष होला, जे भी दूसरा के सांस में नया उड़ान देवेला उहे रक्तदाता महादाता कहावेला। जी हाँ श्रोता सभे, आज 14 जून है, यानी कि आज पूरा दुनिया में रक्तदान दिवस मनावल जाला। सबसे पहले तो सब खून देवे वाला भाई बंधु के हाथ जोड़ के गोड़ लागत बानी, कहें कि रउआ लोग जौन काम कर रहल बानी उ कौनो जिंदगी बचावे से कम नहीं है। गांव घर में हमने के अक्सर सोची ना जाए कि अरे शरीर से खून निकल जाई तो कमजोरी आ जाई, चक्कर आवे लगी, चाहे कौनो बीमारी धर लेला। लेकिन साँच पूछी श्रोता सभे तो सब खाली मन का एगो बहम बाटे और कुछो नहीं है। हमने के शरीर का नियम आ सिस्टम ही ऐसा होला कि जब हमने के तनी को शरीर से अपने खून निकाल के दे ही न जा तो ऊपर वाला की कृपा से खून और बढ़ जाला, बन जाला बढ़िया, हमने के शरीर एकदम टंच आ दुरुस्त हो जाला। सोची अगर हमने के तनी को खून देवे से माने हमने का अगर उजड़ जात बानी जा, चाहे सोचत नहीं जा कि नहीं नहीं हमने के कमजोर हो जाई जाई, तो काम कैसे चली। तन के सब विचार करें श्रोता सभे कि जेकी जेकर उजड़त घर होखेला तो रउआ तनी सा खून अगर दे देत बानी तो ओकर घर बस जाला। कोई के माई के लाल बच जाना, चाहे कोई के सुहाग बच जाला, तो उससे बड़ा पुण्य का काम यह धरती पर और का हो सकत बा। अस्पताल में जब कोई बीमार गरीब बीमार पड़ेला आ डॉक्टर बोलेला कि खून का इंतजाम हो रहा बाटे हूँ चाहे कर ही रउआ लोग जा कर के, तब ओह परिवार पर का बीतत होगी उहे जानत बा न। ऐसन समय में जब कौनो रक्तदाता आगे आ कर के अपन खून देवेला तो वो उह परिवार खातिर के साक्षात भगवान के रूप में बन जाना। ऐसे श्रोता सभे हमनी सबके यह पावन दिन के आज के दिन यानी कि हमनी के कसम खाए के चाहिए कि हमनी के डराए के नहीं खे, बल्कि जब भी मौका मिली आगे बढ़ करके रक्तदान करे के और दूसरा के भी समझाई जाए कि ये भाई बहन लोग चाहे बंधु लोग खून बनेला नस में, ये कोनो कारखाना में नहीं बनेला। ऐसे जब तक हमनी के एक दूसरा के मदद नहीं कैल जाए तब तक बात नहीं बन सकेला। बहुत लोग सोचेला कि रक्तदान करे से माने कोनो बहुत बड़ नेता चाहे अमीर आदमी होखेला उहे रक्तदान करेला, लेकिन ऐसन कुछ नहीं खे। कोई भी आम आदमी इंसान जौन बाटे जौन एकदम भला चंगा होखे, कोनो तरह का ऊपर दिक्कत परेशानी न होखे, उस कोई कभी जान बचा सकत बाटे। हमनी के गांव जवार में श्रोता सभी अक्सर देखल जाला कि जब अचानक कोई के खून का जरूरत पड़ेला तो लोग घबरा के इन्ने उन्ने भागे लगेला, दलाल के चक्कर में पड़ जाला, अपन पैसा कौड़ी सब गंवा के एकदम ठीक हो जाला। यह चीज़ के रोके खातिर के आज के दिन सब कोई जागरूक होकर बहुत जरूरी बाटे। आ जब हमनी लोग खुद आगे बढ़ करके खून देहल जाए तो अस्पताल में खून का कमी नहीं होगी आ कोनो गरीब के अपन जान नहीं गवावे के पड़ी। खून देला से दिल का बीमारी भी कम होखेला आ शरीर का वजन भी कंट्रोल

में रहेला, यानी कि दूसरे का भला करे के साथ साथ आपन भी फायदा होखेला। सरकार भी एकरा खातिर के बहुत इंतजाम कर रहल बाटे, जगह जगह पर देखतानी के कैंप लगावत बाटे ताकि कोई के भी जान के आसानी से अपन रक्तदान कर सकत बान। हमनी के यह बात के समझे के होखी कि हमनी का खून जौन बाटे उ जात पात ऊंच नीच का भेद नहीं बनेला। एगो हिंदू का खून मुसलमान के काम आ जाला, चाहे एगो मुसलमान सिख ईसाई का खून एगो दूसर जात के काम आ जाला। इहे तो असली इंसानियत है श्रोता सब। लोग कहेल कि पहला बार खून देवे जात बानी तो उनके मन में अजीब सा डर बनल रहेला, सुई चुभई तो कितना दर्द होखी। पर साँच बताई, चीटी काटे वाला जितना भी दर्द नहीं होखेला। खून देवे के बाद डॉक्टर लोग बढ़िया से चाय बिस्कुट फल खाए के देवे ला, चाहे कहे ला कि जा कर के भाई जूस उस पी ला ताकि शरीर में तुरंत फुर्ती आ जाए। आधा घंटा में जौन बा इंसान फिर से अपने काम धंधा में उ लग जाला जे खून देवे देले रहेला। कोनो भारी कमजोरी नहीं आवेला। आज के जमाना में जौन नौजवान लड़का बना चाहे लड़की लोग वाली एक काम में सबसे आगे आ रहा बना। जब गाँव का युवा जाग जाए आ ई ठान ले कि हमनी के इलाका में कोई भी इंसान के खून के कमी से नहीं मरे के पड़ी तो समझ लें कि आधा दुख आधा बीमारी ऐसा ही दूर हो जाए, ख़त्म हो जाए। हमनी के जौन सोशल मीडिया इस समय चल रहा बाटे, लोग खून भी दे रहा बना तो अपन ओजा स्टेटस लगा रहा बना कि हम सचमुच में एगो मने अच्छा काम कैली हैं, अस्पताल में जाकर के कोई के तड़पत मरीज के काम अली हम। रक्तदान महादान ऐसा ही नहीं कहल जाला श्रोता सभे, ये दुनिया का सबसे बड़ धर्म हवे। कहें से कि ये सीधा कोई के जिंदगी के नया मौका देवेला। ऐसे डर के भगाई अपने बाह के अपने हाथ के आगे बढ़ाई आ यह नेक काम में हाथ बटाई। श्रोता सभे, समाज में जौन तरह तरह के अफवाह फैल रहल बाटे ओकरा के रोकल बहुत जरूरी बा। कुछ लोग कहला कि अरे एक बार खून दे देब तो हमेशा देवे के पड़ी, नहीं। एकरा से कहो कि शरीर जौन बाटे कि भारी हो जाए तो ये सब एकदम मने बेबुनियाद बात बा श्रोता सभे। यह सब पर कान कान एकदम बिल्कुल जंगा मत लगाई। हमने के नस नस में दौड़े वाला खून लाल खून जौन बा वो प्रकृति का देहल बाटे, तोहफा बाटे उ जरा के कि हमने के जितना बाँटल जाए जितना बाँटल जाए अपने आप खुद ब खुद वो स्वस्थ उतना ही बढ़िया होकर चल जाए। साल में 2-3 बार कोई भी तंदुरुस्त आदमी के आराम से रक्तदान कर सकत बा ना। तनकी सा सोची रहुआ लोग कि जब हमने के अपने घर में खुशी का कोनो माहौल बनाई ले जाए, चाहे जन्मदिन होके चाहे शादी ब्याह होके, अक्सर वह दिन में हमने के जाकर के कोनो सरकारी अस्पताल में खून दे आई जाए तो हमने के खुशी का माहौल दोगुना हो जाए। कोनो तड़पत बूढ़ा माई बाप के चाहे मासूम बचपन के उनके अपने नया जीवन मिल जाए, उनकर दिल जौन बाटे एकदम मने खिल उठी। अब उनकर माई बाप जौन माना चाहे उनकर रिश्तेदार बनो कितना दुआ दिया कि हमरे मतारी के हमरे बाप के चाहे हमरे बेटा के नाती पोता के उहे आदमी खून देले रहे जेकरा से कि आज हमर लड़का खड़ा बाटे। उ दुनिया का हर दौलत एक साइड आ ओकर महत्व एक साइड हो जाए श्रोता सभे। ऐसे यह रक्तदान दिवस पर हमने सब के अपने गांव टोला मोहल्ला शहर सब में अलख जगाई जाए कि खून देवे वाले से खून देवे वाला कोनो उनकर कमी नहीं होखेला, खून का कमी नहीं होखेला, बल्कि इंसानियत के नाता और भी बढ़ जाला। श्रोता सभी आगे हमने के और ही बातचीत कैल जाए, यही कार्यक्रम में आगे बढ़ावे के सुनल जावे एक ठे लोकगीत। आज के कलाकार बनी बालेश्वर प्रसाद और उनका साथी लोग।

0: बहुत बहुत धन्यवाद बालेश्वर प्रसाद जी और आर साथी लोग के, कहें कि बहुत बढ़िया लोकगीत सुनै ली जा रुआ लोगन। अब श्रोता सभी आवे के हमने के अपने कार्यक्रम के आगे बढ़ावे के आ सुनल जाए एक वार्ता जेकर विषय बाटे कटते जंगल चढ़ता पारा। वार्ताकार बानी भूपेंद्र नारायण सिंह, सुनल जाओ।
1: आज पूरी दुनिया के पर्यावरणविद ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को लेकर चिंतित हैं। विश्व के विभिन्न देशों में बढ़ते तापमान को संतुलित करने के उपायों पर समय समय पर सेमिनार आयोजित हो रहे हैं। तापमान में निरंतर हो रही वृद्धि से जहां जलस्तर दिनानुदिन नीचे की ओर भाग रहा है, वहीं मौसम में भी अनिश्चितता का दौर जारी है। बढ़ती आबादी और विकासशीलता के कारण अंधाधुंध निर्माण कार्य हो रहे हैं।

करोड़ों की आबादी वाले भारत देश में ही प्रतिवर्ष करोड़ों की संख्या में वृक्ष ईंधन की भेंट चढ़ जाते हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश के लगभग 5 करोड़ लोगों की रोजी रोटी जंगलों से लकड़ी काटकर बिक्री करने से चलती है। वन संरक्षण अधिनियम की अनदेखी करते हुए प्रतिदिन जंगलों से अनगिनत वृक्षों को काटा जा रहा है। जंगल रोज सिकुड़ रहे हैं, जबकि वृक्षारोपण कार्यक्रम की गति अत्यंत धीमी है। जंगलों की निरंतर कटाई होते रहने से आज पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बढ़ गई है। पर्यावरण में अगर किसी तरह का प्रदूषण होता है तो उसका असर मनुष्य के फेफड़ों, हृदय और मस्तिष्क के साथ ही पृथ्वी के गर्भ तक होता है। गर्मी में ग्लोबल वार्मिंग, पेयजल संकट, तो बरसात में बाढ़, भूस्खलन और जल प्रदूषण का उफान रहता है। जाड़े में हिमजुग की वापसी और वाहनों द्वारा फेंके गए कार्बन के पृथ्वी की ओर वापस आने के खतरे से चिंता बढ़ी रहती है। ओजोन परत को लेकर भी हम चिंतित रहते हैं। पर्यावरणविदों ने 20वीं सदी के उत्तरार्ध में पर्यावरण प्रदूषण और संतुलन की ओर पूरी विश्व मानवता का ध्यान तरह तरह से आकृष्ट किया। उन्होंने वृक्षों की कटाई से होने वाले नुकसान की तरफ दुनिया के विकसित और विकासशील देशों का ध्यान दिलाया। भले ही यह बात आम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन इस भयावह स्थिति से तो रूबरू जरूर हुए हैं कि प्रकृति की ओर से मुफ्त मिलने वाले पानी का बाजार दूध के बाजार से बड़ा और महंगा हो गया है, और इसके पीछे एकमात्र कारण जंगलों की अनवरत कटाई है। आज विश्व ग्लोबल वार्मिंग को लेकर परेशान है। निरंतर बढ़ते तापमान से प्रकृति की नैसर्गिकता प्रभावित होने लगी है। गर्मी से बेहाल मनुष्य व जीव जंतु विविध प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। प्रकृति प्रदत्त शीतल व शुद्ध वायु के लिए लोग तरस रहे हैं। जिस रफ्तार से वृक्षों का दोहन जारी है, उससे चिंता बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि वृक्षों को लगाने का कार्य सुव्यवस्थित ढंग से नहीं हो पा रहा है। पेड़ लगाने के दृष्टिकोण और अभियान में भी सुधार की जरूरत है। वृक्षों का चयन भौगोलिक आवश्यकता के अनुसार नहीं किया जाता है। कोई पेड़ लगा देना पर्यावरण का सुधार मान लिया जाता है, जबकि भौगोलिक परिस्थितियों में अधिकतम उपयुक्त वृक्षों को सोची समझी रणनीति के तहत रोपित किया जाना उपयुक्त होता। कुछ वृक्ष ऐसे हैं जो अधिकतम जल संग्रह की शक्ति रखते हैं। उनका अधिकतम रोपण सूखते जा रहे जलागम क्षेत्रों में किया जाना चाहिए। चौड़ी पत्तियों वाले वृक्षों का रोपण ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक होने से पशु चारा और जल संरक्षण के अद्भुत स्रोत बनेंगे। कई झाड़ियाँ और वृक्ष विषैले और हानिकारक होते हैं। उनमें से जिनमें औषधीय गुण हैं, उन्हें सार्वजनिक स्थलों से दूर सुरक्षित क्षेत्रों में उगाया जाना श्रेयस्कर होगा। कुछ ऐसे भी वृक्ष हैं जो सर्वगुण संपन्न हैं, अधिकतम प्राणवायु, अधिकतम जल संग्रहण और भूक्षरण रोकने में बेहद कामयाब। लेकिन दुर्भाग्य कि हम पेड़ों को उनके गुण और नाम से नहीं पहचानते। हर एक को पेड़ मात्र कहकर काम चला लिया करते हैं। पृथ्वी पर जीवन को कायम रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले वृक्षों के प्रति हमारी नकारात्मक सोच आज हमें कठिनाइयों की ओर धकेलता चला जा रहा है। इस मामले में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक वृक्ष 10 पुत्र समान की भावना कितनी आवश्यक है। वृक्षों को लगाने और उसे काटने की पद्धति का ज्ञान आज नितांत जरूरी है। पूर्ण आयु प्राप्त वृक्षों की सूख कर मरने से पहले काटने के लिए चुनने की भी एक वैज्ञानिक पद्धति विकसित की जानी चाहिए, वरना वेश कीमती पेड़ केवल ईंधन बनकर रह जाएंगे। वृक्ष काटने को लेकर ऐसा प्रावधान बनाने की ज़रूरत है कि यदि एक वृक्ष काटा जाता है तो उसके आसपास कम से कम 10 वृक्ष लगाने की बाध्यता हो। वृक्षारोपण कार्यक्रम से बुजुर्गों और बेरोजगारों को पारिश्रमिक देकर जोड़ने की ज़रूरत है, तभी पहाड़ों व मैदानी भागों के उजड़े जंगलों को नया जीवन मिल पाएगा। नदियों के जलस्तर और हवाओं के प्राण पोषक तत्वों की वृद्धि होगी। जंगलों की बेतरह कटाई से उत्पन्न समस्या आज विश्व पर्यावरण के लिए

0: चिंता का विषय बन गया है। अगर जंगलों की कटाई को रोका नहीं गया और नए वृक्षों का रोपण नहीं हुआ तो दिनानुदिन बढ़ते तापमान के बीच आम जीवन कितनी तकलीफ देह हो जाएगी, इसकी कल्पना मात्र ही अत्यंत भयावह है।
1: शिक्षा का उद्देश्य मानव जीवन का अज्ञान तिमिर दूर करना है, और यह अज्ञान तिमिर एक शिक्षक दूर करता है, कारण कि शिक्षा हमारी संस्कृति, सभ्यता, उत्थान और प्रगति का सूचक है। मानवता पैदा करने, जागृत करने और बढ़ाने का सर्वोत्तम साधन शिक्षा है। प्राचीन युग का इतिहास साक्षी है कि भारत की शिक्षा से विश्व के प्रायः देश लाभान्वित हुए थे। यहाँ के शिक्षकों का बड़ा आदर था। विदेशी विद्यार्थी शंका समाधान के लिए नालंदा आया करते थे और प्रख्यात बन जाते थे। इसीलिए प्रसिद्ध चीनी यात्री इतसिंग ने नालंदा और वल्लभी की तुलना चीन की प्रसिद्ध शिक्षा संस्थाओं से किया है। आज भी हमारे देश में अच्छी शिक्षण संस्थाएं और अच्छे शिक्षक हैं। जरूरत इस बात की है कि सरकार निष्पक्ष भाव से ऐसे शिक्षकों और शिक्षा संस्थानों को प्रोत्साहित करे। शिक्षक समाज की रीढ़ होता है, उसका महत्व समाज में सर्वोपरि होता है। गुरु अर्थात शिक्षक के महत्व को रेखांकित करते हुए कबीर ने कहा है कि गुरु गोविंद दो उखड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। निश्चित रूप से गुरु गोविंद से बड़ा होता है, पर हमें उसे शिक्षाकर्मी होने से रोकना है। शिक्षाकर्मी शब्द शिक्षकों को एक वेतनभोगी कर्मचारी मानता है, जबकि उनमें कुछ ऐसे गुण होते हैं जो अन्य कर्मियों से उन्हें अलग करते हैं। शिक्षक विद्याव्यसनी होते हैं, वे विनम्र, निराहंकारी और चरित्रनिष्ठ होते हैं। महात्मा गांधी ने कहा है कि यदि शिक्षक चरित्रहीन हैं तो वे खारेपन से रहित नमक जैसा फीका होंगे, यदि शिक्षक चरित्रवान है तो विद्यार्थियों में स्वयं उनके प्रति श्रद्धा जागृत हो जाएगी, कहा जाता है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमने के अपने कार्यक्रम के आगे बढ़ावे से पहले जान लेवे के कुछ संदेश सुन लेहल जाओ।
3: तन तक पहुँचे के सस्ता असुलभ माध्यम बा आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी का केंद्रन से करें विज्ञापन का माध्यम से अपन उत्पादित माल आ सेवा का प्रचार।
3: स्थानीय आ देश स्तर पर कहीं करी अपन बिजनेस के प्रसार।
4: काहे की आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग भइला आसान।
3: घर, दफ्तर या दुकान पर बैठल अब करी विज्ञापनन के बुकिंग।
4: डायल करें 8700014242।
3: नंबर फिर लिखी 8700014242।
2: श्रोता सभी देखें, आज हमनी के ऐसा बात पर विचार करे जा रहल बनी जा जो उनकी सीधे हमनी के दिल आ घर से जुड़ल बाटे। हमनी के अपने बच्चन के बेहतर और बेतहाशा प्यार करे ल जाए, उनके खातिर के दिन रात एक कर दे जाए, जी तोड़ करके मेहनत करे ल जाए ताकि उनका के दुनिया के हर खुशी हर आराम दे सकी जाए। बढ़िया से बढ़िया स्कूल, महंगा खिलौना, बढ़िया कपड़ा दे ल जाए। लेकिन श्रोता सभी कब शांत दिमाग से बैठ करके सोची जाए कि खाली बाहरी सुख सुविधा से हमनी के बच्चन एगो बेहतर इंसान बन सकता न, एकदम नहीं। असल में जैसन कौनो पेड़ का जौन बड़ मजबूत अगर बनावे के बाटे तो खाली उनकर पतई पर पानी छिड़कला से नहीं होखी, बल्कि उनका के जौन पेड़ बाटे वह जड़ में खाद पानी डाले के पड़ी। ठीक वही तरीके से श्रोता सभे हमने के जौन बच्चन के जीवन महकावे खातिर के उनका के अच्छा संस्कार का खाद पानी देवे के पड़ी। आजकल देखें कि भाग दौड़ जिंदगी में हमने के अपने बच्चन के अच्छा से अच्छा सुख सुविधा दे देत बनी जा, लेकिन कई बार जाने अनजाने में उनका के संस्कार देहल भूला जात बनी जा। हमने के ई समझे के होखे श्रोता से भी कि बच्चा कच्चा घड़ा के तरह होखे ना, जैसन हमने के ढालल जाई

वैसा ही वो बनी है। ऐसे बच्चन में अच्छा संस्कार डाले खातिर के हमनी के सजग यानी कि अलर्ट रहल बहुत जरूरी बा। संस्कार का मतलब श्रोता सभी बहुत भारी भरकम किताब वो सब नहीं होके के चाहिए। संस्कार का सीधा मतलब ये बा कि बढ़ के आदर करना, सच बोले के चाहिए, दूसरा के मदद करे के चाहिए, सही गलत में फर्क समझावे के चाहिए। आज के दौर में जब मोबाइल हो गए, इंटरनेट का जमाना हो गए, बच्चा के ये सब घेर के रखले बाटे, हमनी की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाला। यह समय में अगर हमनी के शुरुआत से ही ध्यान नहीं दहल जाई तो सोच लें कि हमनी के बच्चा हाथ से निकल सकत बना। सजग रहेगा शुरुआत सबसे पहले अपने घर अपने व्यवहार से होखेला। श्रोता सभे बच्चा ऊ नहीं सीख पावे ना जोन हमनी के सिखावी लन जाए, बल्कि उहे सीखे ना जोन हमनी के करत देखेला। अगर हमनी के खुद घरे का अपने सम्मान कैल जाए, अपने लोगन के बड़ जेठ के सम्मान मादर आदर मान सम्मान कैल जाए, शांति से घर में बातचीत कैल जाए, झूठ का प्रयोग तनिको नहीं कैल जाए, तो बच्चा बिना कहले इस सब सीख जाए हम। यानी कि बच्चन के संस्कारी बनावे से पहले हमनी के खुद अपने एक रोल मॉडल के रूप में हमनी के अच्छा उदाहरण बने के पड़ी। एकरे साथे साथे हमनी के बच्चन के समय भी देवे के पड़ी। आजकल देखा तानी जा कि हमनी के जोन माई बाप बना बड़ बुजुर्ग बना इतना व्यस्त हो गए बना कि बच्चन के हाथ में मोबाइल थमा करके आ इहे सोचत बना कि मने बच्चा हमनी के पढ़ाई कर रहल बाटे। ना ही उनके साथे बैठे के होखी, उनकर देखे के होखी कि का पढ़ताना का देखताना, उनका के मने हर तरह के पंचतंत्र का कहानी सुनाई, महापुरुष के छोट छोट कहानी सुना करके उनकरा के हर चीज का समाधान कर सकतानी। शंका के जौन भी उनकरा दिक्कत परेशानी बाटे ओह पर हमनी के उनकर ध्यान देवे के चाहिए। एह तरीके से हम अपने बच्चन के आगे बढ़ा सकतानी, संस्कार दे सकत बानी जा। श्रोता सभी एकरे अलावा हमनी के ओ माहौल में ढले के होखी जेकर कि हमनी के बहुत बड़ हिस्सा बनी जाए। यह बात पर नज़र रखे के होखी कि बच्चा मोबाइल या टीवी पर का देखत बाटे, उनकर दोस्त कैसन बाटे, आ जासूसी तो नहीं खन करत, बल्कि उनकर दोस्त एगो हमनी के बने के पड़ी, हमनी के समझे के पड़ी कि वह बच्चा के का जरूरत बाटे, आज के समय में वो कैसे रही तो अच्छा माहौल में पल बढ़ सकत बाटे, जानकारी ले सकत बाटे। श्रोता सभे अब थोड़ा सा हमनी के आज के मौसम के पूर्वानुमान पर देखी। मौसम विभाग पूर्वानुमान के अनुसार 17 जून तक जिला के एक दो स्थान पर हल्का बरखा, मध्यम बरखा, हल्का गरज के साथ बिजली चमके आ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से तेज हवा चले के संभावना बाटे। आंधी बिजली तेज हवा के बहाव से फसल गिरे के भी आशंका बाटे आ किसान के खेत के कार्य जोन बाटे अभी स्थगित करे से फसल आ पशुओं के सुरक्षित रखे के भी सलाह दिहल जा रहल बाटे। आ एकरे अलावा देखें आगामी दिन में बरखा के संभावना के देख करके खेत में कटल फसल के सुरक्षित स्थान पर ओकरा के ढाँक करके रख दी, खड़ा फसल में सिंचाई स्थगित कर दी आ खाद कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहला पर ही करी। श्रोता सभी देखिए अगर हमनी के खरीफ फसल जोन बाटे प्याज के खेती खातिर के नर्सरी एकदम अभी से तैयारी कर ली, स्वस्थ पौधा खातिर के नर्सरी का जोन भी गोबर बाटे नर्सरी में डाले खातिर के गोबर का खाद अवश्य डाली। खरीफ प्याज खातिर के N53 एग्री फाउंड डार्क रेड चाहे अर्का कल्याण जोन बाटे चाहे भीमा सुपर बाटे ये बहुत बढ़िया किस्म अनुशंसित हुए। प्याज के बीज के व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से करी, बीज गिरवला के बाद पहले बीजोपचार कर ले बहुत जरूरी बाटे। बीज के दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के अनुमान से रखें। और देखिए अब हमने के यही के साथ समय भी अब इजाज़त दे रहा बा बोले खातिर के कि अब मनखे बोले के तो अब हमने के छुट्टी दही इजाजत दही जा। यह कार्यक्रम के गांव घर कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही संतोष कुमार। यही के साथ हमने के गांव घर कार्यक्रम का समय एकदम अब खत्म हो गई। चलत चलत सभी श्रोता लोगन के रनिया बहन का नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे हमारे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103.4 MHz पर। प्रस्तुत है भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझे गीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कल्पना पटवारी और उदित नारायण की आवाज़ में। विनय बिहारी के बोल हैं, राजेश रजनीश का संगीत है और फिल्म का नाम है प्रतिज्ञा।

प्रस्तुत है भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझे गीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कल्पना पटवारी और उदित नारायण की आवाज में। विनय बिहारी के बोल हैं, राजेश रजनीश का संगीत है और फिल्म का नाम है प्रतिज्ञा।

उषा मंगेशकर के गाए इसी गीत के साथ ही सांझ गीत कार्यक्रम अब यहीं पे संपन्न होता है। हमारा अगला प्रसारण अब से बस कुछ ही पलों में।

0: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103.4 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7 बज चुके हैं। अब लीजिए सुनिए हमारा प्रायोजित कार्यक्रम ममता का आंचल।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रद्धा IVF भिकना पहाड़ी पटना 4।
2: नमस्कार, राजेश बोल रहा हूँ। जी हाँ, रविवार में दूसरी दफा आपसे आज मिल रहे हैं और कार्यक्रम है ममता का आंचल। आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, यानी वैसे दंपत्ति के लिए जिनके शादी के 2-3-4 साल हो गए, बच्चा नहीं है, उनके लिए ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं कि उन्हें बच्चा किसी बीमारी के कारण से नहीं हो पा रहा है, बहुत मुश्किल नहीं है अगर वो विशेष

0: विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलें। हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं श्रद्धा आईवीएफ एंड मैटरनिटी की तरफ से, और डॉक्टर श्रद्धा होती हैं हमारे साथ, जिनका नंबर हम सबसे पहले बताते हैं और कहते हैं, आग्रह करते हैं कि कोई जो समस्या है तो आप जरूर बात कर लें। 9162562266 9162562266। ममता का आंचल, एक ऐसा मंच जहां हम सिर्फ बीमारियों की नहीं बल्कि भावनाओं की बात करते हैं। हमने जैसा कि अभी कहा कि हमारे साथ स्टूडियो के अंदर बैठी हैं बिहार की जानी मानी आईवी विशेषज्ञ डॉक्टर श्रद्धा चकियान। डॉक्टर श्रद्धा, ममता का आंचल के आज के यानी रविवार के दूसरे अंक में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार श्रोताओं, नमस्कार राजेश जी।
0: डॉक्टर श्रद्धा, जून का महीना पूरी दुनिया में वर्ल्ड इनफर्टिलिटी अवेयरनेस मंथ यानी कि विश्व निसंतानता जागरूकता महीना के रूप में मनाया जाता है, इसे क्यों मनाते हैं और आपके लिए ये क्या मायने रखता है?
1: मुझे बहुत खुशी है कि रेडियो के माध्यम से हम अपनी आवाज हर आखिरी व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं और ये उनको बताना चाह रहे हैं कि विश्व निसंतानता दिवस मनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि विश्व में हर, और WHO का भी यही स्टडी है, हाँ, कि वर्ल्ड में हर 6 में से एक दंपति निसंतानता से जूझ रहे हैं
0: जी।
1: फिर भी लोग इस विषय पे बात करने से हिचकिचाते हैं। यह महीना उन सभी लोगों को बताने के लिए है कि आप अकेले नहीं हैं, हाँ, और निसंतानता सिर्फ और सिर्फ एक बीमारी है
0: जी।
1: मैं ये भी बताना चाहती हूँ निसंतानता क्या होती है। निसंतानता कहते हैं वैसे दंपति को जो पिछले एक साल से कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं बच्चे का
0: जी,
1: और उनको नहीं ठहर पा रहा है, तो वैसे दंपति को निसंतान दंपति कहा जाता है। अब उनको जरूरत है किसी भी डॉक्टर से मिलें और अपना प्रारंभिक जांच कराना शुरू करें
0: जी,
1: ताकि क्या बीमारी है पकड़ा जाए और इलाज से उनको बच्चा ठहर जाए। लेकिन अगर 2 साल हो गए और अभी तक बच्चा नहीं ठहर पाया है तो जरूरी है आपको निसंतान रोग विशेषज्ञ से मिलकर इलाज कराने के लिए, क्योंकि वो आपकी बीमारी बेहतर समझते हैं। अगर आपको 2 साल में छोटे मोटे इलाज से बच्चा नहीं ठहर पा रहा है तो आपको जल्दी ही निसंतान रोग विशेषज्ञ से इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि अगला 2-3 साल बहुत क्रूशियल होता है जिसमें बच्चा ठहरने का संभावना सबसे ज्यादा होता है
0: जी।
1: अगर आप वो शुरू का 2 साल के बाद का जो अगला 2-3 साल अगर आप इधर उधर वेस्ट करते हैं तो आपको अपने से बच्चा ठहरने का और वैज्ञानिक रूप से भी बच्चा ठहरने का चांस कम हो जाता है
0: जी, जी, जी।
1: इसलिए जरूरत है कि अगर 2 साल में बच्चा नहीं ठहरा आपको इलाज से, तो निसंतान रोग विशेषज्ञ के पास जाएं और इलाज करवाएं ताकि आपको जल्दी बच्चा ठहर जाए।
0: तो ये बात बहुत जरूरी है कि डॉक्टर से समय पर मिलना। अब उनके लिए जो पहले से ही ये कदम उठा चुके हैं डॉक्टर श्रद्धा, जो इलाज करवा रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगी आप?
1: मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं जो कहते हैं मैडम हम इतने साल से इलाज करा रहे हैं और अब हम थक चुके हैं
0: जी।
1: श्रद्धा IVF और मैं भी मानती हूँ उनका बात बिल्कुल सही है,
0: हाँ,
1: क्योंकि सच में वो थक जाते होंगे क्योंकि निसंतानता के इलाज में बार बार जो टेस्ट करवाना पड़ता है, हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ता है, दवाइयाँ इंजेक्शंस ये सब पड़ता है, रिपोर्ट का लोग इंतजार करते हैं और फिर बाद में आता है रिपोर्ट नेगेटिव। इन सभी को जूझना, इन सभी को का सामना करना
0: हाँ,
1: आसान बात नहीं है।
0: सही।
1: इनफैक्ट निसंतानता के इलाज के लिए जो लोग अपना इलाज करा रहे हैं उसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। हिम्मत इसलिए जरूरत होती है क्योंकि इतना नेगेटिविटी होता है, इतना वो लोग डिप्रेशन से भी जूझ रहे होते हैं, कुछ लोग एंग्जाइटी से जूझ रहे होते हैं और ये मेडिकली प्रूवन है क्योंकि इलाज बहुत ज्यादा मानसिक तौर से उन लोग को वो करते थका देता है। लेकिन इसमें मैं यही कहूंगी कि जहाँ चाह है वहाँ राह जरूर है, तो जरूरत है कि पति पत्नी दोनों एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, घर के जितने बुजुर्ग हैं और बाकी लोग भी सपोर्ट करें
0: जी।
1: अगर सबका साथ होगा तो ये जो प्रयास है और उनका जो सफर है

0: जरूर आसान होगा और उन्हें जरूर सफलता मिलेगी और जरूर संतान सुख प्राप्त होगा।
1: जरूर संतान सुख प्राप्त होगा। और आपने घर परिवार की बात कही, हम एक बात कह लें अगर आपकी इजाजत हो तो।
0: बिल्कुल।
1: हमारे घर में बड़े बुजुर्गों का बहुत ही सम्मान है और ऐसे में बड़े बुजुर्ग को सामने आना चाहिए, चुप नहीं बैठना चाहिए, अपने बच्चों को परामर्श दें। अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मानसिक सुकून दें हाँ दंपति को कि हो जाएगा, ये एक बीमारी है और इसका इलाज संभव है। और जैसा कि डॉक्टर श्रद्धा ने कहा कि आप विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलिए, और एक विशेषज्ञ डॉक्टर जो हमारे साथ बैठी है उनका नंबर हम आपको शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं, जरूर लिख लें। और वैसे कपल तक इसे पास भी करें, आगे भी बढ़ाएं जिनके साथ ये समस्या है। नंबर है 9162562266, 9162562266, ये नंबर है। ये ममता का आंचल, जी हाँ ममता का आंचल कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं श्रद्धा आईवीएफ एंड मैटरनिटी की तरफ से। अपने राज्य में राष्ट्रीय स्तर का ये आईवीएफ सेंटर है। अपनापन, अपने परिवार की तरह आप जरूर बात करें डॉक्टर श्रद्धा का जो नंबर हमने दिया। और एक बात जानकारी आपको देना चाहेंगे, बहुत सारे लोग पैसे के नाम पर या इलाज बहुत महंगा होगा पीछे हट जाते हैं, आप आगे बढ़िए, श्रद्धा आईवीएफ आपके साथ खड़ा है। और वो इस तरह इलाज में जो पैसे लगते हैं ना, वो अब आप ईएमआई यानी टुकड़ों में दे सकते हैं, वो भी 24 टुकड़ों में। पहले डॉक्टर के पास आइए तो बात तो कीजिए, रास्ता सब निकल जाएगा। और बड़े बुजुर्गों इसमें आपका रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए एक बार फिर से चलते हैं डॉक्टर श्रद्धा के पास। डॉक्टर श्रद्धा, एक बहुत फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन, जब सारे रिपोर्ट नॉर्मल है फिर भी गर्भ नहीं ठहरता, ऐसे लोगों से क्या कहेंगे आप?
0: देखिए इस कंडीशन, ये काफी कॉमन कंडीशन है, इसको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं।
1: जी।
0: बहुत से दंपति ऐसे आते हैं मेरे पास और बोलते हैं कि हमारा, हमने जितना भी इलाज कराया, जितना भी जांच कराया, सारे जांच में मेरा और मेरे पति का रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है,
1: हाँ।
0: फिर भी बच्चा नहीं ठहर रहा है।
1: हाँ।
0: तो मैं ये समझाती हूँ, अगर आपने 2 साल प्रयास कर लिया और बच्चा नहीं ठहरा है, मतलब दिक्कत है,
1: कहीं कुछ गड़बड़
0: है, कहीं कुछ गड़बड़ है। देखिए साइंस प्रोग्रेसिव है, यानी कि अभी तक जितना जांच हो पाया उसमें सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी भी बीमारी है जहां अभी तक विज्ञान नहीं पहुंचा है
1: जी।
0: और अगर जिस दिन उसका आविष्कार होगा तो बीमारी पता चलेगी, लेकिन अभी तक वहां पे वो सारे जांच नहीं आ पाए हैं जिससे ये पता चले कि औरत के अंडे का गुणवत्ता कैसा है,
1: हाँ।
0: पुरुष के शुक्राणु में जेनेटिक कितना प्रॉब्लम है, बच्चेदानी में कितना दिक्कत है, वो सारा चीज नहीं पता चल पाता है। इसलिए जो शुरुआती जांच है उसमें सब कुछ ठीक है, लेकिन जो डीपर चीज है
1: जी।
0: अगर वो होता तो पता चलता कितना बीमारी। इसलिए बीमारी है, जांच सब कुछ ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ ठीक है, दिक्कत है। और ये दिक्कत सबसे बेहतर जो आपका समझ पाएंगे वो निसंतान रोग विशेषज्ञ ही समझ पाएंगे।
1: हाँ।
0: मैं ये भी बताना चाहती हूँ, जिस तरह का कैंसर बीमारी किसी को होता है वो सबसे बेहतर कैंसर रोग विशेषज्ञ ही समझ सकते
1: जी,
0: हैं
1: जी।
0: किन्हीं को हड्डी का प्रॉब्लम होता है तो उसका सबसे अच्छा इलाज हड्डी रोग विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। तो जिसको निसंतानता का दिक्कत है, आप सीधा निसंतान रोग विशेषज्ञ से मिलिए, ताकि आपका जो कीमती समय है वो बर्बाद नहीं हो। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी मतलब सब कुछ ठीक है फिर भी बच्चा नहीं ठहर रहा है, वो इसमें भी समझ पाएंगे क्या एक्चुअली दिक्कत है, ताकि सही समय पे वो इलाज कराएं और बच्चा ठहर जाए।
1: लेकिन क्या करें, वो क्या करें, क्या इलाज होगा, आईवीएफ क्या है या और भी कोई प्रोसेस है?
0: बिल्कुल, ये भी जानना जरूरी है निसंतानता का इलाज क्या क्या है। निसंतानता का इलाज सबसे पहले जो हम लोग शुरुआत करते हैं वो करते हैं, और ये सबको जानना जरूरी है
1: जी।
0: कि निसंतानता का जो सबसे पहला इलाज होता है वो लाइफस्टाइल ठीक करने से होता है, यानी कि जीवनचर्या ठीक कीजिए। आप रोज दिन उठिए, व्यायाम कीजिए, घर का साग सब्जी खाइए, फल खाइए। अभी तो प्रकृति ने भी हमें इतना सारा फल दिया है खाने को, स्वादिष्ट फल दिया है, फल खाइए। और टेंशन से दूर रहिए, स्ट्रेस से दूर रहिए। मोबाइल जो लोग स्क्रॉल करते हैं खासकर रात को, वो सब चीज़ बंद कीजिए ताकि आप एक अच्छा नींद सो कर पाए
1: जी।
0: और अगर आप ये मामूली जैसे जिनका वजन ज़्यादा है, वजन कम करें, जो लोग बीड़ी सिगरेट गुटखा लेते हैं वो सब कम करें, अगर आप ये सब चीज़ ही ठीक कर लेते तो बहुत लोग को इन चीज़ों से भी बच्चा ठहर जाता है। लेकिन जिनको इन चीज़ों से नहीं ठहरता है उनको ज़रूरत होता है दवाइयों का बहुत।

0: लोग को दवाइयाँ 70% लोग तो दवाई से ही कंसीव कर जाते हैं, लेकिन जिनको दवाई असर नहीं करता तो अब जरूरत होता है IUI या IVF करने का। IVF एक बहुत ही आधुनिक तरीका है जिससे निसंतान दंपति को बच्चा ठहर जाता है, और अगर आप सही समय पे इलाज करा लेते तो आपका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है आपको बच्चा ठहरने का। आप जितना देर करेंगे आपका सक्सेस रेट भी उम्र के साथ घटता जाएगा।
1: हम एक बात एकदम हम अपनी भाषा में कि बच्चा नहीं है, हाँ कोई परेशानी नहीं है। जैसे हर बीमारी का इलाज आजकल मेडिकल साइंस में आ गया है, तो बच्चा नहीं होने का भी इलाज है, क्योंकि ये बीमारी है, इलाज हो सकता है, और उसमें अंतिम हाँ जो इलाज है वो IVF है, जिससे कि बच्चा हो सकता है। और डॉक्टर साहिबा सक्सेस रेट कितना है इसका?
0: अगर आप 30 के अंदर IVF करा रहे हैं,
1: 30 साल,
0: हाँ 30 साल से नीचे,
1: लड़की का या लड़का का?
0: लड़की का
1: हाँ,
0: तो आपका सक्सेस रेट 60-80%
1: होता है। तो बहुत ज्यादा है हाँ।
0: अगर आप 40-45 के बाद कराते हैं, यानी अगर आप 45 साल जब किसी महिला का हो जाता है और उस समय अगर वो IVF कराती है, यानी कि पिछले 20 साल से वो निसंतानता से जूझ रही है या 25 साल से, और अब अगर IVF कराती है तो उनको बच्चा ठहरने का चांस 20-30% या 40% है, जो कि कम है। इसलिए रेडियो के माध्यम से आज हम जो अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि बचपन बीमारी है, बहुत लोग जूझ रहे हैं इससे, और इसका इलाज संभव है। आपको एक कदम आगे बढ़ाना है, श्रद्धा IVF 4 कदम आगे बढ़ के आपका हाथ थाम लेगा।
1: पहले एक बार नंबर फटाक से बता दें डॉक्टर श्रद्धा का, 9162562266916।
0: इसका भी उम्र के साथ घटता जाएगा,
1: सक्सेस रेट भी उम्र के साथ घटता जाएगा। हम एक बात एकदम हम अपनी भाषा में कि बच्चा नहीं है, हाँ कोई परेशानी नहीं है। जैसे हर बीमारी का इलाज आजकल मेडिकल साइंस में आ गया है, तो बच्चा नहीं होने का भी इलाज है, क्योंकि ये बीमारी है, इलाज हो सकता है, और उसमें अंतिम हाँ जो इलाज है वो IVF है, जिससे कि बच्चा हो सकता है। और डॉक्टर साहिबा सक्सेस रेट कितना है इसका?
0: अगर आप 30 के अंदर IVF करा रहे हैं,
1: 30 साल,
0: हाँ 30 साल से नीचे,
1: लड़की का या लड़का का?
0: लड़की का
1: हाँ,
0: तो आपका सक्सेस रेट 60-80%
1: बहुत है, तो बहुत ज्यादा है हाँ।
0: अगर आप 40-45 के बाद कराते हैं, यानी अगर आप 45 साल जब किसी महिला का हो जाता है और उस समय अगर वो IVF कराती है, यानी कि पिछले 20 साल से वो निसंतानता से जूझ रही है या 25 साल से, और अब अगर IVF कराती है तो उनको बच्चा ठहरने का चांस 20-30% या 40% है, जो कि कम है। इसलिए रेडियो के माध्यम से आज हम जो अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि बचपन बीमारी है, बहुत लोग जूझ रहे हैं इससे, और इसका इलाज संभव है। आपको एक कदम आगे बढ़ाना है, श्रद्धा IVF 4 कदम आगे बढ़ के आपका हाथ थाम लेगा।
1: पहले एक बार नंबर फटाक से बता दें डॉक्टर श्रद्धा का, 9162562266916625622266 ये नंबर है। और एक जो सबसे बड़ी समस्या, अर्थ की समस्या, पैसे की समस्या, वो भी दूर हो चुकी है। एकदम रीजनेबल हाँ खर्च लगता है, और वो भी उस खर्चे को श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी में टुकड़ों में आप दे सकते हैं, इंस्टॉलमेंट पर, जिसको EMI कहते हैं, यानी कि आप एक बार पैसा नहीं देंगे, 24 भागों में बांटकर आप पैसा दे सकते हैं। खुशियां पहले आएंगी, पैसा बाद में भी जा सकता है। इसीलिए अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो IVF का सहारा लीजिए, और IVF बोले तो श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी अपने राज्य में है, राष्ट्रीय स्तर का ये संस्थान है, और इस नंबर पर जरूर फोन करें, सकुचाए नहीं, शर्माए नहीं, 9162562266। जी हाँ, 9162562266। आप रात में, ज्यादा रात में ना करें, लेकिन कभी भी आप फोन कर सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा। ममता का आंचल, आज हम सेलिब्रेट कर रहे थे वर्ल्ड इनफर्टिलिटी अवेयरनेस मंथ। क्या कहेंगे हिंदी में डॉक्टर श्रद्धा, आप भी बोलिए ना।
0: इसको हिंदी में कहेंगे हम लोग विश्व निसंतानता जागरूकता महीना।
1: जी,
0: ये इसलिए मना रहे हैं कि कोई दंपति जो निसंतानता से जूझ रहा है वो अकेला नहीं है,
1: हाँ।
0: बहुत से लोग जूझ रहे हैं, आप खुल के बात कीजिए और सही समय पे सही डॉक्टर से इलाज कराइए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी।

0: आपको सफलता अवश्य मिलेगी, सिर्फ चुप्पी तोड़ने की बात है। चुप्पी तोड़िए, घुटिए मत अपने अंदर, लोग क्या कहेंगे ये भी मत सोचिए। हाँ, दिए गए नंबर पर ये 9162562266 इस पर फोन कर लीजिए, संकोच नहीं, इलाज कराइए। चलिए आज का कार्यक्रम खत्म करते हैं। डॉक्टर श्रद्धा कहते हैं नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्रद्धा IVF, भिकना पहाड़ी, पटना 4।
2: अभी आप सुन रहे थे हमारा प्रायोजित कार्यक्रम ममता का आंचल। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। प्रस्तुत है सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास।

कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त सचिन। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। सासाराम जिला परिवहन कार्यालय द्वारा 13 जून एवं 14 जून रविवार को निजी वाहन चालकों एवं सरकारी वाहन चालकों के लिए मुफ्त ड्राइविंग प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। रोहतास जिला परिवहन विभाग की ओर से आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर में जिले सभी प्रखंडों और पंचायतों से ड्राइवरों को बुलाकर उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। परिवहन विभाग के मोटरवाहन निरीक्षक कौशल कुमार त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि ड्राइवरों को सड़क पर लगने वाले साइनेज के बारे में समझाया जा रहा है। ड्राइविंग के दौरान अगर उन्हें सड़क पर कोई साइनेज बना है तो उसका मतलब क्या है, इसके अलावा सड़क दुर्घटना में अगर कोई घायल है तो उसकी सूचना अगर हो सके तो अस्पताल तक घायलों को पहुंचाने में मदद करें, यह बातें प्रशिक्षण के दौरान बताई जा रही है। इसके अलावा उन्हें 200 रुपये की प्रोत्साहन राशि के रूप में भी दिया जाएगा। इसके अलावा ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र भी ड्राइवरों को दिया जाएगा। यह शिविर दुर्गा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल मलवार गेट पुराना टोल प्लाजा के पास जीटी रोड सासाराम में सुबह 11 बजे से शुरू होगा।

माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के दिनांक 16 जून 2026 को प्रस्तावित कैमूर जिला भ्रमण कार्यक्रम के सफल एवं सुरक्षित संचालन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा व्यापक यातायात प्रबंधन एवं पार्किंग की व्यवस्था लागू की गई है। कार्यक्रम के दौरान संभावित भीड़ एवं यातायात दबाव को देखते हुए आमजन की सुविधा तथा विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु 15 जून 2026 को अपराह्न 2 बजे से 16 जून 2026 को कार्यक्रम समाप्ति के 2 घंटे बाद तक विशेष यातायात व्यवस्था प्रभावी रहेगी। वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था कार्यक्रम स्थल की ओर से आने जाने वाले एवं मालवाहक वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं ताकि सामान्य यातायात सुचारू रूप से संचालित हो सके। भभुआ से भगवानपुर अधौरा मार्ग की ओर जाने वाले बड़े एवं मालवाहक विमान पूर्व पोखरा चौक से नहर मार्ग होकर अधौरा की ओर जाएंगी।

छात्रों को विज्ञान नवाचार के क्षेत्र में कैमूर में मिलेगा सम्मान। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए कैमूर जिले में 31 जुलाई तक होगा रजिस्ट्रेशन, जिसमें कि 5 साल से 18 साल की उम्र के बच्चे पात्र होंगे।

कल यानी कि शारदीय खरीफ कृषि जन कल्याण चौपाल स खेत बचाओ अभियान 2026 के तहत भगवानपुर प्रखंड के पढ़ौती पंचायत के मधेश्वर तथा कसेर पंचायत के जलबार गांव में कृषि चौपाल लगा, जहां की बड़ी संख्या में किसान जुटे और आधुनिक वैज्ञानिक खेती की जानकारी ली। चौपाल में कृषि वैज्ञानिक मनीष कुमार एवं डॉक्टर नीरज कुमार चौधरी ने किसानों को खरीफ फसलों की वैज्ञानिक खेती, उन्नत बीजों के चयन, संतुलित उर्वरक, कीट प्रबंधन तथा बेहतर उत्पादन तक तकनीकों की विस्तार से जानकारी दी।

कैमूर में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना एवं मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के मद्देनज़र कार्यशाला का आयोजन आज लक्ष्मी भवन भभुआ में होगा। भारत सरकार के कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना तथा मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं व्यापक प्रचार प्रसार के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में एक गीत।

श्रोताओं, इस गीत को सुनने के बाद आपको सीधे लिए चलेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। इसके ठीक बाद जिले की हलचल।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दीप्ति रमन से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार हुआ। आयुष्मान योजना से करोड़ों लोगों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिल रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार के पर्यटन को वैश्विक मानचित्र पर दिलाई जाएगी नई पहचान। प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा का पहला चरण आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सम्पन्न। और बिहार के महाधिवक्ता पीके शाही ने अपने पद से दिया इस्तीफा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य

0: मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुंच रही है। श्री नड्डा ने कहा कि देश में एम्स की संख्या आज 23 हो गई है। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बीमारी के कारण किसी परिवार पर आर्थिक बोझ न पड़े। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से करोड़ों लोगों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिल रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन और जन कल्याण का नया इतिहास रचा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की सबसे बड़ी ताकत जनता का अटूट विश्वास और सेवा भाव है, जिसके बल पर देश आज आत्मनिर्भर और विकसित भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
1: आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में जितने काम हुए हैं और गांव गरीब के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अपने आप में पूरे देश और दुनिया में बेमिसाल है। विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए उन्होंने राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और विशेष करके गरीबों का कल्याण, किसान की खुशहाली, युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सशक्तिकरण और इस तरह के बहुत से ऐसे काम किए जो अपने आप में उनके कार्यकाल का बेमिसाल नमूना है।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार को पर्यटन के वैश्विक मानचित्र पर स्थापित करने के लिए पर्यटन अवसंरचना को सुदृढ़ बनाया जाएगा। श्री चौधरी आज पटना में पर्यटन विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे थे। बैठक में राजगीर, गया और नालंदा सहित प्रमुख पर्यटन स्थलों पर चल रही परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए गए। बैठक में राजगीर, मां मुंडेश्वरी मंदिर और कर्कटगढ़ जलप्रपात के लिए हेलीकॉप्टर सेवा तथा वाल्मीकि नगर के लिए रियायती वायु सेवा शीघ्र शुरू करने को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजगीर को वैश्विक आध्यात्मिक शिक्षा केंद्र और नालंदा को वैश्विक ज्ञान एवं सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ग्रामीण पर्यटन पहल शुरू की जाएगी। उन्होंने विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने तथा पर्यटकों के लिए पटना से गंतव्य तक सुविधा उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। प्रदेश के सभी जिलों में स्थित केंद्रों पर आज मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल और चलन दस्ता सिपाही भर्ती के लिए पहले चरण की लिखित परीक्षा 2 पालियों में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। इन पदों पर बहाली के लिए दूसरे चरण की लिखित परीक्षा 17 जून को होगी। केंद्रीय सिपाही चयन परिषद के अनुसार इस परीक्षा के माध्यम से 4,200 से अधिक पदों पर बहाली होगी। इधर परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों ने पर्याप्त ट्रेन सेवाएं उपलब्ध नहीं होने का आरोप लगाते हुए पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। नाराज छात्रों ने स्टेशन परिसर में तोड़फोड़ और पथराव किया। पटना के पुलिस महानिरीक्षक जितेंद्र राणा ने बताया कि पुलिस के हस्तक्षेप से हंगामे को काबू में कर ट्रेनों का परिचालन सामान्य किया गया।
2: अभ्यर्थी कुछ असामाजिक तत्व से जो ट्रेन को खुलने नहीं दे रहे थे, पुलिस के द्वारा उनको समझाने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा पथराव इत्यादि किया गया। जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है उन सभी का वीडियो फुटेज, फोटोज इत्यादि हमारे पास उपलब्ध है। प्राथमिकी रेल थाना के द्वारा दर्ज करके उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
0: इधर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने तोड़फोड़ की कार्रवाई को अनुचित बताते हुए कहा कि सरकार इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी।
3: हम ये बात समझते हैं कि ये छात्रों का काम नहीं है, इसमें जरूर असामाजिक तत्वों का हाथ होगा और असामाजिक तत्वों की वजह से इस तरह का कृत्य हुआ है। इसकी सरकार जांच कराएगी और जांच कराने के बाद जो लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
0: वहीं राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने आरोप लगाया है कि रेल प्रशासन और सरकार की ओर से परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा स्थल तक पहुंचने की कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई थी।
4: इस घटना की जांच होनी चाहिए। अराजक स्थिति कैसे उत्पन्न हुई, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। ये सरकार का, रेलवे प्रशासन का फेल्यूर है।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना स्थित विद्युत भवन में ऊर्जा विभाग की 1,278 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री चौधरी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1,512 करोड़ रुपए की लागत से 2.5 लाख कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के घरों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के कार्य का भी शुभारंभ किया। इधर मुख्यमंत्री ने खरीफ महाअभियान 2000

26 के तहत किसान जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस वाहन के माध्यम से राज्य के विभिन्न जिलों के किसानों को खरीफ फसलों की उन्नत खेती, आधुनिक कृषि तकनीकों तथा सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गया जी जिले के खीजरसराय में एक नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। यह केंद्र 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: AIR at 90.
1: आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। बिहार के महाधिवक्ता पीके शाही ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे के साथ ही राज्य का सर्वोच्च कानूनी पद रिक्त हो गया है। हालांकि इस्तीफे के कारण की अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। पीके शाही बिहार की राजनीति और विधि जगत का एक जाना पहचाना नाम है। वे सरकार में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। महाधिवक्ता के रूप में उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में बिहार सरकार का प्रभावी ढंग से पक्ष रखा और सरकार के प्रमुख कानूनी सलाहकार की भूमिका निभाई। तत्कालीन महाधिवक्ता ललित किशोर के इस्तीफे के बाद पीके शाही को 16 जनवरी 2023 को बिहार का महाधिवक्ता नियुक्त किया गया था। उल्लेखनीय है कि महाधिवक्ता राज्य सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, जो सरकार को कानूनी सलाह देने के साथ साथ उच्च न्यायालय और अन्य न्यायिक मंचों पर उसका पक्ष रखता है। बिहार के तीन पारंपरिक उत्पादों नालंदा के 52 बूटी साड़ी और फैब्रिक, गया के पत्थरकट्टी स्टोन क्राफ्ट तथा भोजपुर की पीढ़िया पेंटिंग को भौगोलिक संकेतक GI टैग मिला है। इससे इन उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक नई पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राज्य के शिल्पकारों, बुनकरों, कलाकारों और संबंधित संस्थाओं को बधाई दी। श्री चौधरी ने कहा कि यह उपलब्धि बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक कला कौशल और ग्रामीण प्रतिभा को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने वाली है। नालंदा जिले की प्रसिद्ध 52 बूटी बिहार की प्राचीन बुनकरी परंपरा का एक अद्वितीय उदाहरण है। इस विशिष्ट वस्त्र कला में कपड़े पर 52 प्रकार के पारंपरिक बौद्ध एवं सांस्कृतिक प्रतीकों के हथकरघे से बुना जाता है। इस कला में प्राकृतिक रंगों एवं पारंपरिक प्रतीकों के माध्यम से लोक जीवन, पारिवारिक संबंधों, धार्मिक आस्थाओं और ग्रामीण संस्कृतियों का सजीव चित्रण किया जाता है। आज विश्व रक्तदाता दिवस है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने इस अवसर पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। उन्होंने रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस की थीम है, मानवता की एक बूंद, रक्तदान करें, जीवन बचाएं। इस अवसर पर पटना सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में जिला प्रशासन के अधिकारियों, स्वास्थ्य कर्मियों और आम लोगों ने रक्तदान किया। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि यह उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की।

0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। बिहार इंटरवेंशनल काउंसिल 2026 के चौथे वार्षिक सम्मेलन का आज पटना में आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हृदय रोगों के आधुनिक उपचार, नई तकनीकों और जटिल मामलों के प्रबंधन पर विशेषज्ञों ने अपने अनुभव साझा किए। वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर बीबी भारती ने कहा कि मोटापा, तनाव और शारीरिक गतिविधियों में कमी के कारण हृदय रोगों के मामले बढ़ रहे हैं।
1: जो रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक का वो बढ़ रहा है, उसमें कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन नए रिस्क फैक्टर में जैसे कि ओबेसिटी, पॉल्यूशन, स्ट्रेस, लाइफ स्टाइल, इसके अलावा जो फिक्स एजिंग है, इसके अलावा स्मोकिंग है, लिपिड है, जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हाइपरटेंशन, ये सब सारी बातें जो एक्चुअली एजुकेशन का अभाव है भारतीय लोगों में। समझना पड़ेगा किस चीज के कारण हार्ट अटैक होता है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए।
0: असम के जोरहाट एयरबेस में विमान हादसे में शहीद हुए बिहार के दो वीर सपूतों फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार

0: लिपिड है जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हाइपरटेंशन है, ये सब सारी बातें जो एक्चुअली एजुकेशन का अभाव है भारतीय लोगों में, समझना पड़ेगा किस चीज के कारण हार्ट अटैक होता है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए।
1: असम के जोरहाट एयरबेस में विमान हादसे में शहीद हुए बिहार के दो वीर सपूतों फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार और अग्निवीर दानिश आलम का पार्थिव शरीर आज पटना के बिहटा एयरफोर्स स्टेशन पहुंचा। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की ओर से दोनों शहीदों को सैन्य सम्मान दिया गया। श्रद्धांजलि के बाद अग्निवीर दानिश आलम का पार्थिव शरीर भोजपुर जिला और फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार का पार्थिव शरीर जहानाबाद जिले के लिए रवाना कर दिया गया। प्रदेश में मॉनसून की उत्तरी सीमा अभी मुजफ्फरपुर से होकर गुजर रही है। मॉनसून के प्रभाव से कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और आसपास के जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना है। इस दौरान वज्रपात के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है।
2: दिनांक 15 जून राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
1: नालंदा जिले के छबीलापुर थाना क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज के पास आज हुए भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत घटनास्थल पर हो गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। रोहतास पुलिस ने फ्लिपकार्ट के महंगे सामानों की हेराफेरी कर ठगी करने वाले अंतर जिला गिरोह के 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं जिले के कोचस बाजार में एक्सिस बैंक के एटीएम को तोड़कर नकदी चोरी के मामले में पुलिस ने घटना में इस्तेमाल वाहन को मोहनिया से बरामद कर लिया है। एसडीपीओ संजीव कुमार ने बताया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार हुआ। आयुष्मान योजना से करोड़ों लोगों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिल रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार के पर्यटन को वैश्विक मानचित्र पर दिलाई जाएगी नई पहचान। प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा का पहला चरण आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सम्पन्न। और बिहार के महाधिवक्ता पीके शाही ने अपने पद से दिया इस्तीफा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।

0: AIR at 90.
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी बादल छाए रहने और रुक रुक कर बारिश होने की संभावना बनी हुई है। इधर जिले में संभावित बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति से निपटने की तैयारी को लेकर प्रभारी सचिव मोहम्मद सोहेल की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला पदाधिकारी विनोद तुहन, पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार तथा विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में बताया गया कि जिले की 72 पंचायतें पूर्ण रूप से तथा 60 पंचायतें आंशिक रूप से बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में आती हैं। बैठक के दौरान 15 जून तक तटबंधों की मरम्मत कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिले में 165 नावें, 10 मोटरबोट, 40,790 पॉलिथीन शीट्स, 135 लाइफ जैकेट सहित अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त 397 सामुदायिक रसोई केंद्र तथा 363 राहत शिविर भी चिन्हित किए गए हैं। प्रभारी सचिव ने सभी अंचलाधिकारियों को बाढ़ संभावित क्षेत्रों का नियमित निरीक्षण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। बीते दिनों मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना से सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के बैंक खातों में पेंशन राशि का डीबीटी के माध्यम से अंतरण किया। अररिया जिले में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत कुल 2,59,648 लाभुकों के खातों में 30,34,00,000 रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी गई। इस अवसर पर अररिया समाहरणालय स्थित एनआईसी सभागार में भी जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिससे विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभुकों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक माह की 10वीं तारीख को पेंशन की राशि लाभुकों के खातों में अंतरित की जाएगी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार 1 जून 2026 से अररिया जिले के सभी प्रखंडों और पंचायतों में राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अभियान का उद्देश्य किसानों को मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, संतुलित उर्वरक उपयोग, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना, टिकाऊ और लाभकारी कृषि पद्धतियों के प्रति जागरूक बनाना है। इस अवसर पर जिला कृषि पदाधिकारी सह आत्मा परियोजना निदेशक गौरव प्रताप सिंह ने कहा कि कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति को सुरक्षित रखना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने किसानों को वैज्ञानिक खेती अपनाने, मिट्टी के परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का उपयोग करने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत जिले में 75 वर्ष या उससे अधिक पुरानी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की हस्तलिखित पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण कार्य जारी है। इस अभियान के तहत अब तक जिले में कुल 176 पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। जिला प्रशासन द्वारा आम नागरिकों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, पुस्तक प्रेमियों तथा निजी संग्रहकर्ताओं से अपील की गई है कि यदि उनके पास ताड़पत्र, कागज अथवा ताम्रपत्र पर लिखी गई 75 वर्ष या उससे अधिक पुरानी पांडुलिपियां उपलब्ध हैं जिनका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, साहित्यिक या सामाजिक महत्व हो तो वे इसकी जानकारी जिला प्रशासन को उपलब्ध कराएं। जिला एवं कला संस्कृति पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि इस अभियान के तहत किसी भी संग्रहकर्ता से मूल पांडुलिपि नहीं ली जाएगी, केवल पांडुलिपियों का फोटोग्राफ और आवश्यक विवरण ज्ञान भारतम ऐप पर अपलोड किया जाएगा, जिससे उनका डिजिटल अभिलेख तैयार किया जा सके। जिले के सभी प्रखंडों में आगामी 17 और 18 जून 2026 को 2 दिवसीय प्रखंड सहयोग सह जन कल्याण शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक समयबद्ध और पारदर्शी की तरीके से पहुंचना है। इस विशेष अभियान के दौरान विभिन्न योजनाओं से संबंधित आवेदन, निबंधन, दस्तावेजों का सत्यापन, ई-केवाईसी प्रक्रिया, लंबित मामलों का निष्पादन तथा स्वीकृत लाभों का त्वरित वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। शिविर में आम जनता को एक ही स्थान पर सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों को कार्यालयों में अनावश्यक चक्कर नहीं लगाने पड़े। शिविर में सुचारू और प्रभावी संचालन के लिए प्रत्येक प्रखंड में संबंधित पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। जिला पदाधिकारी विनोद दुहन और पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार की संयुक्त अगुवाई में अररिया और जीरो माइल स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि, सड़क किनारे सुरक्षा क्षेत्र तथा राइट ऑफ वे पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया। जिला पदाधिकारी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के आलोक में जिले से होकर गुजरने वाली सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को चरणबद्ध तरीके से अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा।
1: अभी आप सुन रहे थे अररिया जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता गौतम सिंह सहगल।

0: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब प्रस्तुत है अररिया जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता गौतम सिंह सहगल।
1: अररिया जिले में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। रुक रुक कर हो रही बारिश से जहां मौसम में ठंडक बनी हुई है, वहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। बारिश के चलते खेतों में नमी बढ़ गई है, जिससे किसानों के चेहरों पर खुशी देखी जा रही है। विशेषकर धान की रुपाई और अन्य खरीफ फसलों की तैयारी के लिए यह बारिश लाभकारी साबित हो रही है। हालांकि लगातार बारिश के कारण कुछ इलाकों में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी

अभी आप सुन रहे थे पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार एवं जिले की हलचल। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है आपके ईमेल पर।

कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम और अलका याग्निक की आवाज़ों में। समीर के बोल हैं, नदीम शरवण का संगीत है और फिल्म का नाम है साजन। इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश भेजी है आप हैं ओम रेडियो श्रोता संघ कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से, नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और साई गायकवाड़।

और आप हमारे श्रोता हैं नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से, मुसरत जहानाज शिक्षिका, तलत जहानाज, परहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया शाहिन नाज और नाजिया नूरी नाज। और आप हमारे श्रोता हैं कलेर बिहार से निखत परवीन, सदफ आरजू और सादिया तस्नीम। तो आपको सुनवा रहे हैं SP बालासुब्रमण्यम और अलका याग्निक की आवाज़ों में साजन फिल्म का ये गीत।

अलका याग्निक और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों में अभी आपने सुना साजन फिल्म का ये गीत, समीर के बोल थे और नदीम शरवण का संगीत था। और अब लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में, वर्मा मलिक के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। और इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश आई है, आप हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा।

और आप हमारे श्रोता हैं ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से कारी रायकारी मीनाकारी पुंजराज आरती आकर्षण और जयश्री।

लता मंगेशकर की आवाज़ में भी आपने सुना फिल्म में रोटी कपड़ा और मकान का ये गीत। वर्मा मल्लिक के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। और अब लीजिए सुनिए किशोर कुमार की आवाज़ में डॉन फिल्म का ये गीत। अनजान के बोल हैं और कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश आई है, आप हैं टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से अशोक कुमार, माफ़ कीजिएगा, अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, चीनू आसमा, दीपक श्याम कुंवर और अनुश्री श्याम कुंवर।

और आप हमारे श्रोता हैं पद्मा टाकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्वनी शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। और आप हमारे श्रोता हैं कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजया लक्ष्मी सावनकर और राजेश राकेश ऋषिता।

चकाचक हिरलो पान चबाए। आहा, और

किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आपने डॉन फिल्म का ये गीत सुना। अनजान के बोल थे और कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की एवं साथियों की आवाज़ों में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश आई है। आप हैं पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी संवाद से। मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खन्नी, मोहम्मद अल्तमस खन्नी, रमेश गोड़ और मोहम्मद सद्दाब खन्नी। जामा मस्जिद रोड गोगवा से आप हमारे श्रोता हैं हाजी इसहाक लोलामानी, मोहम्मद उमर कासमी और हाजी अयूब शेरी। और आप हमारे श्रोता हैं व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष। आप हमारे श्रोता हैं रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवल।

उठता है नेहरू पार्क निजामाबाद तेलंगाना से अजीज भाई मतीन भाई शेख चांद भाई शेख माफ़ कीजिएगा चांद फारूक फूलवाले, और आप हैं सैयद खलील मुमीन भाई, और आप हैं एमडी यासीन।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अंतराल के बाद पुनः आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं और अब लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में कभी कभी फिल्म का ये गीत। इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश आई है गढ़नोखा लालगंज रोहतास से। आप हमारी श्रोता हैं राजकिशोर सिंह बड़क सिंह चौहान। आप हैं ग्राम खरवत गढ़नोखा से मोती माला जी, लाल बिहारी सिंह और बीरा सिंह। और आप हमारे श्रोता हैं गांव नथाना पंजाब से हरछिंदर सिंह छिंदा, जसवीर जसी, सीता और गीता। और आप हमारे श्रोता हैं अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा और जयपाल यादव। और आप हैं गवाया मल्होत्रा।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में अभी आपने सुना कभी कभी फिल्म का ये गीत, और अब लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में सेहरा फिल्म का ये गीत। हसरत जयपुरी के बोल हैं और रामलाल का संगीत है। इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश आई है राजनगर कांति निकेतन से, कुशेश्वर कांति गुप्ता, रुद्र गुप्ता, रिद्धि गुप्ता, संगम बिहार रतिया मार्ग नई दिल्ली से हमारे श्रोता हैं रणधीर गुप्ता, धीरज गुप्ता, परिचय गुप्ता, सत्यम शिवम सुंदरम गुप्ता।

और आप हमारे श्रोता हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुरा कला जिला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में अभी आपने सेहरा फिल्म का ये गीत सुना। हसरत जयपुरी के बोल थे और राम लाल का संगीत था।

और अब लीजिए सुनिए नूरी फिल्म का ये गीत नितिन मुकेश की आवाज़ में, जन निसार अख्तर के बोल हैं और खयाम का संगीत है। इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश आई है दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जमानिया जिला गाजीपुर यूपी से। आप हमारे श्रोता हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल। आप हमारे श्रोता हैं गम्हरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल, आर ए कुमार जायसवाल। आप हमारे श्रोता हैं स्टेशन रोड जमानिया से एसपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल, आशुतोष जायसवाल और अभिनव जायसवाल। और आप हमारे श्रोता हैं पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। और आप हमारे श्रोता हैं गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी और पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी। और आप हमारे श्रोता हैं दतरंगी भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखे लाल वर्मा।

नितिन मुकेश की आवाज़ में अभी आपने सुना नूरी फिल्म का ये गीत। जननिसार अख्तर के बोल थे और खयाम का संगीत था। और कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक की आवाज़ में सलामी फिल्म का ये गीत। सुरेंद्र साथी के बोल हैं, नदीम शर्मन का संगीत है। इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश आई है आप हैं नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। और आप हमारे श्रोता हैं जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्वनी और विपुल कांबड़े। और आप हमारे श्रोता हैं हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीसा परवीन। और आप हमारे श्रोता हैं करणवीर हाउस भूचो कैंचिया भटिंडा पंजाब से परम सिंह जौड़ा, मंजीत कौर जौड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप सिमू एकम, दमन और अभिजोत। और आप हमारे श्रोता हैं गगनदीप थामदी, तृप्ता कुमारी थामदी, डॉक्टर प्रियंका थामदी, डॉक्टर प्रशांत थामदी, डॉक्टर प्रियम थांदी और बेबी वामिका।

श्रोताओं, ये है कार्यक्रम का आखिरी गीत। इस गीत को सुनने के बाद आपको सीधे लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलॉस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जॉन नोएल बैरोत और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक

0: सत्र के दौरान भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी को बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा जारी है, जिसमें रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों ही नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तक, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भी शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दुनिया भर के 350 से ज्यादा निवेशक और पूंजीपति भी शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति दे रही हैं और भविष्य को भी आकार दे रही हैं।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
2: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
0: श्री मैक्रों ने भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरों की मौजूदगी की प्रशंसा की और चंद्रयान मिशन सहित भारत की अन्य असाधारण तकनीकी उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है।
3: The world seeks trusted and reliable partners.
4: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
3: And a scale that few can match.
0: विदेश मंत्रालय इस समय संवाददाताओं को द्विपक्षीय बैठक में फैसले पर जानकारी दे रहा है।
5: जो भारत का परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आगे जाते हुए, मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए, हम को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जाना चाहते हैं। और इसके चलते जितना जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा डिजाइन, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके उतना अच्छा है और वो हमारी प्रेफरेंस रहेगी। तो आज की बातचीत में भी रफाल को छोड़ के और भी विषयों पे बातचीत हुई, लेकिन मैं कहूँगा एक तरह से जो अंडरलाइंग थीम था वो यही था कि जिस भी डिफेंस प्लेटफॉर्म की हम बात करें, इस एक बात को हमें बेसिस लेके आगे बढ़ना होगा कि

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। कल सुबह उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य, गहन समुद्र मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन की रुचि का विषय बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर भरोसा बढ़ा है और भारत एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों की जानकारी आपको देंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और लोगों का जीवन आसान किया है। कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों पर आधारित है, जिससे करदाताओं का दायरा और बढ़ा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
4: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है। पहले 17 से ज्यादा टैक्स थे, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट और उन सबको मिला के फिर अभी एक मेन जीएसटी बनाया है सरकार ने।
3: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
5: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
6: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
3: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार कर

0: करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचिरस तालुका में महासवाड़ा पंढरपुर मार्ग पर तालुवांडी के पास हुआ। श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लौट रहे थे, इस दौरान चालक के नियंत्रण खोने से वाहन कुएं में गिर गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट वन का इंजन खराब होने से वो डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिनमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है, जबकि 3 अन्य को बचाने के प्रयास जारी हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इन्हें एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। ब्रिटेन के बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया है। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने बनाए 34 रन। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए योग के लाभ विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया। और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को दिया 171 रन का लक्ष्य। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे दिल्ली से प्रसारित समाचार संध्या। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9 बज चुके हैं। प्रस्तुत है भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। कलाकार हैं केसरी नंदन भगत और साथी।

केसरी नंदन भगत के गाए इसी गीत के साथ ही लोकधारा कार्यक्रम अब यहीं पे संपन्न होता है। हमारा अगला प्रसारण बस अब से कुछ ही पलों में।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है गजलों का कार्यक्रम महफिल। आज के कलाकार हैं गुलाम अली।

इसी के साथ ही गजलों का कार्यक्रम महफिल अब यहीं पे संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

बरसात की रात फिल्म की ये कव्वाली सुनकर याद आ जाता है वो जमाना जब फिल्में तो ब्लैक एंड व्हाइट होती थीं, मगर उनकी कहानियां जीवन के जज्बाती रंगों से भरपूर। और याद आता है वो कलाकार जो अपने सुदर्शन व्यक्तित्व और सीधे सरल परंतु प्रभावी अभिनय से दर्शकों के दिलों पर छा जाता था।

1920 के जून महीने की 14 तारीख को मेरठ में जन्म हुआ भारत भूषण का। पिता राय बहादुर मोतीलाल सरकारी वकील थे। भारत भूषण बस 2 ही वर्ष के थे जब उनकी माता का देहावसान हुआ। मां के गुजरने के बाद बड़े भाई आर चंद्रा के साथ भारत भूषण अपने दादाजी के यहां अलीगढ़ चले आए।

अलीगढ़ में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात भारत भूषण पिता की मर्जी के खिलाफ एक्टिंग में करियर बनाने के लिए पहले कोलकाता और बाद में मुंबई आकर बस गए। केदार शर्मा निर्देशित 1941 की फिल्म चित्रलेखा में भारत भूषण को अभिनय का पहला अवसर मिला। भारत भूषण को अभिनय का पहला अवसर तो मिला, मगर उसके बाद संघर्ष का एक लंबा दौर शुरू हुआ।

0: थे।
1: संघर्षमय जीवन का एक दशक बीता और 1952 में भारत भूषण को फिल्म मिली बैजू बावरा। इस फिल्म ने उन्हें आनंद फानन सुप्रसिद्ध फिल्म सितारों की श्रेणी में लाकर रख दिया। इस फिल्म के संगीतकार नौशाद, नायिका मीना कुमारी और पार्श्व गायक मोहम्मद रफी को जितनी तारीफें मिली, उतनी ही तारीफ और शोहरत भारत भूषण को भी नसीब हुई। मानो प्रतिभा की गंगा और किस्मत की जमुना का मिलन होना था, हो गया।

बैजू बावरा की अपार सफलता के बाद सिलसिला चल पड़ा। एक के बाद एक फिल्में आती गईं। भारत भूषण अपने अभिनय से किरदार सजाते गए और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए। 1952 से 1954 तक रिलीज हुई ये फिल्में हैं आनंद मठ, मां, मिर्जा गालिब, शबाब और श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु इस फिल्म के लिए भारत भूषण को सर्वोत्कृष्ट अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार प्रदान किया गया। उनके समकालीन अभिनेता और निर्माता चंद्रशेखर

से 1954 तक रिलीज हुई ये फिल्में हैं आनंद मठ, मां, मिर्जा गालिब, शबाब और श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु इस फिल्म के लिए भारत भूषण को सर्वोत्कृष्ट अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार प्रदान किया गया। उनके समकालीन अभिनेता और निर्माता चंद्रशेखर कहा करते थे, हिंदी फिल्मों में यदि पौराणिक या ऐतिहासिक पात्र कोई सबसे अच्छा निभाते हैं तो वो है अभिनेता।

भारत भूषण केवल अभिनेता नहीं थे, उन्हें किताबों का बहुत शौक था। विभिन्न विषयों की किताबें वो पढ़ते रहते थे और शायद यही वजह थी कि वो बहुत अच्छे लेखक भी थे। बरसात की रात, नई उम्र की नई फसल, बसंत बहार और दूज का चांद आदि फिल्मों की कहानियां उन्हीं की लिखी हुई थीं।

बसंत बहार, कभी कालिदास, परदेसी, रानी रूपमती, चंपाकली, गेटवे ऑफ इंडिया, फागुन, सम्राट चंद्रगुप्त, सोहनी महिवाल, सावन, अंगुलीमाल, बरसात की रात, मुड़मुड़ के न देख, घूंघट, संगीत सम्राट तानसेन, 11,000 लड़कियां, जहां आरा, तकदीर, 1950 और 1960 के दशक की इन फिल्मों में नायक की भूमिका निभाने वाले भारत भूषण उन गिने चुने अभिनेताओं में से थे जिन्हें संगीत की बहुत अच्छी समझ थी, और इसीलिए अधिकतर संगीत प्रधान फिल्मों के नायक के रूप में उनका चुनाव किया जाता। दूज का चांद, इस फिल्म के वो निर्माता भी थे। उस जमाने के मशहूर गायक कलाकार मोहम्मद रफी, मन्ना डे, मुकेश और तलत महमूद के गाए ज्यादातर गीत भारत भूषण पर फिल्माए गए।

बढ़ती उम्र में भी चरित्र अभिनेता के रूप में भारत भूषण पूरे उत्साह और उमंग के साथ सक्रिय थे। 1970, 1980 और 90 के दशक की ये फिल्में थीं जय संतोषी मां, मीरा, उमराव जान, हीरो, रहगुजर, काला धंधा, गोरे लोग और अव्वल नंबर।

0: सहायक आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत जयंत पात्रीकर को।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बज चुके हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसरंग। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अरविंद सिंह की आवाज़ से। एल्बम का नाम है मोरे सैया गए परदेश। शशिकला कुमारी के बोल हैं, अरविंद सिंह का संगीत है।

अरविंद सिंह की आवाज़ में भी आपने सुना एल्बम मोरे सैया गए परदेश का ये गीत शशिकला कुमारी के बोल थे और अरविंद सिंह का संगीत था। और अब लीजिए सुनिए मोना वर्मा और जयवर्धन वर्मा की आवाज़ों में सजीव पांडे के बोल हैं, शशिकांत शर्मा का संगीत है और एल्बम का नाम है पीता का साया।

तुलसी कुमार और दर्शन रावल की आवाज़ में अभी आप सुन रहे हैं तेरा नाम एल्बम का ये गीत। मनन भारद्वाज के बोल हैं और संगीत भी मनन भारद्वाज का।

तुलसी कुमार और दर्शन रावल की आवाज़ों में भी आपने सुना तेरे नाम का ये गीत। गीतकार संगीतकार थे मनन भारद्वाज। और अब आइए सुनते हैं ये संदेश।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं राज बर्मन की आवाज में। एल्बम का नाम है जीव म्यूजिक ओरिजिनल्स। रश्मि बिराग के बोल हैं और जीत गांगुली का संगीत है।

राज बर्मन की आवाज़ में अभी आपने सुना एल्बम जी म्यूजिक के ओरिजिनल्स का ये गीत। रश्मि विराग के बोल थे, जीत गांगुली का संगीत था। कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं जुबैन नौटियाल की आवाज़ में, एल्बम का नाम है ओ आसमां वाले, मनोज मंतशिर के बोल हैं और रोचक काली का संगीत है।

जुबेल नौटियाल के गाए इसी गीत के साथ ही गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसरंग अब यहीं पे संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ से, फिल्म पाकीजा। कमल अमरोही के बोल हैं और गुलाम मोहम्मद का संगीत है।

लता मंगेशकर की आवाज़ में पाकीज़ा फिल्म का भी आपने गीत सुना। कमल अमरोही के बोल थे, गुलाम मोहम्मद का संगीत था। और अब लीजिए सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में आंधी फिल्म का ये गीत। गुलजार के बोल हैं, आर डी बर्मन का संगीत है।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अंतराल के बाद एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं और अब लीजिए सुनिए किशोर कुमार की आवाज़ में आनंद बख्शी के बोल हैं, RD बर्मन का संगीत है और फिल्म का नाम है आपकी कसम।

किशोर कुमार की आवाज में भी आपने सुना फिल्म आपकी कसम का ये गीत आनंद बख्शी के बोल थे, आर डी बर्मन का संगीत था। कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में, साहिर लुधियानवी के बोल हैं और ओपी नैयर का संगीत है, फिल्म नया दौर।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के गाए इसी गीत के साथ ही चित्रपट तराने कार्यक्रम अब यहीं पे संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। चलिए जान लेते हैं कल प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

कल प्रातःकालीन सभा की शुरुआत होगी 5:53 पर वंदे मातरम से और सुबह 6 बजे आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार और 6:05 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम वंदन बात।

प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास हम आपके लिए लेकर आएंगे सुबह 7:30 पर और प्रातः 8 बजे आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित समाचार प्रभात। देशभक्ति संगीत कार्यक्रम आप सुन सकते हैं प्रातः 8:15 पर और 8:20 समय होगा आपके पत्रों पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी का।

प्रातः 8:45 पर आप सुनेंगे पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार और 9:10 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मलिका।

प्रातः 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार। पूर्वाह्न 10:00 आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार और 10:05 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम घूमता माइक्रोफोन। 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक माधुरी और 10:45 पर आप सुनेंगे भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स पर आधारित हमारा कार्यक्रम रसधार। पूर्वाह्न 11:00 आप सुनेंगे भोजपुरी एल्बम लोक गीत।

शाम की सभा की शुरुआत होगी 4:30 पर कार्यक्रम विवरण से और 4:35 पर आप सुनेंगे भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। शाम 5:00 आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार और 5:05 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

0: घर आंगन का प्रसारण समय होगा शाम 5:30 पर, और शाम 6 बजे आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीत। शाम 6:05 पर आप सुनेंगे पटना से प्रसारित भोजपुरी बुलेटिन समाचार, और शाम 6:10 पर आप सुनेंगे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर। शाम 6:40 पर आप सुनेंगे भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझे गीत, और 7 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद। 7:15 पर आप सुनेंगे सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम, और 7:25 पर आप सुनेंगे पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। 7:50 पर रात्रि आप सुनेंगे कार्यक्रम ई मनपसंद। 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदगी, और 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसरंग। 10:30 पर चित्रपट तराने, और 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। तो श्रोताओं, ये था कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण, और अब हिंदी और अंग्रेजी में समाचार के लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।
1: के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। 3 दिन तक के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय स्तंभ शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
2: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है, और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल हेल्थ, डीप ऑपरेशन ओशन मिशन और गगनयान जैसे कार्यक्रमों ने विज्ञान और नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में स्थापित करने में मदद की है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचिरस तालुका में महासवाड पंडरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे